सुप्रभात, FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के बैसाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई साल 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त

0: अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
2: रफ्तार में गिरफ्तार है आज की जिंदगी। इस आपाधापी वाली जिंदगी के पीछे मकसद है कम से कम समय में अधिक से अधिक पा लेना। जीवन स्तर ऊंचा बनाए रखने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा में जुटे रहना, इन सबके पीछे है हमारा भय, लोभ और धैर्यहीनता। समय पर दिन रात होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, पर आज व्यक्ति के जीवन में समय की प्रतीक्षा नहीं है। अभी अभी करने और तुरंत पाने में विश्वास करने वाला वो रातों रात सत्ताधारी, नामधारी और संपत्तिधारी बनने के लिए बेचैन है। प्रगति और विकास का रस लोगों को मीठा लगा और ये क्या, सब कुछ तेजी से भागता नजर आने लगा। 3 दिन का काम 3 घंटे में पूरा कर लेने की होड़ में सादगी, मासूमियत, शारीरिक श्रम, स्वास्थ्य और संतोष सब कुछ बहुत ही दूर जा चुके हैं। व्यस्तता इंसान की नियति बन चुकी है, वो फुर्सत के क्षणों का महत्व भूलता जा रहा है। एकांत और शांति का आनंद क्या है, शायद ही उसकी परिकल्पना का हिस्सा हो। वो डिब्बा बंद भोजन को निकल जाना चाहता है, खड़े खड़े झपकी लेकर थकान मिटाने को विवश है। उसके पास पड़ोस में क्या हो रहा है, सबसे बेखबर है वो। कोई रास्ते में गिरा है, मरा है या जिंदा है, समय कहाँ है उसके पास ये देखने का। एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में ही बेचैन वो झगड़ता और क्रोध करता ही दिखाई देता है। कहाँ है उसमें धैर्य, कहाँ है सहिष्णुता। किसे कहते हैं शांति, किसे कहते हैं सुकून के पल, शायद ये सब उसके शब्दकोश में ही नहीं है। किसी ने कहा है संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। किसी ने कहा है संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है, लेकिन आधुनिक अपसंस्कृति में दूरदर्शिता धीरज को प्राप्त करने के लिए नहीं, धन और नाम पाने के लिए हो सकती है। धैर्य खो जाता है जब छोटी सी परीक्षा सम्मुख होने पर ही हम अपने लक्ष्य और दिशा को बदल लेते हैं। सरदार पटेल ने कहा था कि शत्रु का लोहा गरम भले ही हो जाए पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। संत कबीर कह गए हैं, कबीर धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे श्वान घर घर जाए। धैर्य सारे आनंद और शक्ति का मूल है। कुछ लोग धीरज को निरुत्साह और निर्बलता की श्रेणी में समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि धैर्य तो आशावान रहने की कला है। यदि कोई अपशब्दों की मार से हमें आहत करता है तो हम धैर्य खोकर ईंट का जवाब पत्थर से देने को अपनी जीत समझते हैं, जबकि हमें चाहिए कि सूझबूझ के साथ स्थिति परिस्थिति को देखते हुए दूरगामी परिणामों को विचार कर एक सकारात्मक सोच लिए हर परिस्थिति का सामना करें, समय पर सही उत्तर दें, पर जोश में होश न गंवाएं। एक मिनट में न जाने कितने प्रकार के प्रयोजन मन के पटल पर उपस्थित होते हैं और आपस में टकराते हैं, और इस टकराहट में एक भी सिद्ध नहीं हो पाता। मन में विचारों की मर्यादा, अनुशासन, स्पष्टता और विचारों की गरिमा ही इस भागदौड़ को विराम देकर अनुकूल और सुखकारी गतिशीलता बनाए रखती है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, वाचन स्वर थे जया रंधर के। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसकी शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।

मंगल के दाता, बुद्धि के विधाता, हर शुभ कार्य की पहचान है गणेशा। जिनके स्मरण से दूर हो विघ्न सारे, ऐसे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेशा।

सिंह पर सवार जंगदम्भ माता हर संकट से हमें बचाती है। भक्तों के जीवन में भरकर उजियारा माँ दुर्गा सुख समृद्धि लाती है।

ईश्वर की कृपा शब्दों में नहीं, जीवन की मुस्कानों में दिखाई देती है। जब सब रास्ते बंद लगे, तभी कहीं एक नई राह वही दिखाता है।

विश्वास की डोर थामे रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। ईश्वर देर भले करे, पर कभी अंधेर नहीं करता।

हर कण में जिसका वास है, हर दिल में जो विश्वास है, संकट में जो साथ निभाए, वही ईश्वर, वही प्रकाश है।

न मंदिर में न मस्जिद में ईश्वर बसता है इंसान के दिल में। जहाँ प्रेम करुणा और सच्चाई हो वही उसका सच्चा निवास होता है।

मसीह के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम यही वंदना यही संपन्न होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

पार्वती की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से भगवान शंकर ने कहा, हे भवानी, इस प्रकार काक भुशुंडी ने सविस्तार वो कथा कही जो मैंने तुम्हें सुनाई।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायन स्वर था अनुराधा पौडवाल के। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट का प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा 8:30 पर। शैल संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गोपाल बाबू गोस्वामी के गाए कुमाऊनी लोकगीत, समय रहेगा 7:30 पर। 10:35 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा समूह स्वर में रोहेलखंडी लोकगीत।

दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में भजन। कार्यक्रम घर गृहस्थी में कृषि में महिला भागीदारी विषय पर आप सुनेंगे श्रीमती साधना सेमवाल से भेंटवार्ता। समय रहेगा दोपहर 12:30 पर। कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:10 पर। पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत में आज आप सुनेंगे सर्वाइकल कैंसर और बालिका टीकाकरण अभियान विषय पर डॉक्टर राजीव गैरोला से बातचीत। समय रहेगा शाम 5:45 पर। कार्यक्रम कृषि जगत में आज आप सुनेंगे छोटे और सीमांत किसानों के लिए बकरी पालन विषय पर डॉक्टर गौरव जैन से बातचीत। समय रहेगा शाम 7:00। आरएनयू देहरादून का विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण आप सुनेंगे शाम 7:50 पर। रात्रि 8:00 हिंदी वार्ता में प्रकृति के सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति प्रेम और करुणा विषय पर आप सुनेंगे डॉक्टर शांति अग्रवाल की वार्ता।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा पंडित भजन सुपोरी का संतूर वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग यमन और समय रहेगा शाम, माफ कीजिएगा, दोपहर 4:02 पर। रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में गीत। सुबह 9:45 पर सेहत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर रीता झा से रमेश चंद्रा की बातचीत। सुबह 10:02 पर रूपक में आज आप सुनेंगे वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का अमर स्वर। सदाबहार फिल्मी गीत का समय रहेगा सुबह 9:00 और गाने नए तराने का समय रहेगा दोपहर 3:02 पर। कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा सुबह 11:00 और आपकी फरमाइश आप सुन सकते हैं रात्रि 10:00। और कार्यक्रम एक कलाकार में आज आप सुनेंगे गायिका मधुबाला झावेरी के फिल्मी गीत।

0: तो श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथिनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथिनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोल स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारो भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारो व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेण वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादम विरुद्ध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथिनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्।

0: एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन की प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3

घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम चल रहा है चित्र रागिनी, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम गीत लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म का नाम दस्तक।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्र रागिनी यहीं संपन्न होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार, नवाचार, डिजिटल लर्निंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। देहरादून के सैलकुई औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च। सैलकुई और सिडकुल क्षेत्रों में धारा 163 लागू। केंद्र सरकार ने कहा, CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है और देहरादून में डेंगू और जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अस्पतालों में जांच, इलाज और फॉगिंग व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार, नवाचार, डिजिटल लर्निंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति में शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने ये बात मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में प्रतिभाग करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं तथा देश और प्रदेश का भविष्य उनकी प्रतिभा, मेहनत और संकल्प पर निर्भर करता है। श्री धामी ने इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के उत्कृष्ट परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विशेष रूप से बेटियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। देहरादून के सैलकुई औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। यह कार्यवाही श्रमिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव कर माहौल बिगाड़ने के प्रयास के बाद की गई। प्रशासन ने सैलकुई और सिरकुल औद्योगिक क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू की है। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों को लागू प्रतिबंधों की जानकारी देते हुए शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न केंद्रित करने की अपील की। पुलिस ने चेतावनी दी है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आदेश के तहत सैलकुई और सिरकुल क्षेत्र में हथियार, लाठी डंडा और अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलने, सार्वजनिक सभा, जुलूस, नारेबाजी और बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने लोगों, श्रमिक संगठनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। उधम सिंह नगर जिले में सितारगंज में शक्ति फार्म को सिडकुल क्षेत्र से जोड़ने के लिए सिसौना नदी पर लगभग 11,41,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले 150 मीटर स्पान सीसी पुल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल बनने से करीब 50,000 लोगों को लाभ मिलेगा और सिडकुल सितारगंज तथा विकास खंड कार्यालय से सोना तक पहुंचने की दूरी लगभग 9 किलोमीटर कम हो जाएगी। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शक्ति फार्म में डेयरी प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जा रही है, जबकि प्रहलाद पलसिया में लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एक्वा पार्क का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर, पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, विभिन्न बाईपास, बस अड्डों और खेल सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्य भी प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा फर्जी है। यूनिट ने कहा कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। इसके अलावा तेल शोधन कारखानों के पास भी भंडारण है। पीआईबी ने नागरिकों को न घबराने की सलाह दी है और कहा है कि ईंधन और गैस की उपलब्धता के बारे में सरकारी अधिकारियों द्वारा सत्यापित सूचनाओं पर ही भरोसा किया जाना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने बताया कि सीबीएसई ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। राजधानी देहरादून में डेंगू और जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों की बैठक लेकर अस्पतालों में डेंगू जांच, इलाज, दवाइयों, ब्लड बैंक और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहें और डेंगू का कोई मामला सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। एक रिपोर्ट।
2: जिलाधिकारी ने नगर निगम और नगर निकायों को शहर के सभी छोटे बड़े नालों और ड्रेनेज की सफाई तेज करने के निर्देश दिए। डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में वॉलेंटियर्स और रैपिड रिस्पांस टीम तैनात करने, नियमित फॉगिंग और लार्वा नेस्ट करने के लिए रासायनिक छिड़काव कराने को कहा गया है। जल भराव मिलने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और चलान के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में स्कूलों में डेंगू जागरूकता अभियान चलाने और बच्चों के लिए फुल बाजू की ड्रेस अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। वहीं आशा कार्यकर्तियों को घर घर जाकर सर्वे के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष अब तक जिले में डेंगू के 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें 3 मामले बाहरी राज्यों से संबंधित हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से समीना।
1: सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन द्वारा हरिद्वार में एनसीसी कैडेट्स के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 31 यूके बटालियन की कैडेट्स को भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया, आवश्यक योग्यताओं और चयन से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी गईं। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कैडेट्स को लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और अन्य चयन प्रक्रियाओं की तैयारी के बारे में मार्गदर्शन दिया। साथ ही युवाओं को देशभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और निस्वार्थ सेवा जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कैडेट्स ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम में भर्ती और पात्रता संबंधी जानकारी वाली पुस्तिकाएं भी वितरित की गईं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। एक निजी समाचार पत्र से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि कुल बिजली मांग का करीब 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। हरिद्वार जिले में बम विस्फोट की धमकी देने वाले आरोपी को कोतवाली नगर पुलिस ने रोडी बेलवाला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने डायल 112 पर कॉल कर आगामी 4 दिनों के भीतर जिले में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी। आरोपी ने फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देश और राज्य के उच्च पदाधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। कोतवाल कुंदन सिंह राणा के अनुसार कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम ने तकनीकी जांच और मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए आरोपी की पहचान कर ली है। राजधानी देहरादून में 42वां

0: गोल्ड कप टूर्नामेंट आगामी 22 मई से 7 जून तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में देशभर की टीमों के साथ साथ नेपाल की टीम भी भाग ले रही है। इसके लिए 16 टीमें 4 ग्रुपों में मैच खेलेंगी। देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पीसी वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि विजेता टीम को 10 लाख रुपए नकद पुरस्कार के साथ गोल्ड कप ट्रॉफी दी जाएगी, जबकि उप विजेता टीम को 7 लाख रुपए और ट्रॉफी मिलेगी। इसके अलावा हर मैच का मैन ऑफ द मैच 5,000 रुपए और पूरे टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। खिलाड़ियों को विभिन्न व्यक्तिगत पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाएगा। क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट फॉर्मेट रहेगा। ज्यादातर मैच डे नाइट खेले जाएंगे। 2 मैच अल्फा क्रिकेट स्टेडियम गणेशपुर में खेले जाएंगे। शेष मैच महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार, नवाचार, डिजिटल लर्निंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। देहरादून के सैलकुई औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च। सैलकुई और सिडकुल क्षेत्रों में धारा 163 लागू। केंद्र सरकार ने कहा, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। और देहरादून में डेंगू और जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अस्पतालों में जांच, इलाज और फॉगिंग व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं शैल संगीत के कार्यक्रम में गोपाल बाबू गोस्वामी के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: शैल संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गोपाल बाबू गोस्वामी के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: इसी कुमाऊनी गीत के साथ अचल संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, अब आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ

0: समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
4: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
6: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का यह बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satishan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
9: Central to the visit was the adoption of a joint action plan, which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under the theme India-Sweden Stronger Together toward 2047, both nations committed to holding a bilateral trade and investment summit in India in 2027. In the realms of technology and climate action, the visit secured significant agreements to co-create solutions 21st century. Both nations launched the Joint Innovation Partnership 2.0 and agreed to establish a virtual India-Sweden Joint Sciences and Technology Center, focusing on AI, 6G, quantum computing and life sciences. Furthermore, Sweden-India Technology and AI Corridor will be strengthened to connect the two nations' startup ecosystem. On the climate front, the leaders announced the third phase of the leadership group for industrial transition, significantly expanding cooperation in green steel and low-carbon industrial transformation. Defense and security cooperation have transitioned from a traditional buyer-seller model to a long-term industrial partnership, with Swedish companies actively investing in India's defense production corridors. Prime Minister specifically thanked Sweden for its support following the Pahalgam terror attack, reaffirming a joint commitment to global stability. Finally, the visit celebrated a shared intellectual legacy and broader regional cooperation. To commemorate the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to Sweden, both countries initiated the Tagore Sweden Lecture Series and exchanged unique gifts, including replicas of Tagore's handwritten epigrams found in Swedish archives. The presence of European Commission's President Ursula von der Leyen highlighted the visit's importance to the India-Euro partnership, with a renewed push for the India-Euro free trade agreement, described as the mother of all deals, to unlock new opportunities for innovators and investors alike.
10: We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to one quarter of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. from here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat.
9: Sakshi Singh, Akashwani News, Gothenburg, Sweden.
8: Prime Minister Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences and digital technologies. Highlighting India's rapid economic transformation, Mr. Modi mentioned about strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next generation infrastructure development in India.
11: Vodafone, Ericsson, Nokia, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है. भारत 5G से 6G ट्रांजिशन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है.
8: The Ministry of External Affairs has said that business leaders and CEOs who met Prime Minister Narendra Modi in Sweden expressed strong interest in India and appreciated the country's transformation driven by sustained economic reforms over the past several years. Addressing reporters after the European Roundtable Industry Meeting, MEA Secretary of West, Sibi George, said that CEOs and senior industry leaders highlighted the significant changes they have witnessed in India in recent years,
12: which was attended by a large number of key companies in Europe. I would like to highlight that in his meetings today with the CEOs and other senior leaders from the business, they all highlighted about their interest. You know, they have been observing India for last few years. They have been investing in India for last few years. What they have seen is a complete transformation in India in the last few years. They emphasized that.
8: In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third Indian-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the Indian-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in Indian-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. Congress leader V.D. Satheeshan will be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Keralam Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer him oath of office and secrecy at a function in Thiruvananthapuram this morning. The Chief Minister-designate unveiled a 21-member UDF cabinet last evening ahead of today's swearing-in ceremony. More from our correspondent.
13: The Congress-led UDF ministry is being sworn in today in Keralam after a gap of 10 years. The Chief Minister and 20 other ministers will take oath at a function organized at Central Stadium, Thiruvananthapuram. 16 members of the new ministry, including Chief Minister V.D. Satheeshan, are becoming ministers for the first time. UDF workers in large numbers have been arriving in the state capital since yesterday afternoon to witness the swearing-in ceremony. Senior leaders, including Congress President Malik Arjun Kharge, leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, the chief ministers of Karnataka, Himachal Pradesh and Telangana, outgoing chief minister Pinarayi Vijayan and BJP state president Rajiv Chandrasekharan are expected to attend the ceremony today. Vidhi M. Palluruthi, Akashwani News, Thiruvananthapuram.
8: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah arrived in Raipur last evening on a two-day visit to Chhattisgarh. During his visit to the state, Mr. Shah will participate in several programs in Raipur and Bastar. A report from our correspondent.
5: On the first day of his visit to Chhattisgarh, Union Home Minister Amit Shah will flag off new vehicles under the emergency response service dial 112 in Raipur this morning. Later, he will travel to Bastar and inaugurate a public convenience center at Netanar village in the district. The center is aimed at providing easier access to government and digital services for people living in remote areas. Thereafter, Mr. Shah will reach Jagdalpur and pay tribute to Matthias at Amar Vatika. In the afternoon, he will interact at Badal Academy in Jagdalpur with families of Matthias, security personnel, people affected by Naxal violence and representatives of various local communities. In the evening,

0: West of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून लेकर हाजिर हूं मैं आज आपकी दोस्त और होस्ट माधुरी दानुपुंडीर। श्रोताओ, आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे है। इसका उद्देश्य आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना है। संग्रहालय हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत के ऐसे संरक्षक हैं जो आने वाले पीढ़ियों को अतीत से जोड़ने का काम करते हैं। म्यूजियम में हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को संजोकर रखा जाता है। किताबें, पांडुलिपियां, रत्न, चित्र, शिलाचित्र और अन्य सामानों के रूप में तमाम तरह की वस्तुएं संग्रहालयों में हमारे पूर्वजों की यादों को जिंदा रखे हुए हैं। हर देश की संस्कृति को समझने में कई वस्तुएं विशेष योगदान निभाती हैं, जिन्हें संग्रहालयों में सुरक्षित रखा जाता है। भारत में भी कई प्रसिद्ध संग्रहालय हैं, जिनमें से राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, एशिया का सबसे पुराना भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में और सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में शामिल है। आज के दिन देश विदेश के संग्रहालयों में विशेष प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं, ताकि लोग अपने इतिहास और परंपराओं को और बेहतर ढंग से समझ सके। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ।

इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, अब एक नजर डालते हैं क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। 48 घंटे में सीएनजी फिर महंगी, एक रुपये बड़े दाम। पॉलिटेक्निक में उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों को बिना परीक्षा मिलेगा प्रवेश। दून पहुंची श्रमिक आंदोलन की आग। औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू। जिला प्रशासन की ओर से रविवार शाम जारी किया गया आदेश। बाहरी राज्यों से आने वाले 60 वाहनों के चालान 15 सीज। उत्तराखंड गोल्ड कप 22 मई से 16 टीमें करेंगी प्रतिभाग। विजेता टीम को 10 लाख रुपए और उप विजेता टीम को 7 लाख नकद संग दी जाएगी ट्रॉफी। भक्तों संग रुद्रनाथ की डोली मंदिर के लिए रवाना। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को मिला कथा सागर सम्राट सम्मान। चारधाम यात्रियों को ठग रहे बिहार के 4 जिलों के ठग। 200 से अधिक फर्जी वेबसाइट एसटीएफ ने कराई बंद। और अब खबर मौसम से जुड़ी। राजधानी में पारा 37 डिग्री सेल्सियस, अभी और चढ़ेगा पारा। आज प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आगामी दिनों में तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। तो श्रोताओं, ये तो थे आज के क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां। और अब एक नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों पर। 18 मई का दिन क्यों है खास? तो आपको बता दें कि 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण कर परमाणु संपन्न देशों की कतार में कदम रखा और इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। 1912 की बात करें तो आज ही के दिन यानी कि 18 मई को पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडलिक सिनेमाघरों में रिलीज हुई। और 1804 की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट घोषित किए गए। 1848 की बात करें तो आज ही के दिन जर्मनी में पहली स्वतंत्र रूप से निर्वाचित फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली संसद का गठन हुआ था। और 1994 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1995 में संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और साल 2008 की बात करें तो आज ही के दिन यानी कि 18 मई को भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को उनकी किताब एनिमल प्यूपल्स हेतु कॉमनवेल्थ सम्मान प्रदान किया गया था। तो ये तो था 18 मई का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों है खास। अब वक्त हो चला है एक और खूबसूरत ब्रेक का।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय।

रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज 18 मई को पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड एड वैक्सीन डे मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य HIV और एड्स जैसी बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा वैक्सीन अनुसंधान को बढ़ावा देना है, क्योंकि वैज्ञानिक लगातार ऐसी वैक्सीन विकसित करने के प्रयास में लगे हुए हैं जो भविष्य में इस बीमारी से बचाव कर सके। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम HIV एड्स वायरस के कारण फैलता है। ये बीमारी शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर देती है। हालांकि आज भी एड्स का पूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन सही जानकारी, जागरूकता और सावधानी से इससे बचाव किया जा सकता है। सुरक्षित जीवन शैली अपनाकर और समय समय पर जांच कराकर हम इस बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इस दिवस पर कई स्वास्थ्य संस्थाएं जागरूकता अभियान, संगोष्ठियां और स्वास्थ्य शिविर आयोजित करती हैं, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सके। तो चलिए कार्यक्रम में लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, माँ ये शब्द सुनते ही हिंदी सिनेमा के जिन चेहरों की याद सबसे पहले आती है, उनमें से एक नाम है रीमा लागू का। अपनी सहज मुस्कान, अपनापन भरे अभिनय और भावनाओं से भरे किरदारों से उन्होंने लाखों दिलों में खास जगह बनाई है। 21 जून 1958 को मुंबई में जन्मी रीमा लागू ने अपने अभिनय की शुरुआत मराठी रंगमंच से की, लेकिन हिंदी फिल्मों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। 90 के दशक की कई यादगार फिल्मों में उन्होंने माँ की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। मैंने प्यार किया में उनकी सादगी, हम आपके हैं कौन में उनका ममता भरा अंदाज और वास्तव में उनका गंभीर अभिनय आज भी लोगों को भावुक कर देता है। रीमा लागू केवल एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि वे उस अपनापन की पहचान थी जो हर किरदार में सच्चाई के साथ दिखाई देता था। टीवी धारावाहिकों और फिल्मों दोनों माध्यमों में उन्होंने अपने अमिट छाप छोड़ी थी। 17 मई साल 2017 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गई, आज ही के दिन। और लेकिन उनके निभाए गए किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित है। आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा आकाशवाणी परिवार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, उन्हीं की फिल्म का ये गीत आप तक पहुंचाकर।

तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें अपना फीडबैक लिखना ना भूलिएगा। आप अपना फीडबैक हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर भेज सकते हैं, जिसे हम अपने कार्यक्रम आपका पत्र मिला में शामिल करेंगे। और आप अपने मैसेजेस लिखने से पहले व्हाट्सएप नंबर पर आपका पत्र मिला लिखना ना भूलिएगा। तो हमें आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। और आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है namaskardehradun@gmail.com। तो श्रोताओं, खुश रहिए, मस्त रहिए। और डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो डेंगू से बचने के लिए अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और जमा हुआ पानी दूर करें। तो इसी के साथ अपनी दोस्त और होस्ट माधुरी दानू पुंडीर को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार देहरादून।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज को फिल्म अर्थ में। कुछ रिश्तों की खूबसूरती शब्दों में नहीं, कुछ रिश्तों की खूबसूरती शब्दों में नहीं, सिर्फ एहसासों में महसूस होती है। किसी का यूं मुस्कुराकर बात करना भी दिल को सुकून दे जाता है।

कुछ एहसास शब्दों में नहीं ढलते, कुछ एहसास शब्दों में नहीं ढलते, बस दिल की धड़कनों में उतर जाते हैं। कभी एक मुस्कान, कभी एक इशारा पूरी जिंदगी की खुशी बन जाते हैं।

0: अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत लता मंगेशकर की स्वर में, फिल्म का नाम चुपके चुपके।

कभी कभी खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती हैं। कभी कभी खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती हैं, लेकिन दिल की बातें कह देने से रिश्ते और खूबसूरत हो जाते हैं।

0: इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्में गीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:45 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं सेहत कार्यक्रम में ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर रीता झा से रमेश चंद्रा की बातचीत।
1: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता झा को। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य के बारे में। डॉक्टर रीता झा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, ओरल हाइजीन है क्या?
2: ओरल हाइजीन मतलब आपका सारा मुंह, मुंह में आपके दांत आते हैं, मसूड़ा आता है, जीव आता है, सलाइवा आता है,
1: जी,
2: उन सब की साफ सफाई और उन सब को स्वस्थ रखने को ओरल हाइजीन कहते हैं।
1: डॉक्टर रीता, ओरल हाइजीन से हमारा जो स्वास्थ्य है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है?
2: ओरल हाइजीन से हमारा स्वास्थ्य एकदम जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकते हैं। तो आपको अपने मुंह का और ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ओरल हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आपके हार्ट प्रॉब्लम्स कम हो, कहीं ना कहीं डायबिटीज भी इससे रिलेटेड है।
1: डॉक्टर रीता, दांतों की या ओरल हाइजीन की बात करें तो इसको किस तरह से सही बना के रखा जा सकता है?
2: देखिए, ओरल हाइजीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने दांतों को 2 बार ब्रश करें कम से कम। खाने में ज्यादा मीठे चीज ना खाया करें, पानी खूब पीजिए और
1: जी
2: डेंटल फ्लॉस का यूज किया कीजिए, अपने जीभ की सफाई किया कीजिए, और खाने पीने में ज्यादा जो आजकल बच्चे वगैरह खाते हैं कुरकुरे चिप्स, वो सब कम खाया करिए। जंक फूड्स कम खाना चाहिए और हेल्दी फूड्स पे ज्यादा आप जोर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर रीता झा, अगर किसी की ओरल हाइजीन खराब है तो कैसे पता चलेगा?
2: देखिए, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून आना, दांतों में कैविटी होना, दांतों में झंझनाहट होना, ये सब लक्षण होते हैं कि आपका ओरल हाइजीन खराब है।
1: कुछ कारण भी होते हैं ओरल हाइजीन खराब होने के?
2: अगर आप अपने दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका ओरल हाइजीन खराब होगा। मतलब
1: जी
2: आपको कैविटीज अगर होगी तो आपके दांतों में दर्द होगा, और आप दांतों में दर्द होगा, झंझनाहट होगा। अगर मसूड़े स्वस्थ नहीं है तो ब्लीडिंग होगी, मसूड़ों में सूजन होगी, इतने बार गालों में भी सूजन आ जाता है क्योंकि दांतों में कैविटीज होती है, उससे एब्सेस बन जाता है, पस बन जाता है। तो अगर आप इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपका ओरल हाइजीन ठीक रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि मुंह से बदबू आती है, तो ऐसा हम क्या करें ताकि हमारे मुंह से बदबू ना आए?
2: देखिए, बदबू आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके दांतों में प्लाग है, मतलब पायरिया जिसको कहते हैं आम भाषा में, पायरिया मेन कारण है जिसकी वजह से बदबू आती है। कितने बार आपको अगर पेट में भी दिक्कत है तो आपको मुंह में बदबू आ सकती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसकी वजह से भी बदबू आती है। तो सबसे पहले तो आपको अगर मुंह से बदबू आती है तो आप अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करिए, वो आपके दांतों की सफाई करेंगे तो आपके मुंह से बदबू फिर नहीं आएगी।
1: आपने कैविटी की भी बात की थी,
2: हाँ जी,
1: क्या वजह है हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है?
2: कैविटी, देखिए, हमारा जो दांत है वो 3 परतों में बना होता है। एक होता है एनामल, फिर डेंटिन, फिर पल्प। एनामल हमारा बाहरी परत है। कितनी बार क्या होता है, जैसे हमारा सलाइवा होता है वो एसिडिक होता है, मतलब 6.2 to 7.6 के आसपास का पीएच होता है उनका, पर जब पीएच कम होता है तो एनामल हट जाता है, तो जिसके वजह से हमें कैविटी हो जाती है।
1: जी।
2: तो अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, खाने में जंक ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, तो ये हमारे एनामल को इरोड करते हैं और हमें कैविटी होने के चांसेस होते हैं। प्लस बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है
1: जी,
2: तो वो भी हमारे एनामल को इरोड करते हैं और उन पेशेंट्स में ये ज्यादा हो सकता है कैविटीज।
1: जी।
2: तो बेसिकली आपको अपना पानी बहुत ज्यादा पीजिए, दांतों को ब्रश करिए 2 टाइम कम से कम, तो इससे आपके कैविटीज कम होंगे। और शुगरी फूड्स कम खाइए, मीठा, और स्पेशली जो दांत में चिपकते हैं, जंक फूड तो बहुत ही कम कर दें। जैसे आजकल बेसिकली बच्चों में भी अगर आप देखोगे तो कैविटीज बहुत हो रही है और दांत के प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं क्योंकि वो जंक बहुत खाते हैं। तो जंक फूड को जितना कंट्रोल करिएगा उतना अच्छा रहेगा, आपके दांतों में कैविटीज कम होगी।
1: डॉक्टर रीता जी, आपने मसूड़ों में खून आने की बात की थी,
2: हाँ जी,
1: क्या वजह है मसूड़ों में खून आने के पीछे?
2: मसूड़ों में खून आने की वजह है कि मसूड़ों में मैल जम जाता है, जिसको हम अगर डेंटल इसमें गए तो उसको प्लाक कहा जाता है, प्लाक और कैलकुलस। धीरे धीरे वो, जैसे प्लाक जो है वो मसूड़ों के अंदर जाने लगता है और वो मसूड़े ढीले करता है, जिसके वजह से मसूड़ों में खून आता है।
1: क्या करें हम ऐसा ताकि जो खून है वो बंद हो जाए?
2: आप अपने दांतों की सफाई 6 महीने में एक बार कराइए। खाने में आप विटामिन सी ज्यादा लीजिए, आप थोड़ा सा सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा खाइए
1: जी,
2: एप्पल भी खा सकते हैं। मतलब खान पान का भी अगर आप ध्यान रखोगे ना तो उससे आप गम स्ट्रांग होंगे। अगर आप अपने गम्स को स्ट्रांग बनाओगे तो ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स कम होंगी।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा था कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है ओरल हाइजीन सही न होने के कारण, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो मसूड़े हैं उनमें सूजन ना आए?
2: देखिये, मसूड़ों में सूजन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कितनी बार आपकी कुछ मेडिसिन चलती है एपिलेप्सी वगैरह, उसकी वजह से भी मसूड़ों में सूजन आता है, ठीक है। पर मेन कारण है मसूड़ों में गंदगी जमा होना, जिसको आप पायरिया कहते हो आम भाषा में। जब लोगों को पायरिया होता है तब ज्यादातर मसूड़ों में सूजन आता है, मेन कॉज हम अगर डेंटल मान के चले तो।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने ब्रश करने की बात की थी कि कम से कम 2 बार ब्रश करें, कब करें ब्रश 2 बार?
2: देखिए, सुबह 1 बार और 1 बार रात को सोने से पहले। और ब्रश जो आप यूज करोगे वो हार्ड ब्रश यूज मत करिए, और दांतों पे ब्रश को रगड़िए मत, हल्के हाथों से घुमा घुमा के करिए। अगर आप ब्रश को ज्यादा जोर से दांतों पे रगड़ते भी हो तो भी आपके दांत की परत हट जाती है और फिर आपको झंझनाहट की दिक्कत होती है। सेकेंडली, आप जो ब्रश यूज करते हो वो सॉफ्ट ब्रश यूज करो, हार्ड ब्रश यूज मत करो। और ब्रश को भी आप 3 से 4 महीने में एक बार बदलो, प्लस आप डेंटल फ्लॉस का यूज करो ताकि 2 दांत के बीच में भी आप दांतों की सफाई कर सको।
1: डॉक्टर साहब, क्या ब्रश करने का भी कोई तरीका होता, कैसे करना है, रगड़ना है, गोल गोल घुमा के करना है, कोई तरीका?
2: आप 45 डिग्री पे गोल गोल घुमा के धीरे धीरे करिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको आधे घंटे तक ब्रश करना है, 3 से 4 मिनट काफी है, पर हल्के हाथ से घुमा घुमा के। ये नहीं कि आप सीधा सीधा जोर जोर से दांतों पे रगड़ रहे हो, उस वो आपको नुकसान देता है।
1: डॉक्टर साहब, टूथपेस्ट कोई भी ले सकते हैं?
2: हाँ, अगर आप फ्लोराइड रिलेटेड टूथपेस्ट लोगे तो ज्यादा बेटर है, पर टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हो कोई भी, पर सेंसिटिव टूथपेस्ट आप नॉर्मल टूथपेस्ट मत करिए। एड्स देख के कितनी बार ऐसा होता है ना, आपने सेंसोडाइन यूज कर लिया, अगर आपको झंझनाहट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप सेंसिटिव टूथपेस्ट मत यूज करो।
1: जो लोग डॉक्टर रीता जी सेंसिटिव टूथपेस्ट है वो यूज कर रहे हैं तो कितने समय तक करें?
2: पेस्ट को आप यूज कर सकते हो जब तक आपको झंझनाहट की दिक्कत खत्म ना हो जाए, पर अगर एक बार अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद आप यूज मत करिए।
1: डॉक्टर रीता जी, अभी आपने डेंटल फ्लॉस की बात करी थी, डेंटल फ्लॉस को यूज करने के भी कुछ तरीके होते हैं क्या?
2: हाँ जी, वो एक धागा टाइप का होता है, आप दोनों हाथों से उसे पकड़िए और 2 दांत के बीच में लेके उसको ऊपर नीचे कीजिए। उससे आपके दांतों के बीच में जो भी डेब्रीज फंस जाता है वो निकल जाता है। तो कितनी बार क्या होता है ना, 2 दांतों के बीच में कैविटीज हो जाती है, उसका मेन कॉज ये होता है कि वहां पे खाना फंसा रह गया, आपने कुछ ऐसा खाया जिसमें रेशे हैं तो वो फंसा रह जाता है, तो बहुत बार ब्रशिंग से वो नहीं निकलता है। तो आप डेंटल फ्लॉस का यूज रोज करिए, प्लस आप पानी बहुत पीजिए, जितना आप पानी पियोगे उतना अच्छा, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है
1: जी। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि डेंटल फ्लॉस का यूज करने से हमारे जो दांत हैं उनके बीच में गैप ज्यादा होने लगता है, गैप अगर नहीं है तो भी बन जाएगा, कितना सच
2: है ये? नहीं नहीं, ये एक मिथ है। डेंटल फ्लॉस से आपको कभी भी गैप नहीं बनता है। कितनी बार क्या होता है, जो आप पायरिया समझते हो उसमें क्या होता है, हमारे दांतों में बहुत सारे कचरा मतलब हार्ड कोट आ जाते हैं जिसको हम प्लाक कहते हैं। जब ये धीरे धीरे बढ़ता है तो ये 2 दांत के बीच का स्पेस भी लेता है
1: जी,
2: और गम्स को भी बहुत सूजन प्रोवाइड करता है, तो उसके वजह से आता है। कितनी बार आपको एज के साथ भी आपके दांतों के बीच में गैप आता है, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं उसकी वजह से आता है, फ्लॉस की वजह से कभी गैप नहीं आता।
1: डॉक्टर साहब, क्या ओरल हाइजीन को बनाए रखने में माउथ वॉश होता है, उसका भी कुछ?
2: हाँ,
1: यूज है,
2: आप माउथ वॉश यूज करिए। मैंने अभी आपको बताया ना, कितने बार क्या होता है ना, जो डेब्रीज होते हैं दांतों के बीच में फंसे रहते हैं तो आप ब्रश से नहीं निकाल पाते हो, तो आप अच्छे से जोर से कुल्ला करोगे तो उससे आपको फायदा होगा, प्लस उसमें फ्लोराइड और बहुत सारे ऐसे चीज होती है जो आपको मदद करता है। वो मेडिकेटेड जो माउथवॉश होते हैं उन्हें यूज करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो होते हैं तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान मसाला इस तरह की तमाम चीजें खाते हैं, क्या इनसे भी हमारी ओरल हाइजीन प्रभावित होती है?
2: हाँ जी, ये बहुत ही नुकसानदायक चीज है, क्योंकि ये एक तो वो मसूड़े में उसे रखते हैं जिसकी वजह से ऑलरेडी मसूड़ों में प्रॉब्लम होता है, ये आपको उसकी वजह से आपके गालों में भी प्रॉब्लम होगा, और उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सलाइवा के साथ मिलके आपके शरीर के अंदर जा रहा है, सलाइवा से बॉडी में मतलब खून में जाएगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स या सब कुछ आ सकता है। ओरल कैंसर का मेन कॉज यही है, तो ये तंबाकू और ये सब जो भी पान मसाला है वो नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से।
1: डॉक्टर रीता झा, बच्चों में जो ओरल हाइजीन की अच्छी आदतें हैं, कोई भी माता पिता या गार्जियन है वो कैसे विकसित कर सकता है?
2: देखिए, बच्चा जब छोटा होता है, जब वो मदर्स फीड पे रहता है, तब आप वाइप लेके उसके गम्स को साफ कर सकते हो। जब उसका पहला दांत आता है तब से आप उसको हल्के से ब्रश करो, जो आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे दांत आते हैं और जब वो खुद करने लायक हो, केपेबल हो जाता है, तो कम से कम 6 से 7 साल तक माँ के गाइडेंस में ब्रश करना चाहिए। और जितना जल्दी आप ब्रशिंग की हैबिट डलवाओगे बच्चे में उतना अच्छा है, और कम से कम 2 बार। सेकेंडली, बच्चों को आप चॉकलेट, स्वीट्स जो भी है वो जितना कम दे उतना अच्छा है, पर अगर आप खिलाते हो तो कम से कम उसके कुल्ला जरूर कराइए और रात को ब्रश करवाइए। और जो सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बॉटल लेके सो जाते हैं, उसमें चीनी होता है, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो कभी भी बॉटल फीडिंग तो वैसे भी मैं कहती हूँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि केरीज का या छोटे बच्चों में आप देखोगे जो सामने के दांत होते हैं बड़े काले काले से दिखाई देते हैं, तो उसका मेन कॉज यही होता है। बॉटल फीडिंग अगर है भी तो रात को कभी ना कराएं, कोशिश करें कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं। पर अगर कितनी बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि आपको बॉटल देना पड़ता है, तो नाइट फीडिंग बॉटल से तो बिल्कुल भी बंद कर दीजिए।
1: डॉक्टर झा, बहुत से लोग अपनी जीभ साफ नहीं करते, जीभ साफ होने की कितनी भूमिका है ओरल हाइजीन को बनाए रखने में?
2: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टंग क्लीनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आप याद करिएगा तो पुराने जमाने में लोग करते ही थे 2 बार, अगर आपने ब्रश किया है तो आप टंग क्लीनिंग भी करिए, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत बैक्टीरिया जमा होते हैं, तो जब आप उसको साफ करोगे तो वो सारे निकल जाते हैं। मेंटेन मतलब वो भी आपका एक कारण हो सकता है कि आपके मुंह से बदबू आए।
1: डॉक्टर रीता जी, क्या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनको हम अपने खाने में शामिल कर लें और उनकी वजह से हमारा जो ओरल हाइजीन है अच्छा बना रहे?
2: आप लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, दाल, जिसमें मान लीजिए कैल्शियम या फास्फोरस ज्यादा

0: वो अगर आप लोगे उससे क्या होगा, आपका एनामल बनेगा
1: जी,
0: जैसे आपके ये चेरीज हो गए उसमें मैलिक एसिड होता है, फिर आपके गम्स के लिए अच्छा होता है। ग्रीन टी हो गई उसमें पॉलीफिनॉल्स होता है, वो भी आपके गम्स को और इन्फ्लेमेशन को कम करता है
1: जी।
0: तो बेसिकली अगर आप नॉन वेज खाते हो तो ये चिकन हो गया, फिश हो गया, ये सब आप लोगे तो फिर कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो कि आपके दांत के बाहरी परत को मजबूत करने में बहुत मदद करता है।
1: डॉक्टर रीता, ओरल हाइजीन को लेकर जो एक डेंटिस्ट हैं उनसे हमें कितने समय बाद मिलते रहना चाहिए?
0: हर 6 महीने में आपको अपनी डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। उससे ये होगा कि आपके डेंटिस्ट को पता चलेगा कि आपके दांतों में प्रॉब्लम क्या हो रही है।
1: जी
0: बेसिकली तो लोग जागरूक हुए हैं तभी जाते हैं डेंटिस्ट के पास जब प्रॉब्लम बढ़ जाता है, पर साल में एक बार हर किसी को अपने दांतों की सफाई कराना चाहिए। उससे आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम नहीं होगा और दांत भी ठीक रहेंगे। और 6 महीने से साल भर में एक बार तो डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं आए। मतलब अगर कैविटी हो रही है तो उस वक्त अगर वो भर देंगे तो दांत में आरसीटी नहीं कराना पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ घरेलू नुस्खों का चलन बहुत है। हल्दी वाला पानी से कुल्ला कर लो, नमक वाला पानी से कुल्ला कर लो, या नमक वाला मंजन कर लो, इस तरह की तमाम चीजें हैं, ये कितनी सुरक्षित हैं ओरल हाइजीन के लिए?
0: देखिए गरारे तो ठीक है, अगर आप गरारे करते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे लौंग है, लौंग का क्लोविक एसिड, वो भी आपके दांतों के लिए सही है। पर इससे ज्यादा तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि हल्दी वल्दी आप यूज करें। हल्दी एंटीसेप्टिक होता है तो घाव वगैरह में आप लगा सकते हो, पर मुंह में उसका मेन कोई रोल नहीं है।
1: क्या उसकी वजह से हमारे दांत और पीले हो सकते हैं?
0: अगर वो देखिए आजकल हल्दी कितना सिंथेटिक है या कितना नेचुरल है वो तो हम नहीं कह सकते ना, तो वो इफेक्ट कर सकता है।
1: डॉक्टर रीता जी, अगर किसी को कोई समस्या हो जाती है तो ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हैं, ओरल हाइजीन में अगर कोई ओवर द काउंटर ड्रग्स या इस तरह की चीजें इस्तेमाल करता है कितना सुरक्षित है?
0: देखिए अगर ओरल उसमें लेता है और अगर ओवर द काउंटर अगर फार्मासिस्ट है दुकान पे तो फिर भी वो जो दवाइयां देता है ठीक ही देता है, क्योंकि मेनली आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। पर विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई एलर्जी है किसी दवाई से तो वो आपको रिएक्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हर दवाई का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और आप सिर्फ जाते हो वहां पे, बोलते हो मुझे दर्द हो रहा है आप दवाई दे दो या मसूड़े से खून आ रहा है, पर जब तक उसे कॉज नहीं पता होगा और आप दवाई लोगे तो बहुत जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपको फायदेमंद होगा, कभी नुकसानदायक भी हो सकता है।
1: डॉक्टर रीता जी, कार्यक्रम के समापन में कोई 3 ऐसे टिप्स ओरल हाइजीन के लिए हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें?
0: आप 2 समय ब्रश जरूर करें, पानी बहुत ज्यादा पिए और शुगर जितना कम इंटेक करेंगे आपके दांतों के लिए उतना ही अच्छा है।
1: डॉक्टर रीता जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और हमारे श्रोताओं को ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य के बारे में आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सेहत कार्यक्रम में ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर रीता झा से रमेश चंद्रा की बातचीत। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप जयवीर सिंह से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार, नवाचार, डिजिटल लर्निंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। देहरादून के सैलखुई औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च, सैलखुई और सिटकुल क्षेत्रों में धारा

0: जनित बीमारियों की रोकथाम की को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अस्पतालों में जांच, इलाज और फॉगिंग व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन द्वारा हरिद्वार में एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरिद्वार जिले में बम विस्फोट की धमकी देने वाले आरोपी को कोतवाली नगर पुलिस ने रोडी बेलवाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पौड़ी गढ़वाल में ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामोत्थान परियोजना के तहत बेमौसमी मटन मशरूम के सफल उत्पादन की शुरुआत। और राजधानी देहरादून में 42वां उत्तराखंड गोल्ड कप टूर्नामेंट आगामी 22 मई से 7 जून तक खेला जाएगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का अमर स्वर पर आधारित रूपक वाचन स्वर पुष्पा पुंडीर और अनुराग वर्मा के, आलेख एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश चंद्रा।

माटी की हर खुशबू में बसा देश का प्यार, वंदे मातरम गूंजता जैसे जीवन का सार, वंदे मातरम।

0: ओफो, इतनी रात हो गई है, कब होगा आपका ये उपन्यास खत्म? मुझे तो लगता है ये किताब ही सौतन बन गई है मेरी। भाई, ऐसा क्या राज है इस किताब में?
1: राज ठीक है, राज ही समझ लो, लेकिन ये राज है बहुत खास। पर इतना बता दूं, मेरे लिए तुमसे खास इस दुनिया में कोई नहीं।
0: अच्छा, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। सच बताओ, क्या पढ़ रहे थे इतनी तल्लीनता से? चेहरा तो ऐसे चमक रहा था जैसे कोई खजाना मिल गया हो।
1: खजाना ही समझ लो, इसका नाम है आनंद मठ। लेकिन ये सिर्फ उपन्यास नहीं, ये आग है, उस दौर की आग जब हम गुलाम थे। और इसी आग से निकला वो मंत्र जिसने सोए हुए देश को जगा दिया, वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम।
1: तुम्हारा हाथ थाम कर जितनी हिम्मत आती है ना, उतनी ही हिम्मत इस देश को इस गीत से मिली। तभी तो सोचता हूं कि सबको इसका मतलब बताऊं।
0: तो बताओ ना, मैं सुन रही हूं। पर देखो, उबाऊ लेक्चर मत देना वरना मुझे नींद आ जाएगी। मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूं।
1: लेक्चर नहीं पगली, किससे सुनाऊंगा। मैंने इसके लिए बहुत लोगों से बात की है और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया है। पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री वंदे मातरम को लेके क्या कहते हैं?
2: वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है, यह हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके।

0: इसका कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके।
1: अरे वाह, अद्भुत है ये तो सच में।
2: 1870 का सन्यासी विद्रोह। पेट की आग जब देश की आग बन जाए तो वंदे मातरम जन्म लेता है। ये सुनो लेखक और साहित्यकार डॉक्टर दिनेश शर्मा क्या कहते हैं।
3: वंदे मातरम आज जिस स्वरूप में और राष्ट्रीय गीत के रूप में हम इसको गाते हैं, इसकी असाधारण यात्रा प्रारंभ होती है लगभग सन 1875 में, यानी कि आज से 150 वर्ष पूर्व। बंकिम चंद्र चटर्जी 7 नवंबर 1875 को एक रेल यात्रा के दौरान रात में इस गीत को लिखते हैं और इसके शुरू के दो बंद वो लिखते हैं संस्कृत। इसके तकरीबन 7 वर्षों तक ये गीत एक दो स्थानों पर प्रकाशित होता है और थोड़ी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। 7 वर्ष बाद 1882 में सन्यासी विद्रोह को विषय वस्तु बनाते हुए और तकरीबन 100 साल पहले के एक अकाल का जिक्र करते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी एक उपन्यास लिखते हैं आनंद मठ नाम से। 1882 में लिखे गए इस उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी इस गीत के साथ 5 बंद बांग्ला भाषा में लिख करके उस उपन्यास का हिस्सा बनाते और वहां से शुरू होती है इस गीत की यात्रा।
2: सच बताऊं तो ये गीत नहीं, तलवार है, एक मशाल है।
1: तलवार, मशाल, अच्छा और क्या क्या है इसमें?
2: अरे बहुत कुछ है। जानना चाहोगी पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल के विचार?
1: बिल्कुल जानना चाहूंगी।
2: तो सुनो।
4: भारत माता की जय, शुभ भारतम वंदा महे। वर्षों से रेडियो पर वंदे मातरम उद्घोषित होता आया है, अपनी मातृभूमि भारत की वंदना। मातृभूमि भारत हमारी माँ ही है। जब भी वंदे मातरम उद्घोषित होता है तो हर मन हृदय से नतमस्तक हो जाता है। पूरा देश मानो एक ही स्वर में सांस ले रहा हो। पूरा भारत एक पुष्प वाटिका की तरह एक परिवार ही तो है और भारत माता हमारी प्राण है। वंदे मातरम सुनते ही हर मन श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है, सभी के लिए प्रेरणादायक है। तभी तो प्रकृति ही हमें सब कुछ सिखाती है। अपने कर्तव्य निर्वहन की प्रक्रिया, देशभक्ति, एकता का संदेश, परिश्रम, त्याग, तपस्या, हंसना, खेलना, सब प्रकृति की गोद में ही सीखा जाता है। वंदे मातरम का गायन हमें ऊर्जावान बनाता है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, अपने भारत की सुख समृद्धि के लिए। आइए हम सब मिलकर मातृभूमि को नमन करें।
2: वंदे मातरम की पंक्तियों के अर्थ बताते हुए लेखक, साहित्यकार और शिक्षाविद डॉक्टर देव सिंह पोखरिया जी क्या कहते हैं?
1: क्या कहते हैं
2: सुनो।
5: वंदे मातरम बंगला के महान उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इस गीत के पहले ध्रुवक की रचना 1875 में संस्कृत में की गई वह इस प्रकार थी। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम में कुल 5 पद हैं। ध्रुवक या मुखड़े के बाद का पल्लव का पद भी संस्कृत में है जो इस प्रकार है। शुभ्र ज्योतिष्नाम पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमुदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम। 1882 में उनके उपन्यास में यह गीत 5 पदों के रूप में समाविष्ट हुआ। दूसरे पद सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले से लेकर आगे के 5वे तक के जो पद हैं वो बंगला भाषा में है। प्रारंभिक पद में मातृभूमि की वंदना की गई है। दूसरे से 5वे पद तक मातृभूमि की दुर्गा के रूप में वंदना की गई है। तो ये कुल मिलाकर एक तरह का रूपक है। इस गीत की रचना के मूल में अंग्रेजों द्वारा सरकारी आयोजनों में अनिवार्य रूप से गाया जाने वाले गीत गॉड सेव द क्वीन के सापेक्ष की गई। तब बंकिम चंद्र चटर्जी डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। अंग्रेजी के इस गीत के निर्यता से वे बड़े आहत थे। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने मातृभूमि के प्रेम से परिपूर्ण आनंद मठ उपन्यास के प्रमुख पात्र सन्यासी भवानंद द्वारा इस गीत को गवाया है। यह गीत अंग्रेजी शासन के शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध जनता को जागृत करने के लिए रचा गया। 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा यह गीत गाया गया। तब से यह गीत भारतीय स्वाधीनता संग्रामियों का प्रमुख गीत बन गया। अंग्रेज इस गीत की लोकप्रियता से अत्यंत भयभीत हो गए। भारत के देशभक्तों और क्रांतिकारियों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। स्वाधीनता आंदोलन का यह प्रमुख गीत बन गया। इस गीत की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस गीत की 150वीं जयंती मनाए जाने हेतु पूरे देशवासियों का आह्वान किया। इसी उपलक्ष्य में देशभक्ति और राष्ट्रीयता से परिपूर्ण इस गीत की 150वीं जयंती मनाई जा रही है।
1: अच्छा, ये गीत राष्ट्रीय गीत कैसे बना और आजादी के संघर्ष में इसकी भूमिका पर क्या किसी ने कुछ बोला?
2: क्यों नहीं, साहित्यकार और शिक्षाविद डॉक्टर महेंद्र सिंह मेहरा ने ये इतिहास खोला।
6: वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, यह भारत माता की आत्मा, स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। इस गीत में भारत माता की महिमा का अत्यंत सुंदर काव्यात्मक वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम एक प्रेरणा मंत्र बन गया था। जब भारत के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन करते थे तो वे वंदे मातरम के उद्घोष से अपने साहस और देशभक्ति को प्रकट करते थे। यह गीत आंदोलनकारियों के लिए ऊर्जा और आत्मबल का स्रोत बन गया था। भारत के स्वाधीन होने के पश्चात 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में वंदे मातरम के पहले दो पदों को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। वर्तमान में वंदे मातरम के प्रति नए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय कार्यक्रमों, विद्यालय की सभाओं और विशेष अवसरों पर वंदे मातरम को गाए जाने पर जोर दिया गया है। वंदे मातरम के पहले दो बंद प्रयोग में आते थे, अब संपूर्ण वंदे मातरम को गाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।
2: अब लेखक और शिक्षाविद डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गुसाई से सुनो कि देशवासियों में वंदे मातरम ने आजादी की अलख कैसे जगाई।
7: आनंद मठ उपन्यास में सन्यासी स्वतंत्रता संग्राम हेतु लगातार वंदे मातरम गीत गाते हुए झांकियां निकालते हैं, झूमते हैं, जो कि अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में सभी सन्यासी वंदे मातरम गीत को गाते हुए

0: इस गीत को सुनकर के आंदोलित होते हैं। अंग्रेज बार बार इन मठ सन्यासियों को गिरफ्तार करते थे, लेकिन ये सन्यासी इस गीत को गुनगुनाते हुए समाज को आंदोलित करते थे, समाज को अभिप्रेरित करते थे और लगातार इस गीत को गाते रहते थे। इस उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमेशा जो है सभी को यह प्रेरणा दी है कि हम लोग समाज को आगे बढ़ाएं, समाज जब स्वतंत्र होगा तभी हम जो है अपने जीवन को सार्थक समझ सकते हैं। इस उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी ने सभी को यह प्रेरणा दी है कि हम लोग समाज को आगे बढ़ाएं, समाज जब स्वतंत्र होगा तभी हम जो है अपने जीवन को सार्थक समझ सकते हैं।
1: अच्छा, भाषा ये तो संस्कृत जैसी लगती है ना?
2: संस्कृत और बांग्ला का मिलन है ये। माँ शब्द हर भाषा में माँ ही होता है। इसने पूरे देश को एक भाषा दी, देशभक्ति की भाषा। इसके लिए लेखक और साहित्यकार डॉक्टर पुनीता वाजपेयी को सुनो।
3: समय देश काल की स्थितियां साहित्यकारों रचनाकारों को उद्वेलित और प्रेरित करती रहती हैं। परतंत्रता के पास में जकड़े देश को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने के महान उद्देश्य में भारत माँ के अमर सपूतों को वंदे मातरम गीत ने एक नई प्रेरणा, उत्साह, उमंग और भारत माँ को पराधीनता से मुक्त कराने हेतु मर मिटने का जज्बा दिया। इस गीत में भारत माँ की आराधना की गई है। विश्व में एकमात्र देश भारत ही है जहाँ अपने देश को माता की संज्ञा और सम्मान दिया गया है। श्री राम जी मातृभूमि को मातृवत सम्मान देते हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देश के प्रति प्रेम, देशभक्ति व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य है। जिस व्यक्ति में देशभक्ति का भाव नहीं है वह पशुवत ही है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। जहाँ देशभक्ति मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव नहीं है वह शुष्क सरितावत ही है। अतः मातृभूमि की श्रद्धा सहित आराधना और वंदना में हम गा उठते हैं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात हम वात्सल्यमयी सर्वगुणमयी अपनी सुसंस्कृत आध्यात्मिक गौरव गाथा से विश्व को आलोकित करने वाली मातृभूमि के प्रति अतिशय आभारी हैं और भाव सहित भारत भूमि की वंदना करते हैं। इसके मस्तक पर हिमालय मुकुट के समान सुशोभित है। सागर की उत्ताल तरंगे सतत चरण प्रक्षालन करती रहती हैं। हमारे पुण्य देश में बहने वाली नदियाँ माता के समान प्राणियों का पालन पोषण करती हैं। हमारी वसुंधरा में अनेकानेक तीर्थ हैं जो सारे देशवासियों को एकता के सूत्र में निबद्ध करते हैं। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याह के रूप में वर्णित किया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। वस्तुतः जब समस्त जगत अज्ञान अंधकार में आवृत था तब भारत देश में वेदों का जय घोष मुखरित था। अतएव भारतीय वैदिकी संस्कृति प्राचीनतम और श्रेष्ठतम संस्कृति है। भारत की चतुर्दिक समृद्धि के कारण भारत देश को सुवर्ण पक्षी अर्थात सोने की चिड़िया कहा जाता था। सत्य ही कहा गया है, धन्या भारत भू प्रकाम वसुधा धन्या च तत् संस्कृति ही।
1: अच्छा, ये भी तो बताओ कि अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया था?
2: इसके लिए 1905 का बंग भंग याद करो। वंदे मातरम बोलना मतलब अंग्रेजी हुकूमत को ललकारना था। ये नारा नहीं, विद्रोह था। ये साहित्यकार और शिक्षाविद डॉक्टर किरण सूद से समझा।
4: 6 अगस्त 1905 को बंग भंग के विरोध में लगभग 30,000 भारतवासियों के द्वारा सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत की प्रस्तुति की गई। यही

0: से यह गीत अंग्रेजी शासन के लिए विद्रोही गीत मान लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित करने का विचार भी किया। लोकमान्य तिलक ने शिवाजी की समाधि के तोरण पर वंदे मातरम अंकित करवाया। 14 अप्रैल 1906 को कांग्रेस के जुलूस में वंदे मातरम का नारा लगाया गया। यहीं से यह गीत राजनैतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया। 1907 में जर्मनी में भीकाजी कामा द्वारा तिरंगे झंडे पर अंकित वंदे मातरम राजनैतिक आवाज का एक प्रखर स्वरूप बन गया। आर्य प्रिंटिंग प्रेस लाहौर और भारतीय प्रेस देहरादून से सन 1929 में पुनः इस गीत को क्रांति गीतांजलि में प्रकाशित किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी स्वयं को संतान अर्थात भारत माता की संतान के रूप में मानते थे और सामूहिक रूप से यह गीत स्वस्वर गाते थे, जंगलों में घूमते थे और प्रेरणा स्वरूप आम जनता को भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े होने के लिए उद्बोधन करते थे। आज भी यह गीत एक सैनिक उद्बोधन की तरह गाया जाता है। आज भी यह धुन भारत माता के प्रति अक्षुण्ण भक्ति के साथ साथ सेना बैंड की वह धुन है जो प्रत्येक भारतीय की शिराओं में नव रक्त संचार करता है। अक्टूबर 1905 में वंदे मातरम संप्रदाय कलकत्ता में संगठित हुआ। 1906 में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम नामक पत्रिका का आरंभ किया जिसमें श्री अरविंद सह संपादक रहे। यह राष्ट्रवाद का पावन अभिलेख और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय एकता का सूचक है। स्वतंत्रता संग्राम में उद्बोधन गीत आज भारत का राष्ट्रीय गीत स्वीकृत किया जा चुका है और भारतीय एकता व संप्रभुता का अक्षुण्ण स्वरूप बनाए रखने के लिए प्रेरणादायी संवाद है। यह किसान व मजदूर दोनों के लिए श्रम की महत्ता का सूचक है। यह छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्र निर्माण हेतु दिन रात एक करने का संदेश वाहक है। साथ ही साथ आज यह गीत भारत की संतति के लिए एकता का अभेद्य स्वर है। नारे के रूप में भी कहते हैं वंदे मातरम और गीत के रूप में भी पुनश्च पुनश्च इसकी पुनरावृत्ति की जाती है। यह एक प्रेरणा गीत है।
1: इस गीत ने कहा देश तुम्हारी माँ है और माँ की रक्षा के लिए लड़ने को पूरे समाज को इसने एकजुट किया। साहित्यकार और शिक्षाविद डॉक्टर आरती सिसोदिया।
2: वंदे मातरम सामाजिक चेतना का ऐसा प्रेरक उद्घोष है जो हमें हर भेदभाव से ऊपर उठाकर सामाजिक एकता, समरसता और मानवता की ओर ले जाता है। वंदे मातरम का प्रत्येक शब्द भारत की मिट्टी की सुगंध, उसकी समृद्ध संस्कृति, उसकी आध्यात्मिक गरिमा और उसके गौरवमय इतिहास की प्रचंड गूंज का संपूर्ण समावेश है। वंदे मातरम केवल शब्द नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण, सम्मान और कर्तव्य का जीवंत संकल्प है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान हमारी धरती, हमारी संस्कृति और हमारे समाज से जुड़ी है, जिसमें भारत केवल एक भूभाग नहीं बल्कि जीवंत चेतना है जहां प्रगति और परंपरा साथ साथ चलती है।
1: देखो जैसे तुम्हारा साथ मुझे मजबूत बनाता है ना, वैसे ही इस गीत ने पूरे देश को मजबूत और एकजुट किया अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए।
3: सच में माँ के लिए, मातृभूमि के लिए तो सर्वस्व बलिदान करना भी सौभाग्य ही कहा जाएगा।
1: हाँ, और सर्वस्व अर्पण करते भी हैं हमारे फौजी। सियाचिन में -50 डिग्री में जब वंदे मातरम बोलते हैं ना तो खून गर्म हो जाता है, दुश्मन को गोली से पहले हमारा जोश मार देता है। अब सुनो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा वल्लभ क्या बोलते हैं।
4: वंदे मातरम यह एक गीत ही नहीं, यह एक प्रेरणा है, यह एक ज्वाला है, यह एक कल्पना है, यह एक मर्यादा है, यह एक मान है, यह एक सम्मान है। अर्थात हम अपनी भारत माता

माता के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि माँ, जब तक मेरा जीवन है, मैं भारत माता की आन बान और शान पर आंच नहीं आने दूंगा। चाहे वह आजादी की लड़ाई हो या आधुनिक युद्ध हो, भारतीय सेना के सैनिकों ने इसी गीत को मर्यादा रूप में मानकर भारत माता के लिए हंसते हंसते दुश्मनों को लोहे के चने चबाकर वीर गति को प्राप्त होगी। वंदे मातरम एक सैनिक को यह याद दिलाती है कि राष्ट्र प्रथम भव, सबसे पहली राष्ट्र, उसके बाद सब कुछ। एक सैनिक इस गीत को अपनी प्रेरणा बनाकर वंदे मातरम गाते हुए दुश्मनों को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर देता है और भारत माता की आन बान शान पर आंच नहीं आने देता है। यह गीत ही नहीं परंतु सैनिकों की मन को झकझोर देने वाला और उनकी आत्मा में देश प्रेम के प्रति ओतप्रोत कर देने वाला वह गीत है जिसने आज तक हम सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोए रखा है। चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, खालसा, कोई भी धर्म हो, ग्रंथ हो, जाति हो, इन सब से उठकर यह गीत हमें राष्ट्र धर्म के लिए और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता है। भारतीय सैनिकों, चाहे वह थल सेना हो, वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, इन सैनिकों ने इस गीत को गाते हुए, चाहे वह 1947-48 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, चाहे 1971 का युद्ध हो, कारगिल युद्ध हो या ऑपरेशन पराक्रम हो, इन सभी युद्धों में यह गीत सैनिक के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना है और आगे ही बनता रहेगा। यह गीत हमारे मन में, हमारी आत्मा में राष्ट्रभक्ति, देश भक्ति और देश प्रेम की प्रेरणा को जगाता है। यह एक गीत ही नहीं परंतु साक्षात एक वह जीवन है जो हमें हमारे शरीर में एक नव ऊर्जा भर देता है। हमारे शरीर में इस गीत को गाते ही राष्ट्र प्रेमी और निस्वार्थ भाव से देश के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। वंदे मातरम हम सब भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था, है और रहेगा। जय हिंद।

0: और हमारे जैसे लोग, मतलब जो फौज में नहीं है, उनके लिए?
1: तो हम किसी भी क्षेत्र में हो, लोकहित और देशहित के लिए काम कर रहे हों, वो भी उतना ही जरूरी है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ बॉर्डर तक नहीं, अपना हर काम ईमानदारी से करना भी देशभक्ति ही है। देखो ना, डॉक्टर पूनम सिंह ने कितनी अच्छी बात कही।
2: वंदे मातरम गीत केवल एक गीत ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है। यह कालजयी उद्घोष हर भारतीय युवा को देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना से भर देता है। आज भी इस गीत की ध्वनि में वही जोश, भक्ति और मातृत्व का भाव झलकता है जो स्वतंत्रता सेनानियों के समय था। उस समय के युवा नेताजी बोस ने इसे अपनी इंडियन आर्मी का राष्ट्रीय गीत बनाया और उस समय के ही युवा भगत सिंह और साथियों ने इसी के उद्घोष से फांसी का फंदा चूमा था। वंदे मातरम में गूंजती ध्वनि केवल एक कालखंड की नहीं, बल्कि युगों युगों तक प्रेरणा देने वाली पुकार है। आज भी यह गीत हमारी युवा पीढ़ी में स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना से ओतप्रोत कर रहा है, जिससे युवा वर्ग विकसित भारत के निर्माण में एकजुट होकर अपना योगदान दे सके। यह गीत भारतीय जनमानस को सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व है। वंदे मातरम की पुकार हमें बार बार स्मरण दिलाती है कि राष्ट्र की सच्ची शक्ति उसकी एकता, आस्था और स्वाभिमान में निहित है। वंदे मातरम ने भारत की आत्मा को जागृत किया और यह सदा हमारी राष्ट्रीय चेतना की धड़कन बन युवाओं की नसों में देशभक्ति का संचार करता रहेगा।
0: मुझे आज अपने ही देश को बिल्कुल नए तरीके से महसूस कराया आपने। सच, मुझे तो आपको थैंक यू कहने का दिल कर रहा है।
1: अरे थैंक यू मत बोलो, बस एक काम करो, ये गीत सुनो मेरे साथ।

0: कितनी शक्ति है इसमें, जैसे हर शब्द दिल को छू रहा हो। इसमें माँ की लोरी भी है और रणभेरी भी,
1: और तुम्हारे प्यार जैसा सुकून भी। तुम मेरी ताकत हो और ये गीत इस देश की ताकत। दोनों को नमन। ये गीत हमारी संस्कृति, हमारा सम्मान और हमारी आत्मा है। वंदे मातरम।
2: अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का अमर स्वर पर आधारित रूपक, वाचन स्वर पुष्पा पुंडीर और अनुराग वर्मा के, आलेख एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश चंद्रा। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार, नवाचार, डिजिटल लर्निंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति में शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने ये बात मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में प्रतिभाग करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं तथा देश के और प्रदेश का भविष्य उनकी प्रतिभा, मेहनत और संकल्प पर निर्भर करता है। देहरादून के सैलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। यह कार्यवाही श्रमिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने के बाद की गई। प्रशासन ने सैलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू की है। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों को लागू प्रतिबंधों को जानकारी देते हुए शांति बनाए रखने की और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने बताया कि CBSE ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि CBSE ने पूर्व मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। राजधानी देहरादून में डेंगू और जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों की बैठक लेकर अस्पतालों में डेंगू जांच, इलाज, दवाइयों, ब्लड बैंक और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहे और डेंगू का कोई मामला सामने आने पर तुरंत कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने नगर निगम और नगर निकायों को शहर के सभी छोटे बड़े नालों और ड्रेनेज की सफाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में वॉलंटियर्स और रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैनात करने, नियमित फॉगिंग और लार्वा नष्ट करने के लिए रासायनिक छिड़काव कराने को भी कहा गया है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के संकल्प को पौड़ी गढ़वाल में नई दिशा मिल रही है। इस कड़ी में ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत विकासखंड पौड़ी के संकेत स्वायत्त सहकारिता द्वारा स्थापित हिलांश मशरूम इकाई में बेमौसमी मटन मशरूम के सफल उत्पादन की शुरुआत हो गई है। यह पहल ग्रामीण आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण एवं स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ग्रामोत्थान परियोजना प्रबंधक कुलदीप बिष्ट ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर जोर दे रही है। ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से स्थापित यह यूनिट स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग का सफल उदाहरण बनकर सामने आई है। उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत ग्राम्य विकास विभाग के एक अनुपयोगी भवन का पुनर्विकास कर उसे आधुनिक मशरूम उत्पादन इकाई के रूप में विकसित किया गया है। यूनिट में कुल 2 इकाई उत्पादन इकाइयां स्थापित की गई हैं। प्रथम यूनिट में 500 मटन मशरूम बैग लगाए गए थे जिनसे अब सफलतापूर्वक उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:35 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में समूह स्वर में रोहेलखंडी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम चल रहा है लोक संगीत का और आप सुन रहे हैं समूह स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत।

0: समूह स्वर में इसी रूहेल खिंडी गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजे पेश है व्हाट्सएप फरमाइश।

व्हाट्सएप फरमाइश के हमारे सभी श्रोताओं को संगीता सेमवाल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं जी हाँ, आज सप्ताह का पहला दिन है मंडे, और मंडे के दिन बहुत सारे काम लाइनअप होते हैं। सारे के सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश सुनते हुए। जो हमारे नए श्रोता हैं, हम उन्हें बिल्कुल बताना चाहेंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और श्रोताओं शामिल करते हैं आपकी फरमाइश को। पहली फरमाइश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं, जिला झारखंड बड़ा बाम्बो सुपा

नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। ये हमारे श्रोता हैं मोहम्मद आसिफ शेख, मोहम्मद अजीम शेख, मोहम्मद जावेद शेख, फातिमा गाजी शेख, मुन्ने सलमानी, एम के मोहम्मदी, गांधी रोड गजरूंडवारा से अपनी फरमाइश हमें भेज रहे हैं। शेरवानी स्कूल गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से आप हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी हमें अपनी फरमाइश भेज रही हैं। आप हमारे श्रोता हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। साथ ही ये हमारे श्रोता जो इस समय हमसे जुड़े हैं और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं, आप हैं हर्षिता रामेश्वरम रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, लाल माता, सुदामा नगर, रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से। आप हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावाली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। गांव जाखोद राजस्थान से आप हमारे श्रोतागण हैं शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक इस समय हमें सुन रही हैं। और साथ ही हमें संदेश के साथ अपनी फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कस्बा उधेती बंदायू से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, निर्भय गुप्ता। सिहारा जिला बिजनौर से आप हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात, आदिब और कादिर चौधरी। गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही पहुंचा रहे हैं करणवीर हाउस बूचो केंचिया बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वारिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजीत अपनी फरमाइश हम तक भेज रहे हैं। आप हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी नाना जी तामसे, मीना तामसे, तेजस जय तामसे, हर्षिता तामसे। तो लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश का ये गीत।

अगली फरमाइश हम तक पहुंची है। आप हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। मलियान सरधना मेरठ से आप हैं। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवयम जैन। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहुजा अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ कैंट से आप हमारे श्रोता हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। पांडरकवड़ा से श्री अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। आप हमारे श्रोता हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से आप हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय। और ये हमारे श्रोता हैं कुशेश्वर कांति गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, कुसुम गुप्ता, रूपा इलाहाबादी। पीली कॉलोनी ऐशबाग से रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि गुप्ता, नीलम गुप्ता, संजना रानी, ललिता गुप्ता अपनी फरमाइश हम तक भेज रहे हैं। निकट बिजली घर मीरगंज बरेली से आप हैं कल्लू भाई मिस्त्री, अजीम साइकिल वाले, मुबारक पेंटर मनोज वर्मा। कलानौर से आप हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से आप हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। दाऊद सराय सहारनपुर से आप हमारे श्रोता फरमाइश भेजने वाले हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से आप हैं हमारे श्रोता लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी।

सैयद आलम हाशमी एवं हाशमी परिवार नाज पैलेस अजमेर शरीफ राजस्थान से अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं। आप है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन और मयंक शर्मा। परी महल कासगंज से आप हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली। मीरा सराय बंदायू से आप हैं आफरीन खान, जमीर खान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, सुनाते हैं आपको आपकी फरमाइश का ये गीत।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। ये हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। और ये श्रोता हमें अपना फरमाइश हमें लिखकर भेज रहे हैं। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। बहुत अच्छा लगता है श्रोताओं जब आप हमसे जुड़ते हैं और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। आप हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमारे श्रोता हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिथान खुराना। चंदन नगर सहारनपुर से आप अपनी फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग। रामदेवरा से आप हैं दिनेश चौहान, डांगरी से हैं बाबू राम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से आप हैं खुदा बख्श खलीफा। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से अपनी फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं बबलेश पंवार, टेनी पंवार और मनीष पंवार। आप हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव। और आप हमारे श्रोता हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। धनोरी तेलीवाला से आप हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से आप हमारे श्रोता फरमाइश भेज रहे हैं कानुकुला गोपाल, महेश्वरी प्रवालिका, विष्णुवर्धन विग्नेश। शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी अपनी फरमाइश हमें भेज रहे हैं गंज डूंडवारा से। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। मजनू का टीला से आप हमारे श्रोता फरमाइश भेज रहे हैं कमल बालूचा, मधु बालूचा, सागर बालूचा और सतना मध्य प्रदेश से आप हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। फातिमा कॉलोनी महाराष्ट्र से फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं नासिर शेख, नाजियान नसीर, साजिद शाहिद। गोविंदपुरा अहमद नगर से आप हैं जुनेद मुजावर, सुबिहा मुजावर और मिखाइल जैनब मुजावर। गवन तेजा मोहरी अंबाला से आप हैं, हरियाणा से आप हैं बंसीलाल संधू। और ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से आप हमारे श्रोता फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से आप हैं पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर। मलकापुर से आप हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहेरकर। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से आप हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। साथ ही गोल्डन रेडियो श्रोता संघ
मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से आप हैं, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली उत्तर प्रदेश से अपनी फरमाइश भेज रहे हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती और रचना भारती। जिला कासगंज यूपी से आप हैं योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया फर्रुखाबादी हमें अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। तो श्रोताओं लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश का ये गीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में और शामिल करते हैं आपकी फरमाइश। मोहाली पंजाब से आप हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और ये हमारे श्रोता हैं कौन सा ही गीत सुनवाइए, ये आप लिख रहे हैं। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत, ग्राम कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से आप हैं। मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित सोमू, मानस राज, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप हमारे श्रोता हैं। गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास और बेबी आयुषी श्रीवास। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से आप हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर। ग्राम पुटवाक तेलंगाना से आप हैं भवानी वेंकट, मास्टर मिथुन महादेव। आप हैं पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघनकर, दुशांत कुमार सिंघनकर और अर्पिता जी। हैदराबाद से आप लिख रहे हैं बीएन रेड्डी नगर से मोनिका बालू, विनय कुमार। अपनी फरमाइश भेजने वाले ये हमारे श्रोता हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरिजीत सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। महेश्वर हैदराबाद तेलंगाना से आप हैं गोपाल और उमा माहेश्वरी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में, और अब शामिल करते हैं आपकी फरमाइश को। तेलंगाना छोटूपल से आप हैं कस्तूरी रामुदु उम्मेद देवी और पृथ्वी नारायणा। आप हमारे श्रोता हैं रामपुर ग्राम दिव्या नगला अंबेडकर पार्क के पास से आकाश गौतम, सौरभ गौतम, विक्की गौतम, कपिल गौतम और अर्पित गौतम इस समय अपनी फरमाइश हमें भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से आप हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अभी आपने हमें अपनी फरमाइश भेजी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से आप हमारे श्रोता हैं विनोद पुरी, वीपी रांझू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, पीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी, रामापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक और वीके पुरी, विनोद पुरी। रावर करनाल से आप हैं ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, और आप हमारे श्रोता हैं धनोरी तेलीवाला से आप हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान पापू। मुजफ्फरनगर बिहार से अपनी फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, और आप हैं छाबड़ा से स्वीटी छाबड़ा, रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर। नई दिल्ली टैगोर गार्डन से आप हमें अपनी फरमाइश भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल चौक गंगझला सहरसा बिहार से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, कुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल राय और बुल्की वाली और फलना झा इस समय अपनी फरमाइश हमें भेज रहे हैं। आप हैं परम सिंह, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन, अभिजीत इस समय हमें अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। उत्तम नगर दिल्ली से आप हमारे श्रोता हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से आप हमारे श्रोता हैं कारी राय कारी, मीना कारी, पुंजराज, आरती आकर्षण और जयश्री। संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव भेज रहे हैं अपनी फरमाइश बघेरा दुर्ग से। ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देव, देवांशु और डब्लू जी अपनी फरमाइश हमें भेज रहे हैं। पप्पू श्रोता संघ मेन रोड फारवीजगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार, बिमल और इनके सभी साथीगण। अनारकली बाजार जगराव से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव और इनके सभी श्रोतागण साथीगण। ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आप हैं उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल और पूरा इनका परिवार अपनी फरमाइश हम तक भेज रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे श्रोतागण इस समय इस तरह से हमसे जुड़ते हैं और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं, और हमारा भी प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने श्रोताओं के नाम जो है वो कार्यक्रम में शामिल करें। तो श्रोताओं बिल्कुल सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश, और अब शामिल करते हैं आपकी फरमाइश। ये फरमाइश हमें भेजी है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। कृष्णा कॉलोनी हांसी से आप हैं सुभाष योगी, सुशील योगी, पप्पू टप्पू, राजू मिकलानी और पविता मिकलानी। गांव लोहगढ़ ठाकुरा बाला से आप हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह, कुरनूर सिंह, कुणलाल सिंह, अविराज सिंह। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से आप हमारे श्रोता फरमाइश भेज रहे हैं राजेंद्र कुमार, मलकित कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के इनके सभी सदस्यगण। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से आप हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। फरमाइश भेज रहे हैं लालपुर मरो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव, निमी पम्मी ध्रुव, सिया हर्षिता ध्रुव और निशांत ध्रुव। आप हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। बटीडा रोड मंडी डब्वाली से आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और इनके सभी साथीगण। ये हमारे श्रोता हैं गांव केरो जिला तरन तारण पंजाब से आप हैं गुरदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशबद। आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। रानीगंज बंगाल से आप हैं रवि और इंदर। ये हमारे श्रोता हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। चौटाला हरियाणा से आप हैं दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। सतीश अनेजा, बिमला अनेजा चंडीगढ़ से अपनी फरमाइश हमें भेज रहे हैं। साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी उत्तर प्रदेश से अपनी फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती विनायक सिंह, मोहिनी मोहित सिंह और प्यारी प्यारी कोको रानी। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस रामगढ़िया। तेलंगाना स्टेट करीमनगर से आप हैं लक्ष्मी नारायणा, विजया, अभिनय, साई किरण। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना मन मानस और कनिका पटेल अपनी फरमाइश हम तक भेज रही हैं। तो लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश का ये गीत।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश हम शामिल करते हैं। आप हैं फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालनी खेड़ा, तिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा और पी खेड़ा, जीवन सिंह और समस्त खेड़ा परिवार। आप हमारे श्रोता हैं। राजेश्वरी सागर हैं आप, अधिकारी निवास मिलन विहार, जीएमएस रोड, देहरादून से अपनी फरमाइश हमें भेज रही हैं। आप हैं गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोर्ड, तमन्ना कांगड़ा। आप हमारे श्रोता हैं रघुवीर, श्री रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। गांव भोजपुर सहारनपुर से आप हैं मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद। मारहरा दरवाज़ा एटा से आप हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से आप हैं मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। आप हैं नूतन सुधीर, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, स्प्रीत शर्मा, हरिपाल कौर हमें अपनी फरमाइश भेज रही हैं करनाल से। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से आप हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के

0: नीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा, औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वाली स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917 जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़ककर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his 2-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor, to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Sweden reports that elevation of bilateral ties to the level of a strategic partnership is guided by the India-Sweden Joint Action Plan 2026 to 2030. The comprehensive roadmap aims to double bilateral economic exchange within the next 5 years and deepen cooperation under the Make in India and Made with Sweden initiatives, particularly in areas such as green hydrogen, semiconductors and advanced manufacturing. A defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government, symbolizing the deepening civilizational and democratic bonds between the two nations. Defense Minister Rajnath Singh departed on a two-nation visit to Vietnam and South Korea today. In a social media post, he said the visit

0: will further expand the scope of the country's engagement with both nations. He added that the visit will focus on deepening strategic military cooperation, strengthening defense industrial partnerships, and boosting maritime collaboration in the Indo-Pacific region. Union Home Minister Amit Shah today flagged off 400 next-gen Dial 112 vehicles in Raipur. Chief Minister Vishnu Deo Sai, State Assembly Speaker Raman Singh and Deputy Chief Minister Vijay Sharma were also present on the occasion. So far, the Dial 112 service was available in only 16 districts of Chhattisgarh. The state government has now expanded the service to all 33 districts. In Kerala, the new UDF ministry headed by senior Congress leader V.D. Satheeshan was sworn in today at Thiruvananthapuram. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath to the new ministers.
1: Yana, Vadaseri, Damodara Menon, Satheeshan, Inmanyan, Niyamamvali Stabidamaya, Bharatathinte Bharanaghadanayodu, Nirvyajamaya Vishwasthathayum.
0: Former opposition leader and former KPCC President Ramesh Chennithala, present KPCC President Sunny Joseph, former KPCC President K. Muralidharan and IUML leader P. K. Kunyalikutty are among the senior leaders in the new ministry. A vessel carrying 20,000 metric tons of liquefied petroleum gas LPG arrived at Deen Dayal Port Authority in Kandla in Gujarat after crossing the Strait of Hormuz amid the West Asia crisis. The Marshall Islands flagged MV Semi started this journey from Qatar and docked at the port in Kandla on Saturday. Since early March, 13 India-flagged vessels comprising 12 LPG tankers and one crude oil tanker have crossed the Strait of Hormuz. In a landmark decision, the Shubhendu Adhikari-led BJP government in West Bengal has raised the upper age limit for entry into state government jobs. The upper age limit for recruitment to Group A posts has now been set at 41 years. For Group B posts, the limit has been raised to 44 years. And for Group C and Group D posts, the maximum age is now 45 years. The government clarified that where higher age limits are already in place, the existing rules will continue. In IPL cricket, host Chennai Super Kings will take on Sunrisers Hyderabad at M.A. Chidambaram Stadium. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. In the latest standings, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. In tennis, Jannik Sinner won the Italian Open title in Rome after defeating Casper Ruud of Norway 6-4, 6-4 in the final. And with that, we end this news bulletin.
2: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:10 में लीजिए सुनिए एफएम न्यूज हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। नीज यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र से लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल ने कहा कि क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, पेयजल समेत अन्य कार्यों में लगातार प्रगति हुई है। अग्निवीर क्लर्क, एसकेटी, ट्रेड और आरटीजीसीओ श्रेणी भर्ती वर्ष 2025-26 का परिणाम घोषित हुआ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा चलाए गए सघन अभियान में 96% से अधिक राजस्व से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण किया गया। पौड़ी गढ़वाल के चारधाम यात्रा मार्ग पर यातायात के नियमों का पालन करवाने और सुगम यात्रा करवाने को लेकर परिवहन विभाग सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने प्रगना हल्द्वानी क्षेत्र अंतर्गत संचालित होम स्टे इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। काठगोदाम में नियम विरुद्ध चल रहे होम स्टे बंद करने के निर्देश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया, जबकि चेन्नई में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। लीजिए अब सुनिए विविध कलाकारों के गाए भजन कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनाते हैं डॉक्टर देव प्रसारकर के स्वर में कार्यक्रम का ये पहला भजन।

विविध कलाकारों के गाए भजन आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भजन पवी गौड़ के स्वर में।

विविध कलाकारों के गाए भजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। और अब कार्यक्रम का अंतिम भजन सुनिए गजेंद्र कुमार कौशिक के स्वर में।

अभी आप विविध कलाकारों के गाए भजन सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब इन्हें सुनेंगे कार्यक्रम घर गृहस्थी।

नमस्कार बहनों, FM 100.5 MHz पर आप सुन रही हैं अपना मन पसंद कार्यक्रम घर गृहस्थी। और आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी बहन सुरुचि वर्मा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न होंगी और अपना और अपने परिवार का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रही होंगी। बहनों, ध्यान तो हमें अपने घर के बुजुर्गों का बहुत अधिक रखना चाहिए, खासकर उनके सम्मान का। जी हाँ बहनों, कहते हैं कि जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आ जाती है। हमारे माता पिता, दादा दादी और नाना नानी वो पेड़ हैं जिनकी छांव में पूरा परिवार सुरक्षित महसूस करता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की, त्याग किया और हमें इस काबिल बनाया कि हम जीवन में आगे बढ़ सके। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने बुजुर्गों को समय देना भूलते जा रहे हैं। कई बार वो घर में होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनको प्यार, सम्मान और अपनेपन की। बहनों, बुजुर्गों का सम्मान केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि व्यवहार से दिखाई देता है। उनसे प्यार से बात करना, उनकी सलाह मानना और उनकी भावनाओं की कद्र करना ही सच्चा सम्मान है। चलिए अब इस विषय पर आगे और भी बातें करेंगे आपसे, पर अभी कार्यक्रम में थोड़ा मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं ये सुंदर सा लोकगीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है बहनों। आप सुन रही हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर गृहस्थी। तो बहनों, हम बात कर रहे थे बुजुर्गों के सम्मान की, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर में बुजुर्ग खुश रहते हैं तो पूरा परिवार खुशहाल रहता है, बच्चे भी अच्छे संस्कार पकड़ते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता को बुजुर्गों का सम्मान करते हुए देखते हैं तो वो भी यही सीखते हैं। दोस्तों, कभी कभी सिर्फ दो मीठे बोल भी किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसा रहा, उनके साथ बैठकर चाय पीजिए, उनकी पुरानी यादें सुनिए, यकीन मानिए उन्हें दुनिया की सारी खुशी मिलेगी। कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं महनों, जो अपने बच्चों के होते हुए भी वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर है। ये केवल उनकी ही नहीं बल्कि समाज की भी पीड़ा है। हमें ये समझना होगा कि आधुनिकता अपनाना गलत नहीं है, लेकिन अपने संस्कार और रिश्ते को भूल जाना गलत है। ज़रा सोचिए, जब हम छोटे थे तब हमारे माता पिता ने हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखा, रातों की नींद त्याग कर हमारी परवरिश की, हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया और ज़िंदगी जीना सिखाया। और जब उनकी उम्र ढल रही है तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनका सहारा बने? बुज़ुर्गों केवल अनुभव का खजाना नहीं होते हैं बहनों, बल्कि वे हमारे संस्कारों की पहचान भी होते हैं। उनके पास जीवन के ऐसे अनुभव होते हैं जो किताबों में नहीं मिलते। उनके बताए गए रास्ते और सीख कई बार हमें गलतियों से बचा लेते हैं। तो आइए बहनों, आज हम सभी यही संकल्प लें कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देंगे और उनके अनुभवों और आशीर्वाद को अपनी ताकत बनाएंगे। क्योंकि बहनों, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां भगवान का वास होता है। इसलिए आप सभी अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें, उनसे प्यार करें। चलिए, अब हमेशा की तरह हम आपके लिए एक वार्ता भी लाए हैं। वार्ता का विषय है कृषि में महिला भागीदारी। वार्ताकार है श्रीमती साधना सेमवाल। तो आइए बहनों, सुनते हैं ये वार्ता।
3: उत्तराखंड की कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान रीढ़ की हड्डी के समान होता है, जो बीज बोने से लेकर फसल कटाई, पशुपालन में शामिल है। महिलाएं न केवल खेत में काम करती हैं, बल्कि बीजों का संरक्षण और पशुधन का प्रबंधन भी करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं रुपाई, निराई, कटाई, बीजों का संग्रह और जैविक खेती जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। कहा जाता है कि पहाड़ की महिला कर्मठ और मेहनती होती हैं। और आज जब हम पहाड़ी महिलाओं के कामकाज को विस्तार से देखते हैं तो वाकई ये सभी महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं। घर का चूल्हा चौका, पशुओं की देखभाल करना, पशुओं के लिए जंगल से घास लाना और फिर खेतों में काम करना ताकि उनकी खेती में फसल की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उनका साल भर का अनाज खेती से निकल सके। इतिहासकारों का मानना भी यही है कि महिलाओं ने ही सर्वप्रथम फसली पौधों का प्रारंभ किया और खेती की कला का विकास हुआ। उस समय पुरुष भोजन की तलाश में बाहर चले जाते थे और महिलाएं देसी पेड़ पौधों से बीज व फल एकत्रित करती थी। इस प्रकार महिलाओं ने खेती का विकास किया, इसलिए उत्पादन में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक है। जैसे बीज बुआई और फसल तैयार करना, महिलाएं खेत की तैयारी, बीज बोने और पौधे के देखभाल में योगदान देती हैं। सिंचाई और फसल संरक्षण, महिलाएं सिंचाई व्यवस्था में भाग लेकर फसलों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती हैं। फसल की कटाई और संरक्षण, फसल कटाई के दौरान महिलाएं खेत में काम करती हैं और उत्पाद को उचित रूप से संग्रहित करती हैं। पशुपालन, महिलाओं का पशुओं की देखभाल और पालन में भी बड़ा योगदान होता है, जो खाद और कृषि उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण है। फसल बेचना, महिलाएं फसलों को स्थानीय बाजारों में बेचने का कार्य करती हैं, जिससे परिवार की आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार महिलाओं का योगदान कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, परिवार की आजीविका सुनिश्चित करने और ग्रामीण विकास में सहायक होता है। और देखा जाए तो प्राचीन समय और वर्तमान समय में महिलाएं कृषि में अपना अलग अलग तरीके से योगदान देती थी। तो सबसे पहले प्राचीन समय में महिलाओं का कृषि में योगदान, हमारी दादी नानी के समय में महिलाएं खेती को अधिक समय देती थी, उनका जीवन ही कृषि पर आधारित था। धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड पड़े, खेती में बिना काम करे उनकी दिनचर्या पूरी नहीं होती थी, क्योंकि उनके ऊपर पूरे परिवार के भोजन की जिम्मेदारी होती थी। उस जमाने की महिलाएं पढ़ी लिखी कम होती थी, उन्हें कृषि से संबंधित जानकारियां भी कम होती थी। उसके बाद भी वो निरंतर प्रयास करके सीखती थी और अपनी जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा करती थी। उस समय उनके पास संसाधनों की कमी भी अधिक होती थी, जैसे उनको उच्च गुणवत्ता वाला बीज ना मिलना, खेतों की कमी होना, सिंचाई के पर्याप्त संसाधन ना मिल पाना। इसके बावजूद भी महिलाएं कृषि में अपनी पूरी भागीदारी निभाती थी। पुराने जमाने में महिलाओं को रोजगार के लिए कृषि नहीं करनी होती थी, उन्हें तो बस अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि करनी होती थी। रोजगार के लिए कृषि का चलन तो अब धीरे धीरे बढ़ा है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो महिलाएं हर काम में आगे बढ़ रही हैं। कृषि में महिलाओं ने बहुत तरक्की कर ली है। बोला जाता है कि आज की महिलाएं खेतीबाड़ी में दिलचस्पी कम दिखा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज महिलाएं स्मार्ट वर्क कर रही हैं, कृषि को अपना रोजगार बना रही हैं, फसल उगाने के लिए नए नए तरीके भी ढूंढ रही हैं। जैसे शहर में रहने वाली महिलाएं टेरेस गार्डन यानी घरों की छत पर ही थोड़ा थोड़ा फसलों को उगाने का काम कर रही हैं, उससे वे अपनी रोजमर्रा की सब्जी और फलों का उत्पादन करती हैं। कुछ महिलाओं ने मशरूम खेती की जानकारी लेकर मशरूम खेती का अधिक मात्रा में उत्पादन करके उसे अपने रोजगार में शामिल किया है। विभिन्न प्रकार के फलों को भी महिलाओं ने उगाना शुरू कर लिया है और अन्य महिलाओं के लिए रोजगार देने में सहायता भी कर रहे हैं। वर्तमान समय में महिलाओं के पास संसाधनों की कमी नहीं है, उनके पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में हैं। कृषि की अनेक जानकारी लेने के विभिन्न तरीके हैं, जो उन्हें सिखाते हैं कि बीजों का संरक्षण कैसे करना है, फसल को सही तरीके से कैसे उगाएं, फसल की अच्छी पैदावार के लिए उच्च गुणवत्ता के बीज का चयन करना, जैविक खाद का उपयोग करना, फसल की पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करना, क्योंकि वर्तमान समय में सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, फसल की कटाई के लिए मशीनें उपलब्ध हैं और बीजों को स्टोर करने के लिए भी मशीनें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कृषि उत्पादन में महिलाओं की प्रमुख भूमिकाएं होती हैं, जैसे क्षेत्रीय और श्रमिक भूमिका। कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे स्वतंत्र किसान, बिना वेतन लेने वाले श्रमिक और वेतन भोगी कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं। फसल उत्पादन के लिए महिलाएं बुआई, रोपाई, निराई, खाद डालना और फसल कटाई जैसे श्रम साध्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फसल के बाद के कार्य, फसल काटने के बाद अनाज को सुखाना, भंडारण, सफाई और ग्रेडिंग करना मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। पशुपालन और डेयरी, पशुधन प्रबंधन, चारा खिलाना, दूध निकालना और डेयरी उत्पादों को बेचना तथा खाद का कृषि में पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना, ये सभी मुख्य भूमिकाएं महिलाओं की ही हैं। पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में, पहाड़ी राज्यों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से भी अधिक है। पुरुषों के रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन के कारण महिलाएं स्वतंत्र रूप से खेती की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उत्पादकता में वृद्धि, यदि महिलाओं को पुरुषों के समान संसाधनों जैसे भूमि, बीज, तकनीक तक पहुंच मिले तो महिलाएं अपनी खेती के उपज में अधिक से अधिक मात्रा में वृद्धि कर सकती हैं। कृषि में महिलाओं के लिए समाज की आम धारणा क्या है। जब भी कृषि संबंधी चर्चा होती है तो किसान के रूप में पुरुषों के बारे में ही सोचा जाता है। महिलाओं का नाम कृषि भूमि के मालिक के रूप में दर्ज ना होने के कारण उनको किसानों की परिभाषा से बाहर रखा जाता है। कृषक के रूप में मान्यता ना मिलने से महिलाएं नियमानुसार सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। सरकार भी महिलाओं को कृषि कार्य में सहायक या खेतीहर मजदूर के रूप में मान्यता देती है, ना कि कृषक के रूप में। दुनिया में लगभग आधी कृषि श्रम शक्ति महिलाओं की है और महिलाएं कृषि में अधिक योगदान देती हैं।
2: बहनों, अभी आपने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था कृषि में महिला भागीदारी। वार्ताकार थी श्रीमती साधना सेमवाल। उम्मीद है आपने वार्ता को ध्यान से सुना होगा और कृषि में महिला की भागीदारी को समझा होगा। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा मनोरंजन भी करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा रुहेलखंडी लोकगीत।

कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है बहनों। बहनों, आजकल धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देख ही रहे हैं कि बाहर कितनी तेज़ धूप है, गर्म हवाएं हैं। ऐसा सब हमारी स्वास्थ्य पे बहुत असर डालता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने शरीर को बाहर जब जाते हो तो ढककर ही जाएं, क्योंकि गर्मियों में त्वचा की देखभाल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी बाहर जाएं तो सूती कपड़े पहने, सिर को दुपट्टे या टोपी से ढके और चेहरे पर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। इससे त्वचा सुरक्षित रहती है और घर लौटने के बाद आप चेहरे को ठंडे पानी से धो भी सकते हैं। इससे आपके जो शरीर को है वो ठंडक मिलेगी, चेहरे को ठंडक मिलेगी। और बहनों, गर्मियों में शरीर से पसीने के रूप में पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आप ज़रूर पिए। साथ ही नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और घर का बना शरबत भी शरीर को ठंडक देता है। और खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। गर्मियों में हल्का और पौष्टिक भोजन करें। हरी सब्जियां, मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी जरूर खाएं। ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना शरीर में गर्मी बढ़ाता है, इसलिए इससे आपको बचना है। और इस समय आपको जो है नींद का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग घर के कामों में इतना व्यस्त रहती है कि खुद को आराम देना भूल जाती है। लेकिन गर्मी में शरीर जल्दी थकता है बहनों, इसलिए पर्याप्त नींद और थोड़ा देर आराम करना बहुत ज़रूरी है। और साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। बाहर का खुला खाना बिल्कुल ना खाएं। और सबसे ज़रूरी बात बहनों, मानसिक स्वास्थ्य। बहनों, आप परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद के मन की शांति भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालें, संगीत सुनें, योग करें, हल्की सैर करें आप, और कोई भी अपना पसंदीदा काम है वो आप ज़रूर करें, और शरीर भी इसका आप जो है स्वस्थ रहेगा और खुश रहेगा। चलिए, अब इसी के साथ ही बहनों, समय भी हो रहा है आप सभी से विदा लेने का, पर आप हमें पत्र लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगती है, ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता भी लिख लीजिए। हमारा पता है, कार्यक्रम घर गृहस्थी, अनुभाग कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी देहरादून। हमारा पिन है 248001। और जगत कृषि @gmail.com पर आप हमें अपने ईमेल्स भी भेज सकती है बहनों। अब अपनी बहन सुरुचि वर्मा को अनुमति दीजिए फिर से आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखते रहिए, और गर्मी में जब बाहर जाएं तो अपना शरीर ढककर जरूर जाएं। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो गर्मी से जो तबीयत है वो भी सही रहेगी, और आप अपने शरीर को आराम भी देते रहें। इससे आपके शरीर को आराम मिलेगा, तरोताजगी रहेगी और गर्मी में भी आप बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आपकी बहन सुरुचि वर्मा, आपसे फिर मिलते हैं। बहनों, नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम घर गृहस्थी। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.5 MHz पर।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और

0: के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2,00,000 और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: केंद्र है FM 7.5 MHz पर। दोपहर के 1:05 में लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुमाऊं के तराई वन क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर वन विभाग पूरी तरह अलर्ट। राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने तेज की प्रक्रिया। और चमोली जिले के देवाल में 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन लोकगीत व लोक नृत्य कार्यशाला का आयोजन। नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और लोक परंपराओं को संरक्षित करना है उद्देश्य। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने केदारनाथ धाम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल से संवाद करते हुए कर्तव्य निर्वहन में आ रही चुनौतियों का फीडबैक भी लिया। उन्होंने केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऋषिकेश से सोनप्रयाग और केदारनाथ धाम तक सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस महानिरीक्षक ने धाम में भीड़ प्रबंधन और लाइनों में प्रतीक्षा समय कम करने सहित श्रद्धालुओं के लिए गई अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पुरोहित समाज और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश भी दिए।
1: जब से हमारे श्री धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं तो भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और इस बार भी श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जो कि विगत वर्षों के बाद इस बार बड़ी हुई संख्या आ रही है। मेरे द्वारा पूरी यात्रा मार्ग का ऋषिकेश से लेके सोनप्रयाग तक का भ्रमण किया गया, फिर केदारनाथ धाम का भ्रमण किया गया। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई और यहाँ के SP रुद्रप्रयाग ने अवगत

0: किराए की समुचित व्यवस्था यहाँ पे है, जो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी समुचित ढंग से हुआ है, और जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
1: कुमाऊं के तराई वन क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर वन विभाग पूरी तरह अलर्ट है। तराई पूर्व के प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बांगरी ने कहा कि पूरा तराई क्षेत्र वन्यजीव के दृष्टिगत बेहद समृद्ध और संवेदनशील है, जहां वन्यजीवों की अच्छी खासी आबादी है और जंगलों से लगे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। कई बार ग्रामीण जंगलों में आवाजाही करते हैं, जिससे अचानक वन्यजीवों से आमना सामना हो जाता है और हादसे से हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रभागीय वन अधिकारी हिमांशु बांगरी ने बताया कि हाल ही में विभाग ने जंगल किनारे रहने वाले लोगों को बड़ी संख्या में टॉर्च वितरित किए हैं, ताकि रात के समय लोग सुरक्षित तरीके से आवाजाही कर सकें। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में घटनाएं अधिक हो रही हैं, वहां जरूरत के अनुसार पिंजरे लगाए जा रहे हैं और वन्य जीवों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया कि अब विभाग वैज्ञानिक तरीके से वन्य जीव प्रबंधन पर काम कर रहा है। इसके तहत वन्य जीवों की गणना, उनकी आवाजाही और व्यवहार का अध्ययन कर भविष्य की रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जंगल में कभी अकेले न जाएं, अंधेरे में टॉर्च का प्रयोग करें और चलते समय हल्की आवाज करते रहें, ताकि वन्य जीवों से अचानक सामना न हो। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते 4 साल में सरकारी सेवा में चयनित हुए कार्मिकों को डिजिटल माध्यम से पत्र लिखकर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि बीते 4 साल में राज्य सरकार द्वारा लगभग 30,000 से अधिक युवाओं को राजकीय सेवक के रूप में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है और यह अभियान आगे भी जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कठोर नकल विरोधी कानून के साथ ही निष्पक्ष, ईमानदार और पारदर्शी चयन प्रक्रिया ने भी युवा प्रतिभा को उचित सम्मान मिलना सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने चयनित कार्मिकों से निष्पक्ष और ईमानदार रहकर अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने की अपील करते हुए कहा है कि राजकीय सेवक के रूप में वो मानवीय मूल्यों के साथ आमजन की सेवा में हमेशा तत्पर रहें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई चयनित युवाओं से दूरभाष पर बात कर उन्हें उत्साहपूर्वक जनसेवा में योगदान देने की भी अपील की है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में जिलाधिकारी समीन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर लंबित चिन्हीकरण प्रकरणों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए 7 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि चिन्हीकरण प्रक्रिया में क्षेत्रीय आंदोलनकारी समितियों के सदस्यों को शामिल किया जाएगा, ताकि वास्तविक आंदोलनकारियों के मामलों का निष्पक्ष परीक्षण हो सके। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश देने के साथ ही इसमें देरी होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के तत्वावधान में चमोली जिले के राजकीय इंटर कॉलेज लुआणी देवाल में 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन लोकगीत व लोक नृत्य कार्यशाला आयोजित की जा रही है। पद्मश्री से सम्मानित राज्य की लोक गायिका बसंती बिष्ट के मार्गदर्शन में स्कूली बच्चों और ग्रामीण महिलाओं को उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति से जुड़े गीत और नृत्य सिखाए जा रहे हैं। इस कार्यशाला में झोड़ा, चांचड़ी, थड़िया और झुमेलो जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रीमती बिष्ट ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और लोक परंपराओं को संरक्षित करना है।
4: अब ये 20 दिवसीय कार्यक्रम है, उत्तर सांस्कृतिक पटियाला के अंतर्गत ये आया है। इसमें हम जो अभी हमारी विलुप्त हो चुकी है वो संस्कृति झोड़ा, चांचड़ी, चंपला और दूसरी गाथाएं और लोक नृत्य, शुद्ध लोक नृत्य को हम सिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मेरी भूमि।

0: है। मेरा गांव है ये ग्राम वाणी राजकीय विद्यालय जो यहाँ है। यहाँ 3 गाँव के बच्चे और महिलाएं आ रही हैं, और पहले तो नियंत्रण में नहीं आए, लेकिन अब लोगों का रुझान होने लगा है अपनी संस्कृति के प्रति।
1: कार्यशाला को लेकर ग्रामीण महिलाओं और छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रतिभागियों का कहना है कि इस पहल से उन्हें अपनी लोक संस्कृति को नजदीक से जानने और सीखने का अवसर मिल रहा है।
2: सब सीख रहे हैं, जोड़ा सीख रहे हैं, चांदड़ी सीख रहे हैं, चौफुला सीख रहे हैं, मांगल गीत सीख रहे हैं, और सब कुछ अच्छा ही लगा। जो हमारी सांस्कृतिक प्रारंभिक वो है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। परंपरा है जो हमारी, वो हमको भी अच्छा लग रहा है। हम ऐसे न चाहे कि हमारे हम भूल सके इस परंपरा को, और यही हमको अच्छा लगा।
3: जो घर का सिखा रहे हैं ये लोग, वही हम सीख रहे हैं, और हमको भी चॉइस है सीखने का। आई रे आज हो गए हमें 5-6 दिन तो हो ही गए, चौफुला चांचड़ी ये सिखा रहे हैं।
4: आजकल का जमाना है डीजे में चल रहा है, तो ये पुराने जमाने के लोग नृत्य को भूल जा रहे हैं। तो हमारे जो यहाँ पे सिखाने के लिए आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरह से सिखा रहे हैं हमको। लोक नृत्य हो गया, झोला चांचड़ी चापुला, बहुत अच्छे तरह से सिखा रहे हैं हमको।
1: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कल देर रात देहरादून में अनारवाला मालसी मोटर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क है, जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए और आमजन को न्यूनतम असुविधा हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के लिए सदैव तत्पर है और जनहित के प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजेश स्वरूप ने केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुमाऊं के तराई वन क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर वन विभाग पूरी तरह अलर्ट। राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने तेज की प्रक्रिया, और चमोली जिले के देवाल में 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन लोकगीत व लोक नृत्य कार्यशाला का आयोजन। नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और लोक परंपराओं को संरक्षित करना है उद्देश्य। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म ज्वेल थीफ का ये गीत। संगीत एसटी परमन का था। और अब लीजिए सुनिए फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। संगीत आरटी परमन का है और गीत रचना है आनंद बख्शी की।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। और अब लीजिए कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए। फिल्म का नाम है अवतार। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं लेकिन हम कहेंगे, विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
3: Hello, children. How are you?
4: We are fine, sir.
5: I am fine.
6: I am good, sir.
3: Fine. Good. Okay, so tell me, what do you like most?
7: I like playing, sir.
8: I like painting, sir.
3: Very good. Anyone else?
9: Sir, I like singing.
10: I like playing with my pets.
3: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
4: Yes, sir.
8: We like.
3: Lovely butterflies?
4: Yes, sir.
3: And lovely colorful chirping birds?
4: Yes, sir. We like it.
3: That's very nice, children.
8: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
3: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
4: Yes, sir.
3: The rivers, the mountains, and the green trees.
4: Yes, sir.
3: Okay, so let me tell you the story of a sweet child like you.
4: Like us?
3: Would you like to listen?
4: Yes, sir.
8: We love to listen the story.
3: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
4: Okay, sir.
3: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
4: Okay, sir. We love to recite it.
3: As I lie on my back, looking up at the sky,
4: looking up at the sky,
3: I see a big white bear.

0: This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा।
1: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है। विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
2: नंगे पांव, धोतीनुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहने
3: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
4: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करी छंती।
5: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
2: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
6: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
0: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
7: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
8: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे।

0: किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना?
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
2: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
2: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
2: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
4: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
4: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

0: 6 wins this season. India finished the Asian Weightlifting Championships 2026 in Gandhinagar with 10 medals, including 1 silver and 9 bronze, marking a big improvement from the previous edition in Chiangshan, where India returned without a medal. Commonwealth Games bronze medalist Lovpreet Singh delivered India's best performance on the final day by finishing 5th in the men's 110 kg+ category. The Indian Meteorological Department IMD has forecast heat wave to severe heat wave conditions over the plains of northwest India and central India during many days of the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Uttar Pradesh till Saturday. Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi will also experience similar conditions. The weather agency predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest parts of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Oslo to hold bilateral talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre this evening. Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double trade in next 5 years. Congress leader V.D. Satheeshan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026 2030 को अपनाना जो व्यापार नवाचार जलवायु कार्रवाई रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
4: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वाली स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के 2रे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है।

0: केंद्र राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष

0: प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.5 MHz पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब सैनिक साथी सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों, आज के अंक में हम बात करेंगे जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के बारे में। भारत सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS के तौर पर नियुक्त किया है। CDS अनिल चौहान भारत सरकार में सैन्य मामलों के विभाग में भी सचिव के रूप में कार्यरत है। इनके बारे में जानकारी श्रोताओं आपको आगे भी देंगे। बहरहाल सैनिक साथियों, आपको सुनाते हैं ये गीत।

सीडीएस अनिल चौहान भारतीय सेना के मोस्ट डेकोरेटेड अफसरों में से एक है, जिन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक जैसे मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। सीडीएस अनिल चौहान की एक और खासियत हम आपको बता दें सैनिक साथियों कि उन्हें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ जैसे पदों पर भी काम करने का अनुभव है। इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान को जम्मू कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों से लेकर पूर्वोत्तर में सेना की कमान संभालने का भी अनुभव है। सीडीएस चौहान पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रह चुके हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बारे में आपके साथ सैनिक साथियों हम जानकारी साझा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को उत्तराखंड के ग्वाना पौड़ी गढ़वाल जिला में हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने कोलकाता में केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम से शुरुआती पढ़ाई की। सैनिक साथियों, एक और विशेष जानकारी सीडीएस अनिल चौहान के बारे में हम आपसे साझा करते हैं। सीडीएस अनिल चौहान की भारतीय सेना में भर्ती 1981 में 11 गोरखा राइफल्स में हुई थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के छात्र भी आप रह चुके हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी पहले जनरल विपिन रावत की तरह उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं।

सैनिक साथियों, आज जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान का जन्मदिन है। आकाशवाणी 13 की पूरी टीम की ओर से हम जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान को जन्मदिन की ठेरों ठेरों शुभकामनाएं देते हैं।

सैनिक साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का, तो अब संगीता सेमवाल को अनुमति दीजिए। सैनिक साथियों, जय हिंद।

0: अभी सैनिक साथी सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 3 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप आशुतोष अनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते 4 साल में सरकारी सेवा में चयनित हुए कार्मिकों को डिजिटल माध्यम से पत्र लिखकर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि राज्य सरकार के कठोर नकल विरोधी कानून के साथ ही निष्पक्ष, ईमानदार और पारदर्शी चयन प्रक्रिया ने भी युवा प्रतिभा को उचित सम्मान मिलना सुनिश्चित किया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन शनिवार को नो व्हीकल अपनाने की अपील करते हुए सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए। जिला न्यायालय परिसर पिथौरागढ़ में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने सप्ताह में 2 दिन वैकल्पिक परिवहन अपनाने का आह्वान किया। अभियान का उद्देश्य आमजन में ईंधन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 72 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 38 का मौके पर निराकरण किया गया। शेष समस्याओं को निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। हरिद्वार के सुड़कुल औद्योगिक क्षेत्र में संविदा श्रमिकों की वेतन वृद्धि को लेकर उत्पन्न भ्रम और संतोष की स्थिति अब पूरी तरह सामान्य हो गई है। श्रम विभाग के अनुसार सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और कहीं भी धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति नहीं है। और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक जंगली हथिनी अपनी जुड़वा नवजात शावकों के साथ दिखाई दी है। इसे कॉर्बेट क्षेत्र में सुरक्षित और अनुकूल वन्यजीव वातावरण का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। वन विभाग के अनुसार दोनों शावक स्वस्थ हैं और हथिनी पूरी सतर्कता के साथ उनकी देखभाल करती दिखाई दी। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 3:02 में लीजिए अब सुनिए गाने नए तराने।

महालक्ष्मी, शंकर महादेवन और शान की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म कभी अलविदा ना कहना का ये गीत। संगीत से सजाया था शंकर एहसान ने। और अब लीजिए सुनिए फिल्म पुकार का ये गीत शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। संगीत AR रहमान का है और गीत के वो लिखे हैं मजरू और जावेद अख्तर ने।

ये है श्रेया घोषाल और वैशाली। फिल्म का नाम है बाजीराव मस्तानी।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: गाने नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और अब जी सुनिए फिल्म पद्मावत का ये गीत श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की आवाजों में।

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और राहुल सक्सेना की आवाजों में भी आपने सुना फिल्म ओम शांति ओम का गीत। और अब लीजिए सुनिए शुद्ध देसी रोमांस फिल्म का ये गीत जिगर सरैया और प्रिया सरैया की आवाजों में।

गाने नए तरह ने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। और अब विजय सुनिए फिल्म बॉडीगार्ड का ये गीत, सुनिए एश किंग और क्लिंटन की आवाजों में।

शंकर महादेवन, सिद्धार्थ महादेवन और रसिका की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म टू स्टेट का ये गीत, और अब विजय सुनिए थ्री इडियट फिल्म का ये गीत सोनू निगम की आवाज़ में।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: परिणीता फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्य नई तरह ने अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.5 MHz पर। शाम के 4 बजे हैं, लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से HDFC बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत जनहित के लिए प्रदान की गई 4 अत्याधुनिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। कहा, राज्य सरकार जन भागीदारी और संस्थागत सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के मेरू परिसर पटवाड़ागर में अकादमिक भवनों का शिलान्यास किया। कहा, प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हुए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक संसाधनों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार में चैनराय जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति संतोषजनक न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। प्रदेश के पर्यटन धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन पूजा एवं अर्चना कर देश प्रदेश की समृद्धि और विश्व को वैश्विक संकट से मुक्ति की कामना की और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर परिसरों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। कहा, राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन शनिवार को नो व्हीकल डे अपनाने की अपील करते हुए सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए। पौड़ी में ईंधन बचत और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने नो व्हीकल डे मनाते हुए अपने अपने आवास से कार्यालय तक पैदल पहुंचकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया और हरिद्वार के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में संविदा श्रमिकों की वेतन वृद्धि को लेकर उत्पन्न भ्रम और असंतोष की स्थिति अब पूरी तरह सामान्य हो गई है। श्रम विभाग के अनुसार सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और कहीं भी धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति नहीं है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.5 MHz पर। शाम के 4:02 हुए हैं, लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए पंडित भजन सोपोरी से संतूर वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग यमन। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं मोहम्मद अकरम।

अभी आप पंडित भजन सोपोरी से संतूर वादन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एक कलाकार।

सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं कार्यक्रम एक कलाकार में। स्वीकार कीजिए संगीता सेमवाल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की कलाकार हैं प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रीमा लागू, जो कि हिंदी और मराठी सिनेमा में माँ और अन्य सहायक किरदारों के लिए ये जानी जाती हैं। इन्होंने 4 दशकों तक अभिनय किया और मैंने प्यार किया वह हम आपके हैं कौन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी।

श्रोताओ, हिंदी फिल्मों में माँ का किरदार हमेशा से ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है। कभी माँ त्याग की मूर्ति बनी, कभी संघर्ष का प्रतीक। लेकिन 90 के दशक में एक ऐसी माँ पर्दे पर आई जो अपने बच्चों को दोस्त जैसी लगी, जिसकी मुस्कान में अपनापन था, डांट में भी प्यार था और आंखों में परिवार को जोड़े रखने की चिंता। रीमा लागू ने माँ के किरदार को सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि उसे जिया भी है। और एक ऐसी माँ जो बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढती है। और श्रोताओं, सबसे खास बात ये थी कि उनका अभिनय इतना सहज था कि दर्शकों को लगा जैसे स्क्रीन पर कोई अभिनेत्री नहीं बल्कि घर की अपनी माँ मौजूद हो।

आज के कार्यक्रम एक कलाकार में हम बात कर रहे हैं रीमा लागू की। श्रोताओ, रीमा लागू की अभिनय की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी नेचुरल एक्टिंग। वो कैमरे के सामने अभिनय करती भी नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा महसूस होता था जैसे जिंदगी का कोई पल हमारी आंखों के सामने खट रहा हो। उनकी मुस्कान में अपनापन था, आंखों में ममता और संवादों में एक सच्ची गर्माहट।

श्रोताओं, रीमा लागू आज के कलाकार में हम बात कर रहे हैं इस अभिनेत्री की। रीमा लागू ने हर किरदार को इतने सहज तरीके से निभाया कि हर कोई उनसे तुरंत जुड़ गए। उनकी एक्टिंग कभी जोरदार या बनावटी नहीं रही, वो छोटी छोटी भावनाओं से बड़ा बड़ा असर पैदा कर दिया करती थी।

आज अभिनेत्री रीमा लागू की पुण्यतिथि है। आकाशवाणी देहरादून की पूरी टीम की ओर से हम इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्रोताओं, कलाकार कभी अलविदा नहीं कहते, वे हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं।

0: अभी आप एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत अभिनेत्री रीमा लागू पर अभिनीत फिल्मी गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.5 MHz पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी इस समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: श्री मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि SOM बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारी वैकल्पिक विवाद समाधान ADR से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। वहीं विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और वे देश के नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। केरला में नई UDF सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और रसोईया कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना शामिल है। राज्य में नई विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज

वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। अब आइए आपको जानकारी देते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रात्रि 10 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:30 पर। स्पॉटलाइट ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

पर्वती अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत का समय वही 5:45 का रहेगा। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्मी गीतों का आप आनंद ले सकते हैं 7:40 पर। ये थी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आइए आपको जानकारी देते हैं कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कल प्रातः 7:10 पर प्रस्तुत किया जाएगा लोक रसधार कार्यक्रम। धनराज के गाए गढ़वाली लोकगीत सुनिएगा शैल संगीत में प्रातः 7:30 पर। 8:30 पर सुनना ना भूलिएगा सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। कल सुबह 9:00 RNU देहरादून की प्रस्तुति में सुनिएगा जिले की चिट्ठी। सदाबहार फिल्मी नगमों का आनंद लीजिएगा कल प्रातः 9:05 से।

कल प्रातः 10:02 पर आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में प्रस्तुत किया जाएगा विशेष कार्यक्रम। विविध कलाकारों के गाए हिमाचली लोकगीतों को पेश किया जाएगा कल प्रातः 10:35 पर। श्रोताओं, आपके मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय वही प्रातः 11 बजे का रहेगा। 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाएंगे गीत विविध कलाकारों के स्वर में। हमारी बहनों का खास कार्यक्रम महिला जगत सुनिएगा कल दोपहर 12:30 पर।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रस्तुत किया जाएगा कल दोपहर 1:30 पर। ये थी हमारी आज की सभा के शेष तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 5 बज

कुछ दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। हेलो एंड नमस्कार सभी दोस्तों को, कार्यक्रम युववाणी सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपका साथी, आपका होस्ट और दोस्त दिविज बहुगुणा। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कुछ पंक्तियों से, जिसे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है दोस्तों, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपार पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां केवल एक कविता नहीं है, बल्कि संघर्ष और अदम्य साहस का एक जीवंत संदेश है। इन पंक्तियों में एक जुझारू व्यक्तित्व की पूरी तस्वीर दिखाई देती है। ये पंक्तियां कहती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाएं, लेकिन इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। इन पंक्तियों में अटल बिहारी जी ने यह कहा है कि एक जुझारू व्यक्ति असफलताओं से टूटता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बनता है। और दोस्तों, जुझारू व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि कठिन दौर में भी इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता और हर बार नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी कठिन दौर से जरूर गुजरते हैं। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, तो कभी अपने सपनों को पूरा करने का संघर्ष। और ऐसे समय में दोस्तों, कुछ लोग हालात के सामने हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर मुश्किल का सामना डट कर करते हैं, और इसी व्यक्तित्व को कहते हैं जुझारूपन। और एक जुझारू व्यक्ति संघर्षों से सिर्फ लड़ता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को संभाल कर एक नई उम्मीद से लगातार आगे बढ़ता है। क्योंकि जीवन में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि लगातार कोशिश करते रहने से मिलती है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिरने के डर से कोशिश ही छोड़ दे, तो क्या वो कभी चल पाएगा? वो बार बार गिरता है, फिर उठता है और आखिरकार चलना सीख ही जाता है। और यही है जुझारूपन। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण हैं दोस्तों, जिन्होंने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया। दोस्तों, महात्मा गांधी ने बिना हथियार के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, कई बार जेल गए, कई कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर महात्मा गांधी में जुझारूपन ना होता, तो शायद हमारा स्वतंत्रता संग्राम इतना मजबूत भी नहीं बन पाता। इसी तरह का एक और उदाहरण है दोस्तों, मैरी कॉम का, जो एक छोटे से गांव से निकलकर सीमित संसाधनों के बावजूद विश्व स्तर पर बॉक्सिंग में भारत का नाम उन्होंने रोशन किया। शादी और बच्चों के बाद भी उन्होंने बॉक्सिंग नहीं छोड़ी। और उनकी कहानी हमें यह बताती है कि परिस्थितियां बड़ी नहीं होती, इंसान का हौसला बड़ा होता है। दोस्तों, आज की दुनिया में जुझारू व्यक्तित्व पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आज लोग जल्दी निराश हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा दोस्तों कि हर सफल इंसान के पीछे लंबा संघर्ष छिपा होता है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उनकी कंपनी घाटे में चली गई थी, काम मिलना बंद हो गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से मेहनत करके खुद को स्थापित किया। तो जुझारू व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है दोस्तों कि मुश्किल समय में धैर्य रखना और खुद पर भरोसा बनाए रखना और हर असफलता से कुछ नया सीखना बेहद जरूरी है। अगर हम हर समस्या से भागेंगे तो जिंदगी और मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर हम उनका सामना करेंगे तो वही समस्याएं हमें मजबूत बना देंगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर आपने खुद को संभाला हो और आगे बढ़े हो? अगर हां, तो समझ लीजिए आपके अंदर भी एक जुझारू व्यक्तित्व मौजूद है। दोस्तों, जुझारूपन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह धीरे धीरे बनता है। हर संघर्ष, हर असफलता और हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। इसलिए जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो दोस्तों, कभी हार मत मानिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है। और इसी बात पर कुछ पंक्तियां याद आई है दोस्तों कि हौसले की आग अगर दिल में जिंदा हो, तो मुश्किलों की क्या औकात है जो संघर्ष से दोस्ती कर ले, सफलता हमेशा उसी के साथ है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ सुनते हैं दोस्तों कार्यक्रम का पहला गीत, जो कि लिया गया है फिल्म लक्ष्य से और जिसे आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां शहरों की रफ्तार हर दिन तेज होती जा रही है, वहीं इंसान धीरे धीरे प्रकृति से दूर भी होता जा रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें, ट्रैफिक का शोर, धुएं से भरी हवा और व्यस्त दिनचर्या, इन सब के बीच अगर कोई चीज हमें सुकून देती है तो वो है शहरों के सार्वजनिक पार्क, यानी कि पब्लिक पार्क्स। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी पार्क में जाते हैं तो मन अचानक से हल्का क्यों महसूस होने लगता है? क्यों सुबह की ताजी हवा, पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की आवाज हमें भीतर से सुकून देती है? क्योंकि इंसान का रिश्ता प्रकृति से बहुत गहरा है। दोस्तों, आज शहरों में लोगों के पास समय तो है लेकिन शांति नहीं, सुविधाएं तो हैं लेकिन खुली हवा और अपनापन कम होता जा रहा है। और ऐसे में पब्लिक पार्क सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का एक जरूरी माध्यम भी बन चुके हैं। दोस्तों, जब आप सुबह के समय पार्क में जाते हैं तो वहां कभी कोई योग करता दिखता है, कोई दौड़ लगा रहा होता है, तो कोई अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए टहल रहा होता है, बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग बैठकर बातें करते हैं और कई लोग बस कुछ पल शांति से बिताने के लिए आते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भी मानते हैं कि हरियाली के बीच समय बिताने से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर भी होता है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी शहरों में हरित क्षेत्रों को बेहतर जीवन देने के लिए जरूरी मानता है, क्योंकि पब्लिक पार्क सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद जरूरी हैं। पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करते हैं, तापमान को संतुलित रखते हैं और प्रदूषण कम करने में भी मदद करते हैं। दोस्तों, आज जब शहरों में गर्मी लगातार बढ़ रही है तब पार्क किसी प्राकृतिक राहत से कम नहीं है। लेकिन अब सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या हम अपने पार्कों को उतनी गंभीरता से बचा पा रहे हैं या नहीं। कई जगह पब्लिक पार्कों की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, कहीं सफाई की कमी है तो कहीं लोग खुद ही गंदगी फैलाते दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि पार्क केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी भी है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ हवा और हरियाली मिले तो हमें अपने शहरों के पार्कों को बचाना होगा। तो इस विषय पर और भी बात करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं गीत, जो कि लिया गया है फिल्म तमाशा से और जिसे आवाज दी है मोहित चौहान ने।

कार्यक्रम युववाणी में दोबारा से आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। और हम बात कर रहे थे शहरों में पब्लिक पार्क्स का क्या महत्व है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज बच्चों का बचपन केवल मोबाइल स्क्रीन तक ही सीमित होता जा रहा है। खेल के मैदान कम हो रहे हैं और खुली जगह सिकुड़ती जा रही है। तो ऐसे में पार्क बच्चों को खुलकर खेलने, दौड़ने और सामाजिक रूप से जुड़ने का अवसर देते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं दोस्तों, पार्क समाज को भी जोड़ता है। यहाँ अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग वर्ग और अलग अलग लोग सोच के लोग एक साथ आते हैं। यानी कि पार्क केवल हरियाली नहीं बढ़ाते बल्कि रिश्तों में भी ताजगी लाते हैं। कई शहरों में अब थीम पार्क, ओपन जिम और इको पार्क भी बनाए जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी पहल है। लेकिन जरूरत सिर्फ नए पार्क बनाने की नहीं दोस्तों, बल्कि पुराने पार्कों को सुरक्षित और स्वच्छ रखने की भी है। दोस्तों, अगर शहरों को सच में रहने लायक बनाना है तो हमें कंक्रीट के जंगलों के बीच हरियाली के लिए भी जगह बचानी होगी, क्योंकि पार्क सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होते, वे शहर की सांस होते हैं। पेड़ पौधे और खुला आसमान, यही तो है जीवन की असली पहचान। जहां हरियाली मुस्कुराती है, वहीं जिंदगी भी खिलखिलाती है। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ दोस्तों सुनते हैं गीत, जो कि लिया गया है फिल्म हड्डी से और जिसे आवाज दी है रेखा भारद्वाज और रोहन प्रधान ने।

दोस्तों, आज के समय में अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी हो गई है। चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, मैनेजमेंट या फिर विदेश में पढ़ाई का सपना, लेकिन कई बार पढ़ाई का खर्च इतना ज्यादा हो जाता है कि परिवार के लिए उसे उठाना आसान नहीं होता। और ऐसे में एजुकेशन लोन छात्रों के सपनों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बन जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं दोस्तों कि एजुकेशन लोन होता क्या है। अगर सरल शब्दों में कहें तो बैंक या वित्तीय संस्थान छात्रों को पढ़ाई के खर्च के लिए जो आर्थिक सहायता देता है उसे एजुकेशन लोन कहा जाता है। इसमें कॉलेज की फीस, हॉस्टल, किताबें, लैपटॉप और कई बार यात्रा का खर्च भी शामिल हो सकता है। अब सवाल आता है दोस्तों कि एजुकेशन लोन लेने के लिए क्या जरूरी होता है। सबसे पहले छात्र का किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना जरूरी है। उसके बाद बैंक कुछ दस्तावेज मांगते हैं, जैसे कि एडमिशन लेटर, फीस स्ट्रक्चर, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आय प्रमाण पत्र। दोस्तों, भारत में कई सरकारी और निजी बैंक एजुकेशन लोन देते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य सारे बैंक्स। सरकार की कुछ योजनाएं भी छात्रों को मदद देती हैं, जिनमें पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी लगने पर किस्त चुकाने की सुविधा भी मिलती है। लेकिन लोन लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जितनी जरूरत हो उतना ही लोन लें, ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट अच्छी तरह समझें और रीपेमेंट यानी किश्त चुकाने की प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, एजुकेशन लोन कोई बोझ नहीं बल्कि सही योजना के साथ लिया गया एक निवेश हो सकता है। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो भविष्य के अवसर भी बेहतर होंगे। और सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि आर्थिक कठिनाई कभी भी सपनों के बीच दीवार नहीं बननी चाहिए, क्योंकि मेहनत और सही जानकारी के साथ हर छात्र अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और इसी कड़ी में दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, जो कि लिया गया है फिल्म रॉक ऑन 2 से और जिसे आवाज दी है फरहान अख्तर ने।

तो दोस्तों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप हमें अपना फीडबैक जरूर दें पत्र के माध्यम से। हमारा पत्र लिखने का पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, पिन कोड 248001। आप हमें मेल भी भेज सकते हैं दोस्तों। हमारी मेल आईडी है youthddn@gmail.com। इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। इसी के साथ मुझे यानी दिविज बहोड़ों को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत सुनला सभी श्रोताओं थे सविता बड़थवाल का छोड़ बटे नमस्कार सेवसौली। श्रोताओं आप स्वस्थ और मस्त वाला यही कामना हम सदनी भगवान बद्री विशाल से कर दें। जन के आप सब जन दें कि कार्यक्रम का बाबत आप थे बता दें, आप थे सुनोला सुंदर सुंदर गड़वली कुमाऊनी और जौन सारी गीत सुनोला कुछ रंत रहवार और सुनोला एक भेंट वार्ता पूर्व प्रसारित जैकु विषय च स्वरोजगार और आधुनिक खेती श्री संजीव चौहान से विनय ध्याने की बातचीत और चर्चा कर ला कुछ विषयों पर सुनोला आप थे सुंदर सुंदर गड़वली कुमाऊनी और जौन सारी गीत। लेकिन वैसे पहले एक विशेष बात भी आप दगड़ कर ला बातचीत भी आप दगड़ कर ला बातचीतों विषय से कि आप सब जन जन के आजकल की जन के चटकतली को घाम लगनो चाह और ठीक ये घामला भी 10-15 दिन या एक हफ्ता का अंतराल में रोण इन चटकता देखो घाम जेल की बब्बा मुंडो रुकया खोपड़ भी चकरान बैठ जानो छ। और खासकर जो हमारा नानते न छिना जो स्कूल नानते न छिना कि जो स्कूल जन देना और एक घाम में उतरदा बैठदा भारी भरकम बसता हूँ का कंधों मर देना उनको विशेष ध्यान रखना क्योंकि अक्सर कि उनके बच्चा स्कूलों में घाम पर खेलन होंदा और घर होंदा तो के मंगत पहले सीधा ठंडू पानी या ठंडी चीज़ कि मित फ्रिज है कि इन चीज़ दया खाने को उन चीज़ दया खाने को वहाँ से कि उनकी स्वास्थ्य पर असर पड़ता स्वास्थ्य पर असर क्या पड़ता कि सीधा उल्टी और दस्त जन समस्याएँ होनी छे ना और वो बड़ों को बीच तो खासकर हमारे यो निवेदन छ आप सबसे ही कि ये चटकता देखा घाम में अगर कोई विशेष काम चा तब जाके भैर जाया अगर नहीं जा तो जितगा हो सको कि घरों में रहा और अपना नान तीनों तभी घरों में रखा जो स्कूल नहीं छिन अगर स्कूल बीच न रहूँ तो लगन तो वकूँ तो सलाह दिया कि अगर घाम पर खेना छे या घाम पर खानो खाना छे या कुछ करना छे तो एकदम से ठंडू पानी नहीं पीण और ना एकदम से पंखर कूलर रखा नहीं जान तो ये समझाउन चाह क्योंकि बच्चा जो थोड़ा सा हमारा बड़ा छिन स्कूल जाना बच्चा छिन तो समझदार भी होने ना और समझ भी नहीं अगर समझात क्योंकि अगर स्वास्थ्य खराब हो और स्वास्थ्य आजकल ये चटकता दे घाम में खराब हो जा कि ना अंतिन हमारे जो पस्त हो जाना छिन तो ये को विशेष ध्यान रखना और खान पान में पानी की मात्रा बढ़ाना जब तक हो सके जूस चास पीण नरियल पानी पियाए वो कि उनके शरीर का वास्ता भी ठंड होंद और खीरा जन बिना फ्रिज में रखी हो जो फ्रिज फ्रूज में न रखा हो इन चीज़ों खा तो माल के होंगे कि शरीर में ठंडक बनी रहन तो आप सब ले यहाँ को विशेष ध्यान रखना अपना नानतिनों को भी ध्यान रखना अपड़ भी ध्यान रखना अगर जरूरी काम च क्योंकि जरूरी काम भी होला कि लेना भाई क्योंकि घरों में बैठ कर तो कोई काम होने चाहिए चिन वहाँ को तो भैर जाने पड़ता लेकिन कोई अगर जरूरी विशेष काम च तब जाके भैर जा नितरा पर घरों में रहा घरों में रहा तो वहाँ में क्या चाह पानी की मात्रा बार बार जब भी टाइम मिलो या काम काज में निपटना चाहे तो पानी बार बार पीण रहो वैसे क्यों उनके शरीर में पानी की मात्रा भी बनी रहोद और शरीर थे भी ठंडक मिली रहो। तो श्रोताओं छुई बात तो हम लगने भी लगोला लेकिन वैसे पहले आप थे सुनोला एक सुंदर सी गड़बड़ी गीत जहाँ मैं स्वर दियो मनमोहन बदाणी को तो लियाओ सुना आप और हम मिलकर सुन दिया ये सुंदर सी गड़बड़ी गीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: रेवारों से पहली आप सुनना चाहिए मनमोहन बदाणी का स्वर में सुंदर सी गढ़वाली गीत। उम्मीद कर दें कि सभी श्रोताओं थे पसंद है और ए भी के लिए क्योंकि इतना सुंदर गीत छो कि हाँ वे गीत सुन के हाथ और खुटी जरूर थिरकन बैठ गए छी और मन में खुद जन लगन बैठ गए छी और लगल भी किले ना क्योंकि जो हमारा लोकगीत होंगे ना गीत होंगे ना ऊँ देख के हम तो कखि खुद लगदा कखि रुए आंदा कखि हैंसे आंदा कखि सुंदर लग देना कखि अपने डांड कांठियों की याद देना। तो हमारा लोकगीत और हमारी परंपरा इंच श्रोताओं ठीक 7 बजे तक आपल मेरे दगड़ बनाए के रखना क्योंकि जब हमारे श्रोता हम तो सुन देना तो हम तो कार्यक्रम कनमा और उत्साह मिलते और सुंदर भी लगद और लग चुके हाँ हमारे श्रोता हम दगड़ छिन। तो आप थे कुछ ही देर में सुनौला पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता स्वरोजगार और आधुनिक खेती विषय पर श्री राजीव चौहान से विनय ध्यानी की बातचीत। तो लिया सुना आप यह भेंटवार्ता।
3: श्रोता भाई बंधु नमस्कार, मैं छू विनय ध्यानी और आज कार्यक्रम में म्यारदगढ़ छे श्री संजीव चौहान जो कि एक क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र जो कि हमारे जौनसार क्षेत्र छे वखा का एक सफल जनप्रतिनिधि और जन सरोकार से जुड़ा सफल काश्तकार भी छे। आज आपसे बातचीत को हमारा विषय छे कि जो स्वरोजगार छे और जो हमारे आधुनिक खेती छे वो तो हम कन के समानांतर ले जा सकता। तो सबसे पहले चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत है।
4: सब राम राम और सब यहाँ राजी खुशी चाहते मासू मारा से जी प्रार्थना।
3: चौहान जी इन प्रार्थना के बाद हम भी अपना भयबंधों की राजी खुशी का खातिर प्रार्थना कला लेकिन बोल द छन कि अगर पुटुक भरी हो तो तभी हम प्रार्थना कर सकता और पुटुक भन का खातिर जरूरी है कि खेती बाड़ी स्वरोजगार। तो आजक जो कृषि पद्धति है जैसे कि हम नए जमाना खेती बोना छो वो कई रूप में हम देखना पहाड़ में और खास करी आपको जौनपुर और जौनसार में।
4: सबसे पहले जला हमारी आधुनिक खेती पुरानी खेती थी तो मुझे नकदी फसलों का बहुत कम ये था एला जो सबसे बड़ी आधुनिक खेती है से ये नकदी फसलें जला आगे भी होती हमारी खेती तो एक आलू ही एक ऐसी फसल थी जो नकदियाँ होती लेकिन एला आज तु हिसाब से आधुनिक रूप से एक एक फसला ने भी हमारे किसान में दुई दुई फसला निकाली ले और जित मुझ की फायदा लगा किसानों का ही और सीधी सीधी नकदी फसलें से आय के जो साधन हो से ले बढ़ाई।
3: यानी कुल मिला के नकदी फसलों को भी स्वरूप बदल गए और आज खास कर के जौनसार क्षेत्र में जो जवान दगड़े छन वो अपनो रोजगार खेती से जोड़ना छन ये बाकी और धानी से
4: खेती तो असो ही देख खेतों दा बगीचे हो गए बगीचे हमारे और जो हमारे बगीचों मुझ ये भी हिमाचल से एक कॉन्सेप्ट ला ले कि बगीचे ने भी अच्छी आय शौक हम अर्जित करी। बहुत सारे युवा ऐसे हो जिमेला एक दर्पण ला हम दिखाने का काम करी और लेकिन तेत के साथ साथ ही स्वरोजगार के जो साधन हो तेत में हमारे होटल व्यवसाय जो पर्यटन के साधन हो तेतलाए भी बहुत आय इलाके समय मुझ हमारे युवा साथियों करी ले जित मुझ की हमारा चक्राता का एरिया जे हमें बात करूं चक्राता से मसूरी रोड वाड़ी तो तेतु रोडांदे जे हम जाऊं भी हो तो तेतु रोडांदे बहुत ज्यादा मात्रा मुझे हम कहला देखने को लागे मिली कि बहुत युवाओं ये राखे खोली अपने स्वरोजगार के साधन।
3: बिल्कुल ठीक बना छन आपकी खेती बाड़ी से अलग हटिक भी हमारा जवान दगड़े सोचना छन कि पर्यटन और होम स्टे और ये सब कुछ करे जा तो वैसे भी हम स्वरोजगार कर सकना। अब फिर बात आधुनिक खेती की ही करना हम चौहान जी, आपको को क्षेत्र च जौनसार को जबकि हमें देखना चाहूँगा कि बहुत भल ढंग से आधुनिक खेती या एकीकृत खेती करे जाने जो कुछ क्षेत्र छन।
4: ये भी हमारा जो ऊंचाई वाला एरिया हो दो तरह के की खेती हमारे बिलाव हो कि एक तो सिंचित संस माध्यम से और एक जो ऊंचाई क्षेत्र जैके पानी की कमी है तो जैके पानी की कमी भी हो तई के जैसे हमारे जो नगदी फसलों के साधन हो जैसे हमारे जेतु का मैं गागवे बोलो अरबी और जो उंदेड़े के एरिया हो जो हमारे ऐसा तई के सिंचाई के साधन जैसे टमाटर हमारे शिमला मिर्च गोभी अलग अलग तरह की नगदी फसलें ले उगाई। लेकिन जो ऊंचाई वाले एरिया हो तई के हमारे जैसे अब धीरे धीरे बगीचों की तरफ ज्यादा लागे नोटी कई की सेब के बगीचे तेतु एरिया ने ज्यादा लेकर सेब और कीवी इस तरह के काम शुरू पाए करी लोग हैं।
3: हमन ये जो चक्राता से बिल्कुल अलग अगर हम जौनपुर क्षेत्र की बात करना या रवाई क्षेत्र की बात करना तो वह हमें देखना चाहूँ कि ऊंचाई वाला इलाकों में जो हमारा काश्तकार छन वो एकीकृत खेती करना छन, वो डाले लगाना छन सेबों की कीवी की भी, लेकिन दगड़ा दगड़ी वो मत्स्य पालन भी करना छन, कुटकुट पालन भी करना छन और पूरा फार्म हाउस बनाई छो लोगों को। तो ये हम के दिशा में हिटना छो समृद्धि च स्वरोजगार से जुड़ी बात कर लगनो आपते।
4: बिल्कुल सही बात हो। अब जो जैसा जैसा सरकार के जो नई योजनाएं ले सरकार ले इत मुझे बहुत सारे हमारे युवा साथी है जिवे मुर्गी पालन मछली पालन और आपने जो छोटे छोटे व्यवसाय हो जेतु का मैं कृषि से भी हटी करी आई हूँ लेकिन बकरी पालन का भी हमारे क्षेत्र में एक अच्छा संसाधन लगा पैदा हुई कहीं कि बकरी पालन शुरू से ही हमारे बिला होता लेकिन एक उस तेतु लेवल का ना था वही लेकिन अलग के डेट में अच्छे काश्तकार हुए ला बकरी पालन का स्वरोजगार अपनाई।
3: अगर हम पशुपालन विभाग और कृषि विभाग की बात करना तो ये क्षेत्र में उनकी सक्रियता उनकी योजनाएं समय समय पर आप क्षेत्र में संचालित होना चाहिए।
4: बिल्कुल जैसी पशुपालन विभाग की और कृषि विभाग की बात करूं ये तो दो ही विभाग हैं या सरकार के जैसे भी और पर्यटन के भी विभाग वहाँ बोलता हूँ कि पर्यटन वाड़िया भी हमारे क्षेत्र में लेकिन जो पहले की समस्या भी होती कि किसान तक किसान लोग पहचान मुझ अधिकारियों को रिंग दिक्कत होती पर हम बार मोबाइल एक ऐसा साधन हो जितने तुरंत अमुक पता जाओ चले कि फलानी स्कीम रही लॉन्च आई तो हमें ऐसे जागरूक है हमारे किसान ही कि सो जाई कर यही आपड़े जो जैसे भी काम हो विभाग हो बेरी आराम से और तकनीकी रूप से कराने का भागीदार हो। जैसे कि हम कृषि विभाग की बात करें तो अनुदान में जो कृषि यंत्र जितना एला हमें अपने हॉल है जोती जेतु का हमें पावर टीलर पावर बीडर ऐसे सब चीजा एला किसानों को जो आधुनिक खेती का मुख्य अंग अंग लगा बाजी कि भाई जेतु खेत बाणो का मुख दो घंटे तो लागो सो 15 मिनट
3: बीज तक भी देना चाहिए और तो और अच्छे जो प्रजाति का बीज है वो भी काश्तकार तक दिए जाना चाहिए।
4: बिल्कुल
3: जनके के भलके के अच्छे उत्पादन होलो तो तब इतने समृद्धि आएली है।
4: बिल्कुल
3: तो अब हमार जौनसार क्षेत्र का जितना भी काश्तकार छन किसान छन वो क्या आधुनिक खेती से जुड़ी की कुछ भल महसूस करना चाहिए।
4: बिल्कुल जी जेतु हिसाब से एक समय गात आई कि लोग में

0: ओगुणे फायदे ले अपनाई, नहीं तो सिर्फ मैं बोली न लो कि एक आलू का सीजन था जित मुझे आदमी नगद पैसा तो मिला, बाकी सारे अनाज ऐसे थे जे तो काम है अपने कोठार और बहुरी दे स्टोर राखू थे और जब मुसीबत आती तब तेत का प्रयोग करूँ थे, लेकिन एला नगदी पसला और जो है जो भी छोटे छोटे स्वरोजगार हो जेतु काम है बोलो कि भाई एला किसी भी चीज खराब ना जाए। ये भी एक उदाहरण ना दऊ कि हमें टमाटर लाओ तो तुरंत तेतपुंडी काकड़िया भी देने लाई और तेतु टमाटर खत्म होते और तलाई काकड़िया तो सो वहाँ 5 रुपये किलो जाया, लेकिन आदमी का दिमाग इच्छा तेज गई कि सो तेतु तुरंत
1: पैसा
0: बिल्कुल
1: चेना ठीक बना रही है कि नोच नगदी फसल। तो कुल मिला के काश्तकार संतुष्ट छे यूं सभी आधुनिक खेती से जुड़े नगदी फसलों से जुड़े। लेकिन चौहान साहब, पारंपरिक खेती का के लुक्त नहीं जाए, का के छुपते नहीं जाए, के लेकिन वही का खातिर भी सरकार बनी छे कि मोट अनाज बेचेणु भाई हम तय पात, वही का खातिर पारंपरिक खेती जरूरी छे।
0: यही इतमुंज में बोलनी लो कि जला नाक तो तितमुंज हमारे जो ये भी हो जे पौराणी खेती हो इतकी जरूरत एबले महसूस करी जला इतका बीता ते तू कहीं ना कहीं सरकारें कणी के ही ढील देनी दे कि तला ते इतका रेट कम था लोग वे एकदम छोड़ी देनी,
1: छोड़ दे।
0: लेकिन एला जो भी सरकारें तितका ही हो तो धीरे धीरे मेरा जो हमारा जौनपुर और रोंगाई का एरिया भी हो तैसा ही शुरुआत हो गई तैसा कोदो ये चीजा
1: लाल चौल।
0: उत्पाद लाल चावल ए उत्पादन करना शुरू पाया करी तो धीरे धीरे ही क्रांति एवे वापिस आंधी। भले ही बात है यो कि तेतमुंज हमारे जो आदमी की संख्या से सौकोड़ी लागो, लेकिन सबसे बड़ी चीज है यो कि जो पौराणिक बीज भी हो तेतुक संरक्षण करना बहुत जरूरी रहा भाई समय रहते और समय ए भी आम्बेर ओसो, लेकिन जय जी बात 8-10 साल भी चंदी कर में तसो व्यर्थ न दी बात आई।
1: बिल्कुल ठीक बोले अलके। इन्नी वाजो हम आधुनिक खेती और फटाफट पैसा कमाण का चक्कर में परंपरागत खेती बिसर जाऊँ, वही तभी जीवित रखूँ होलू किला कि वो हमारा संस्कारों से, हमारा रीति रिवाजों से, हमारे खाण लीण से, हमारे स्वास्थ्य का खातिर बहुत जरूरी है, तो वही तभी हम रखा। लेकिन जख रोजगार की बात आनी चाहिए उखमा हम थे आधुनिक खेती बहुत कुछ स्वरोजगार दे दिन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी चाहिए। अब आप के लगी पूर्व क्षेत्र में घूमना छन, देखना छन, ये खेती थे भी और खेती करण वाला हमारा जवान दगड़ थे, काश्तकारों थे कि जो अपन अपन स्वरोजगार करना छन, कते दाई होंद कि लोग असफल हो जन। तो असफलता का कारण क्या छन कि वो भल के खेती नहीं कर सकना छन, या उनसे आपन क्या क्या चुनौती सुनी कि वो बोल दौला कि साहब चौहान साहब इन हुई, तो क्या कमी रह जन।
0: सबसे बड़ी दिक्कत हमारे जो नौजवानों को सही हो जंगली जानवरों से, जंगली जानवरों चेसी सरकारें कोई नीति ना भी रागी वाणी जितना कि तेतका रुख राम ऐशक में आओ समय समय लागिनों किसानों से बात करदा और एक ये आधुनिक खेती ने यही दिक्कत लागी आई कि जो बीमारियां भी हो सही समय दर समय बदलो जे इत फेरे उगभांती हो और अगले फेरे तेत का स्वरूप उगभांता पड़ो
1: हाँ बिल्कुल।
0: ये दिक्कत ये दुई चार दिक्कत हो और ये तुक काई की संभावना आती। अब जंगली जानवर की बात करो कि संभावना आती सरकार कर दिखा, अभी एक बांदर की बात करूँ मैं एक बांदर पूरी खेत तहस नहस
1: तहस
0: देना,
1: नहस कर दें। हाँ
0: लेकिन तहस का उपाय कहा सरकार बेना वो तो सो गैर बाढ़ भी थोड़ी भी ऊंडा किच रे किच पो करी पर तेत का कोई यो नाती।
1: लेकिन उपन आचन घेर बाढ़ से हमन जंगली जानवरों आवारा पशुओं से हमन फसल बचायल, लेकिन बांदरों से तो सच एक मनी बचा सकना, वो तो टैपे जन दिन कट। तो आखिर बात यह है कि कुछ समस्याएं छे छन हमारा जो खेती बाड़ी से जुड़े, रोजगार से जुड़े जवान दगड़े छन, तो उनका खातिर आपक क्या सलाह छे चौहान जी की कनके की वो स्वरोजगार का दगड़ी आधुनिक खेती कर के सफलता हासिल कर सकदन, आत्मनिर्भर हो सकदन, भल घर गोमा रह की भल कमा सकदन, क्या सुझाव छे।
0: सुझाव ऐसा ही हो कि सो जय पारंपरिक जय लाइन पाकड़ी राखी ते तू भले ही छोटे छोटे रूप मुझ करो एकदम बड़ा स्वरूप नु करिया कि आ बूट लाऊं तो एकदम 1000 बूट नो लाई ते तू छोटे छोटे पार्ट मुझ ताकि ते तो बचाई शक में क्यों सौ।

0: खरीद के 200 लाए, 500 इस तरीके से बढ़ा ले, तो ते जो जो जंगली जानवरों की रखवाली है सही, हम 500 बूटू की हम कर सकूं, लेकिन 1000 की एकदम शौक देना करी। सारे स्वरोजगार चाहे को जाए स्वरोजगार होला, छोटे छोटे रूप में विकसित करो और धीरे धीरे तेतुक आगे बढ़ाई करें, तेतुक बड़ा करो।
1: बहुत सुंदर सुझाव कि कोई भी आप उद्यम शुरू करना चाहें, कोई भी स्वरोजगार की इकाई शुरू करना चाहें, तो वही था अपन सामर्थ्य के हिसाब से और छोटी इकाई के तौर पर हम भर कई संचालित कर सकते। बड़ू कर दूला पहले तो वही तो समझ थोड़ा मुश्किल हो जाता। शानदार सुझाव चाप को कि छोटी तौर पर हम अपनी शुरुआत करें, खेती से भी, हम अपने स्वरोजगार से भी, बाकी और धाणियों से भी अच्छा खासा आत्मनिर्भर हो सकता है। चौहान जी, आप कार्यक्रम में सुंदर छुई बतापक दगड़ लें और ये सभी छुई बत तो हमारा किसान भाइयों का खातिर, हमारा जवान दगड़ों का खातिर उपयोगी साबित होला, ये नाम काम न करना। आपका खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आपल सुनी या पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता स्वरोजगार और आधुनिक खेती विषय पर श्री संजीव चौहान से विनय ध्यानी की बातचीत। तो श्रोताओं, उम्मीद कर दिया कि आप थे यह भेंटवार्ता सुंदर लगेल और लगल भी की लेना, क्योंकि यह स्वरोजगार से अपनी खेती से अपनी पारंपरिक आधुनिक खेती से छे और अपना जड़ जमीन से जुड़ने की बात है। तो जरूर उम्मीद कर दिया कि आप थे सुंदर लगेली, भली लगेली। यो भी उम्मीद कर दिया कि आप चिट्ठी का माध्यम से हम तो जरूर बतेला कि आप ते कार्यक्रम और कार्यक्रम में भेंट वार्ता, गीत संगीत जो कुछ भी आप तो सुंदर लगलो वही के बाबत आप जरूर लिख के भेजें। हमार चिट्ठी को पता चे चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com। आपकी चिट्ठी की जुगाल हम तो सदन रौंदा और जब भी चिट्ठी पत्रियों को बृहस्पतिवारों को पढ़ने को दिन आंदा तब ते गज सुंदर लगत कि जब एक तरफा बटे कि हमारा ध्यानी जी चिट्ठी पढ़ देना और चिट्ठी में हमारा श्रोताओं की हम थे वह उम्मीद दी रौंदा कि जय उम्मीद का कारण हम कार्यक्रम थे और सुंदर बनाने की पूरी कोशिश कर दिया। तो श्रोताओं, आपकी चिट्ठी के सदनी जगवाल रालू इंतजार रालू चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com पर आप चिट्ठी लिखें। आप तक कार्यक्रम कन लगत ये के बाबू जरूर लिखें, सुझाव देने चाहे तो आप वे को भी स्वागत और कार्यक्रम में और कोई बदलाव भी चल जाए तो वे को भी स्वागत श्रोताओं को। तो श्रोताओं, अब आप थे लेके चल दिया कुमाऊं की छोड़ और सुन दिया दीवान सिंह धनी का स्वरमय सुंदर सी कुमाऊनी गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, रविवार से पहले आप सुनना चाहिए दीवान सिंह धनिक का स्वरमय सुंदर सी कुमाऊनी गीत। उम्मीद कर दिया कि आप तो पसंद है उलो और पसंद भी किलेनियाल, क्योंकि गीत ही तक सुंदर छ। श्रोताओं, आज विश्व एड्स वैक्सीन दिवस छ। यू विश्व स्वास्थ्य का क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन छ। यू दिन अब वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, स्वास्थ्य पेशावरों और स्वयंसेवकों को समर्पित छ। यू दिन HIV जन लाइलाज बीमारी को टीका खोजण को संघर्ष करना छिने। भले ही आज चिकित्सा विज्ञान HIV इलाज ART थेरेपी में प्रगति करे लुली, लेकिन ई वैश्विक महामारी थे पूरी तरह जड़ से खत्म करने को एक प्रभावी वैक्सीन होन बहुत जरूरी छ। 18 मई 1997 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिंटन मार्गेन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक प्रभावशाली भाषण दे छो। उन बोली छो कि एड्स का खतरा थे पूरी तरह खत्म करने को एकमात्र रास्ता वैक्सीन छ। उन वैज्ञानिकों थे अगला दशक का भीतर ही ई वैक्सीन थे विकसित करने को आह्वान करी छो, और उनकी यह कोशिश, वैज्ञानिकों की कोशिश, चिकित्सा पेशावरों की यह कोशिश और स्वयंसेवक संगठनों की यह कोशिश रंग बिलौनी चाह और दिखने को भी मिलने चाह कि आज ई लाइलाज बीमारी को कखी न कखी वैक्सीन आ गया और लोग ये का वैक्सीन से राहत भी मिलने चलो को थे और ये बीमारी थे कम कनमा सहायता भी मिलने च। तो हम सब थे ये दिन थे मनाने को ये उद्देश्य च कि हम सब थे इन संक्रमण से फैलने बीमारी से जागरूक रहन, सतर्क रहन, साफ सफाई को ध्यान रखन और कोशिश करन कि खास करके हमारा जो नानतेना छिना या हम लोग चाह के जब टीका लगाने को जन्या या इंजेक्शन लगाने को जन्या तो ज़्यादातर यू ध्यान नहीं देना कि एक ही इंजेक्शन अल दूधे लोगों थे इंजेक्शन लग जा, तो वे का कारण क्या उनके संक्रमण फैलने को ज़्यादा खतरा रहन। तो यहाँ के प्रति जागरूक करे जाना कि खासकर जो टीकाकरण और गर्भवती महिलाएं छी ना ऊँथे या गर्भवती कोई भी हो, एक ही टीका से दो लोगों थे टीका नहीं लगन चाहिए, क्योंकि अक्सर खून से ही संक्रमण फैलता और गंदगी से ही फैलता। सबसे पहले तो कि साफ सफाई का ध्यान रखन, और खासकर आप जब हॉस्पिटलों में जन्या तो वक ही चीज़ों को ध्यान रखना कि जै सुई से हम सुई लगाना छा, क्योंकि वहाँ से पहल के और थे तो सुई नहीं लगी। तो ये दिन थे मनाने को ई उद्देश्य छ कि जागरूकता का साथ साथ सतर्कता भी रहन और अपना ध्यान भी रखन, स्वास्थ्य के प्रति भी, संक्रमण के प्रति भी, और इन जो संक्रमण से फैलने बीमारी छिना उनसे दूर भी रहन। तो श्रोताओं, सुई बत्ता हम ठीक 7 बजे लगौला, लेकिन आप थे लेके चल दें आप जौनसार की छोड़ और सुनन्या राहुल वर्मा का स्वरमाए सुंदर सी जौनसारी गीत।

0: श्रोताओं, अब यहाँ पर सुनिए राहुल वर्मा का स्वरमायु सुंदर सी जौनसारी गीत। हमारे स्टूडियो के सारे घड़ी सारा का नीचे के भगत हुणवल च उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को, तो घड़े एक में सुना आप उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब?
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से 4 अत्याधुनिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। कहा, यह एम्बुलेंस जरूरतमंद लोगों तक त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के मेरू परिसर पटवा डांगर में अकादमिक भवनों का शिलान्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार में चैन राय जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई, तत्काल सुधार के निर्देश दिए। और चमोली जिले में स्थित रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से HDFC बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत जनहित के लिए प्रदान की गई 4 अत्याधुनिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री

0: ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में समय पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई ये एम्बुलेंस जरूरतमंद लोगों तक त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनभागीदारी और संस्थागत सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक अधिकारियों ने बताया कि इन एम्बुलेंस में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं एवं आवश्यक आपातकालीन उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही आगामी 3 वर्षों तक प्रत्येक एम्बुलेंस में चिकित्सक, नर्स अटेंडेंट और चालक की व्यवस्था भी बैंक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। प्रारंभिक चरण में ये एम्बुलेंस चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी तथा भविष्य में राज्य के प्रमुख धार्मिक आयोजनों और आपदा प्रबंधन कार्यों में भी इनका उपयोग किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के मेरू परिसर पटवा डांगर में अकादमिक भवनों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह निर्माण कार्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकास को नई दिशा प्रदान करेगा और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: हमारे राज्य में 12 विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय और इसमें हमने पहला विश्वविद्यालय का चयन किया है कुमाऊं विश्वविद्यालय का। यहाँ पे हम 100 करोड़ पे मेरू के तहत पैसा दे रहे हैं और ये जो पटवा डांगर जगह है यहाँ पे हम लोग लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से बच्चों के लिए हॉस्टल भी बना रहे हैं। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट साइंस के यहाँ पे आएंगे हमारे विश्वविद्यालय के और सरकार के द्वारा यहाँ पे जमीन भी जो है विश्वविद्यालय के लिए हस्तांतरित की गई है और अब यहाँ का विधिवत जो है आज भूमि पूजन हुआ है। विशेषकर हम कुमाऊं विश्वविद्यालय को बच्चों के लिए हॉस्टल हो गया, लैब हो गया, खेल हो गए सामान हो गया, पुस्तकालय हो गया, ई ग्रंथालय हो गया और प्रशासनिक भवन हो गया, हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं और ये इसी साल ये पैसा जो है खर्च होगा।
0: पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही मंदिर परिसरों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। श्री महाराज ने चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि यात्रा में आने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार तैयारी करें। उन्होंने कहा कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आवश्यक दवाएं और उपकरण साथ रखें। पर्यटन मंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह भी किया है। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में आज विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों के संपादन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों, प्रशिक्षण, डेटा संकलन और व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
2: आज एक तैयारी की बैठक ली गई जिसमें सभी हमारे ईआरओस उपस्थित थे और सभी नोडल ऑफिसर्स भी उपस्थित थे, तो उनको निर्देशित भी कर दिया गया है कि इसका पूरा हमारा प्लान जो प्रिंटिंग होकर आनी है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है या जो बीएलओस की सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो सब बिल्कुल समयबद्ध ढंग से कर लिया जाए और कल से ही हमारे जो बीएलओस की एटलीस्ट किट है वो कल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाए और साथ में जो हमारे बीएलए 2 है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको अधिक से अधिक इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए क्योंकि जब वो साथ में रहेंगे बीएलओस के तो उनकी कोई भी शक या शंका होगी उसके तत्काल समाधान किया जा सकता है और पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट ढंग से संपादित किया जा सकता।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आज हरिद्वार में चैन राय जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति संतोषजनक न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को इसमें तत्काल सुधार के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही पिथौरागढ़ जिले के जंगलों में एक बार फिर वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में वन विभाग की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हुई हैं। स्थानीय ग्रामीण भी जंगलों की आग बुझाने में वन विभाग का सहयोग कर रहे हैं। चंडाक वन क्षेत्र के बडौली इलाके में कल रात लगी आग को नियंत्रित करने में स्थानीय ग्रामीणों ने भी वन विभाग का सक्रिय सहयोग किया। वन क्षेत्राधिकारी दिनेश जोशी ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़े नुकसान को टाला जा सका। उन्होंने कहा कि आग बुझाने में सहयोग करने वाले ग्रामीणों को विभाग सम्मानित करेगा।
4: चंडाक से लगे बड़ौली गांव पे उनकी वन पंचायत में फायर की घटना हुई थी। गांव के सभी लोग और वन पंचायत और वन समिति के लोग के द्वारा अच्छा सहयोग दिया गया। इनके द्वारा वन पंचायत बड़ौली में लगी आग में पूर्ण सहयोग देने के साथ ही आग पे तुरंत नियंत्रण कर लिया गया था। जो लोग भी सहयोग दे रहे हैं ग्रामवासी, उनको विभाग की ओर से सम्मानित किया जाएगा। और भविष्य में सभी गांव वालों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सहयोग के लिए कह रहे हैं कि वो वनाग्नि पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सहयोग दें तथा अपने वन को बचाने के लिए आगे आए।
0: वहीं प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने भी स्थानीय लोगों से जंगलों की आग काबू करने में विभाग का सहयोग करने की अपील की है।
5: लोगों से आग्रह करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं जहां भी प्रकाश में आती हैं, आप वन विभाग का सहयोग करें और बढ़ चढ़कर इन वनाग्नि घटनाओं पर काबू पाने के लिए वन विभाग का सहयोग करें। और हम लोग भी लगातार ऐसे नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। और जो लोग इस वनाग्नि सत्र में विभाग का सहयोग करेंगे, उनको हम किसी न किसी तरीके से उनको हम सम्मानित करने का पूरा प्रयास करेंगे।
0: चमोली जिले में स्थित पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कपाट खुलते ही पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और जय बाबा रुद्रनाथ के जय घोष से भक्तिमय हो उठा। रुद्रनाथ के पुजारी चंडी प्रसाद तिवारी ने बताया कि रुद्रनाथ मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल में 6 महीने तक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं।
6: बोले रुद्रनाथ भगवान की जय। आज भगवान चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट विधि विधान पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं और देश विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं।
0: पौड़ी में ईंधन बचत और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए आज सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने नो व्हीकल डे मनाते हुए अपने अपने आवास से कार्यालय तक पैदल पहुंचकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। सिविल जज नाजीस कलीम ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन की खपत को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से 4 अत्याधुनिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। कहा ये एम्बुलेंस जरूरतमंद लोगों तक त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के मेरू परिसर पटवा डांगर में अकादमिक भवनों का शिलान्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार में चैन राय जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई, तत्काल सुधार के निर्देश दिए और चमोली जिले में स्थित रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
8: एक चाबी है CKYC ID।
7: CKYC मतलब?
8: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
7: वाह, RBI कहता है
8: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं को अपनी बोली भाषा को कार्यक्रम ग्राम जगत मा 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर मिछो आपक दगड़ी सविता बड़थवाल और आप छमे दगड़ सभी श्रोता। तो श्रोताओं अपुर दगड़ ठीक 7 बजे तक बने कर रख्या क्योंकि जब आपक दगड़ होंद तो हम थे लगुत कि हाँ यार एक उम्मीद जगत मन में कि हमारे श्रोता हम तो सुनना छिना और कार्यक्रम तक करना में हम तो उत्साह भी होंद और हम तो इन भी लगुत कि हम ही खुले छा लगत कि हमारे श्रोता हम तो सुनना छिना तो हम तो सुंदर भी लगद और कार्यक्रम तकन माँ और

सुंदर लग। तो श्रोताओं, हम आप थे लेके चल जाए गढ़वाल की छोड़ और सुन जा मनोज तिवारी का स्वरमय सुंदर सी गढ़वाली गीत। लियाओ सुना आप यू सुंदर सी गढ़वाली गीत।

अभी आप सुनना चाहिए मनोज तिवारी का स्वर मायू सुंदर सी गीत। और सच में अपने पहाड़ की याद आनी चाहिए कि बांझियों की जोड़ों को पानी आहा कन ठंडो होलू। तो श्रोताओं अब आप थे लेके चल जाए कुमाऊं की छोड़ और सुन जा संजय दत्त पांडे का स्वर मायू सुंदर सी कुमाऊनी गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुनना चाहे संजय दत्त पांडे का स्वरमय सुंदर सी कुमाऊनी गीत। हमारे स्टूडियो की घड़ी सारा कनिच की बगत हुए गया गढ़वाली माँ प्रादेशिक समाचारों को। तो लियाओ सुना आप गढ़वाली माँ प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बैठक गढ़वाल माँ प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मीना उनियाल। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली, सरकार अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति दगड़ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना को निरंतर काम करने च। चमोली जिला में स्थित चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ मंदिर का कपाट आज श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ खोल दिए गिन। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराजन चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से मंदिर परिसरों और यात्रा मार्गों से स्वच्छ बने रखना का आह्वान करे और देहरादून में औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में कानून व्यवस्था बने रखना को धारा 163 लागू करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि राज्य सरकार अंतिम छोर पर खड़ा

0: का बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का बाबत निरंतर काम करने च आज देहरादून बटी चार अत्याधुनिक एम्बुलेंसों थे फ्लैग ऑफ करी मुख्यमंत्री ने बोली कि यह पहल राज्य का दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं थे सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम च। श्री धामी ने बोली कि उत्तराखंड का पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में समय पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक च। राज्य सरकार जन भागीदारी और संस्थागत सहयोग का माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं थे और अधिक सशक्त बनाने को प्रतिबद्ध च। उन बते कि शुरू चरण में ये एम्बुलेंस चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेले। दगड़ी भविष्य में यू का उपयोग प्रमुख धार्मिक आयोजनों और आपदा प्रबंधन कार्यों में भी करे जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन कई देशों का दौरा का तहत नॉर्वे का ओस्लो पहुंच गए न। ये दौरा में भारत और नॉर्वे का बीच द्विपक्षीय बातचीत तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन शामिल छ। ये दौरा नार्डिक देशों का दगड़ भारत का संबंधों तय नए गति दयाल। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे की अपनी पहली यात्रा कुण ओस्लो पहुंचेन। 43 सालों में भारत का छोड़ बटी कई भी प्रधानमंत्री का यह पहली दौरा छ। चमोली जिले में स्थित चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ का मंदिर का कपाट आज शुभ मुहूर्त का वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान का दगड़ श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ खोल दिए गए। कपाटो उद्घाटन का अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु साधु संत और स्थानीय लोग मौजूद छया। कपाल खुलता ही चौछड़ी हर हर महादेव और जय बाबा रुद्रनाथ का जय घोष से भक्तिमय हो गए। एक बाइट
1: पंच केदारों में चौथा केदार का रूप में विशेष स्थान रखण वाला श्री रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव का एकानंद स्वरूप अर्थात मुख रूप की पूजा अर्चना करे जांद। हिमालय का दुर्गम चोटियों का बीच स्थित यू पवित्र धाम अपनी अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा, प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमय दिव्यता खुणे की विश्व में प्रसिद्ध है। कपाट खुलना का दगड़े ही अब आगामी 6 महीने तक भगवान रुद्रनाथ की नियमित पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करे जाला। देश विदेश बटे आने वाला हजारों श्रद्धालु ये दिव्य धाम में पहुंच की भगवान शिव का दुर्लभ एकानंद स्वरूप का दर्शन करी पूर्ण लाभ अर्जित करला। रुद्रनाथ यात्रा अपनी कठिन लेकिन रोमांचकारी पैदल रास्ता खुणे भी जने जांद। दुर्गम पहाड़ी रस्तों से वे की गुजरण वाली ये यात्रा श्रद्धालुओं थे अध्यात्म, प्राकृतिक और आस्था को अद्भुत संगम को अनुभव कराद। आकाशवाणी देहरादून खुणे की समाचार कक्ष बटे मी सविता बर्थवाल।
0: धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराजा ने चार धाम यात्रा पर आने वाला सभ्य श्रद्धालुओं से मंदिर परिसरों और यात्रा मार्गों थे स्वच्छ बने रखना आह्वान करी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान उन तीर्थ यात्रियों से अपील करी कि बोली कि कूड़ा केवल कूड़ादान में ही डलिया। श्री महाराजा ने बोली कि देवभूमि की मर्यादा और वे की पवित्रता बने रखना सभी का सामूहिक दायित्व।
2: आप सभी श्रद्धालु भक्तगण चार धाम यात्रा में देवभूमि में पधारे हुए हैं और यह हमारा कर्तव्य है और सबसे बड़ी पूजा यह है कि हम देवभूमि को स्वच्छ रखें। इसलिए जो भी कूड़ा है वो कूड़ा दान में डालें, गार्बेज बॉक्स में डालें और सारी धरती को पवित्र रखें। मेरा आपसे बहुत अनुरोध है कि कूड़ा कूड़े की जगह पड़े तो हमारी देवभूमि साफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श चार धाम के रूप में स्थापित हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि मन की स्वच्छता हो और शरीर की स्वच्छता, इसका ध्यान जरूर रखें।
0: वखी मध्य प्रदेश बटी उत्तरकाशी जिला स्थित श्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचा श्रद्धालुओं ने यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना करी। यात्रियों ने बोली कि उनकी यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार बनी छ।
3: आज हम लोग आ गए हैं गंगोत्री धाम, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर और यहाँ की व्यवस्था। उसके बाद में हम लोग नदी पे गंगा माता के स्नान के लिए, वहाँ स्नान करने का एक अलग ही अनुभव था हमारा। स्नान करने के बाद में इतना अच्छा लगा और हमारे शरीर में ऐसा लगा जैसे एक तंदुरुस्ती आ गई है। माता रानी के आशीर्वाद से, उनकी शक्ति से यहाँ के पानी के एक अमृत में इतनी शक्ति है कि हम बता नहीं सकते। यहाँ की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और यहाँ पुष्कर जी धामी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था बनी हुई है, यही जगह जाम लगा लेकिन पुलिस प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था रखी जो कानवे में लगा लगा के आगे हमारी यात्रा को सफल बनाया है।
4: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: देहरादून का सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था बने रखना कुन पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च करी। यह कार्रवाई श्रमिकों का धरना प्रदर्शन का दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव कर माहौल बिगड़ने का प्रयास का बात करेगी। प्रशासन ने सेलाकुई और शिटकुल औद्योगिक क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से भारतीय न्याय संहिता धारा 163 लागू करी। फ्लैग मार्च का दौरान पुलिस ने लोगों से लागू प्रतिबंधों की जानकारी दे की शांति बने रखना के आह्वान पर ध्यान देने की अपील करी। पुलिस ने चेतावनी दी कि शांति व्यवस्था बिगड़ या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों का खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करे जेल। आदेश का तहत सेलाकुई और शिटकुल क्षेत्र में हथियार लाठी डंडा और अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलन सार्वजनिक सभा जुलूस नारेबाजी और बिना अनुमति प्रदर्शन करण पर रोक लगेगी। 5 या उससे ज्यादा लोगों का इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध रहा। पौड़ी जिला का कपरौली स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आज बाल संरक्षण और बाल अधिकारों थे लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। विद्यालय का प्रधानाचार्य अंकित चौहान ने बोले कि वर्तमान समय में बच्चों थे शिक्षा का दगड़ी अपन अधिकारों सुरक्षा और कानूनी संरक्षण की जानकारी होन भी जरूरी है ताकि वो कई भी प्रकार का शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में समय रेन सहायता ले सक। चाइल्ड लाइन समन्वयक मोहित सिंह ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098999 24 घंटा संचालित निःशुल्क आपातकालीन सेवा च। उन बोली कि बाल श्रम बाल विवाह हिंसा भिक्षावृत्ति या कई भी प्रकार का शोषण की स्थिति में तत्काल 1098 पर संपर्क करे जे सकें। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग का अनुसार अगला 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक वृद्धि की संभावना है। वहीं पिछला 24 घंटों का दौरान राज्य का पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किए गए। विभाग का अनुसार अगला 36 घंटों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बन्यो राल। मौसम विभाग ने गर्मी थे देखी कि लोगों थे छैल मरण ज्यादा पान पीण वाले चीजों का सेवन करण अनावश्यक रूप से घर बटेक भैर नि निकलण दुपरामा भैर निकल दो मुंड ढकेकन निकलण की सलाह दे। उन्हें देश का मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से राहत पाना कुणो बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्रों का छाड़ आना छन। यहाँ दगड़ ही सप्ताह का आखिर में हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून और नैनीताल पर्यटकों से गुलजार रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटकों का आन से स्थानीय व्यापारी उत्साहित छन। सुरक्षा का मद्देनजर पुलिस भी पूरी तरह सतर्क छ। यातायात व्यवस्था थे सुचारू बने रखना कुणो विशेष ट्रैफिक प्लान लागू करेगी जामा पर्यटकों की आवाजाही सुगम बनी छ। राजधानी देहरादून में डेंगू और जल जनित बीमारियों की रोकथाम थे लेकिन जिला प्रशासन सतर्क च। जिलाधिकारी सविल बंसलन अधिकारियों का दगड़ बैठक करी। अस्पतालों में डेंगू जांच उपचार दवाइयों और ब्लड बैंक और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दें। उन बोले कि कंट्रोल रूम 24 घंटा सक्रिय रहो और डेंगू का कोई भी मामला सामने आने पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करे जेल। राजधानी देहरादून में 42वां उत्तराखंड गोल्ड कप टूर्नामेंट आगामी 22 मई बटी 7 जून तक खेले जाल। प्रतियोगिता में देशभर की टीमों का दगड़ ही नेपाल की टीम भी भाग लेनी है। ये बाबत 16 टीमें 4 ग्रुपों में खेलल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोले सरकार अंतिम छोड़ पर खड़ा व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने को निरंतर कार्य करने च। चमोली जिला में स्थित चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ का मंदिर का कपाट आज श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ खोल दिए गए। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराजा ने चार धाम यात्रा पर आने वाला श्रद्धालुओं दगड़ मंदिर परिसर और यात्रा मार्गों से स्वच्छ बने रखने का आह्वान करी और देहरादून का औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में कानून व्यवस्था बने रखने को धारा 163 लागू करेगी। यहाँ दगड़ ही गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों का यू उनको समाप्त होने तो नमस्कार।
5: और यखमी कार्यक्रम ग्राम जगत बटोलने की सविता बड़थवाल तद्या अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से हम बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अब लीजिए प्रस्तुत है हमारे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

सभी किसान साथियों को डॉक्टर जगदीश पांडे का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कृषि जगत कार्यक्रम में। और क्या क्या हालचाल हैं हमारे किसान भाइयों के? वैसे हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सभी किसान साथी स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपना ये दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत सुन रहे होंगे। किसान साथियों, यदि बात करें आज के कार्यक्रम की, तो हमेशा की तरह आज भी कुछ उपयोगी समसामयिक विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा डॉक्टर गौरव जैन के साथ एक भेंटवार्ता प्रस्तुत करेंगे। विषय होगा छोटे और सीमांत किसानों के लिए बकरी पालन। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वहीं देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से हमारे किसान साथी सुन रहे हैं अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। किसान साथियों, इस बात में तो कोई संदेह नहीं कि पशुपालन किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक गतिविधि है, लेकिन पशुपालन यदि व्यवसाय के दृष्टिकोण से किया जाए, अर्थात डेयरी व्यवसाय किया जाए, तो लाभ प्राप्त करने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। डेयरी उद्योग न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी इसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और एक सफल डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए मूलभूत 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक तो पशुपालन का बुनियादी ज्ञान, उपयुक्त स्थान और थोड़ी सी प्रारंभिक पूंजी। चूंकि डेयरी की स्थापना व्यवसाय के दृष्टिकोण से की जाती है, इसलिए अन्य व्यवसायों की तरह डेयरी व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण कदम है कि एक उचित बिजनेस मॉडल का चयन कर लिया जाए। डेयरी 5 से 10 पशुओं के साथ छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं, जिसमें दूध का विपणन किया जा सकता है, या फिर 20 से 50 पशुओं के साथ मध्यम स्तर का फार्म बनाया जा सकता है, जिसमें दूध और दूध के उत्पाद भी बेचे जा सकते हैं। इसके अलावा बड़े स्तर पर आप 100 से अधिक पशुओं वाली डेयरी प्लांट की

बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और सही नस्ल का चयन डेयरी व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। गायों की प्रमुख नस्लें हैं साहिवाल, जिनकी दूध उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 10 से 12 लीटर होती है, और गिर नस्ल, जिसका दूध उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 8 से 10 लीटर होती है। भैंसों में प्रमुख नस्ल मुर्रा नस्ल है, जिसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 12 से 15 लीटर होती है, और दूध में वसा की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए ये ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। इसके अलावा भी स्थानीय आवश्यकता और वातावरण को देखते हुए आप पशु की नस्ल चयनित कर सकते हैं। फार्म जो बनाया जाए, जो हमारी जो भी पशुशाला बनाई जाएगी, उसका शेड का निर्माण करने में बहुत से पहलुओं को विचार करना चाहिए, और प्रत्येक पशु के लिए लगभग 40 से 50 वर्ग फुट की जो स्थान है उसकी आवश्यकता होती है, और शेड का फर्श ढलान वाला और कंक्रीट से बनाना चाहिए, जिससे सफाई करने में आसानी हो, और छत में एस्बेस्टस या टिन की शीट का उपयोग किया जा सकता है, जो पशुओं को लोग गर्मी से बचाने में मदद करेगा। और जैसा कि अभी गर्मियाँ आ रही हैं, ऐसी स्थितियों में तापमान बढ़ने से पशु दबाव की स्थिति में आ जाते हैं, जिससे पाचन प्रणाली और दूध उत्पादन की क्षमता में विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही इस जो तनाव पैदा होता है, उसकी वजह से पशुओं में बीमारी से लड़ने की जो उनकी अंदरूनी क्षमता है, उस पर भी असर पड़ता है, और आने वाले बरसात के मौसम में वो विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता और प्रजनन क्षमता दोनों गिरती हैं। इसमें बचाव के लिए सर्वप्रथम तो पशुओं के लिए साफ एवं ऊंची हवादार पशुशाला होनी चाहिए, और जैसा हमने कहा था कि उसमें अगर हम टिन की छत लगाएं तो बहुत गर्म हो सकती है, इसलिए छत पर एस्बेस्टस की शीट का उपयोग करें, और यदि अधिक गर्मी हो तो 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल देना चाहिए। ये बहुत गर्मी को से हमारे पशुओं को बचाती हैं, और ऐसी स्थिति में गर्मी में पशु सूखा चारा खाना कम कर देते हैं, क्योंकि सूखा चारे को पचाने में अधिक ऊष्मा निकलती है, अतः पशुओं को प्रातः या सायं ही ये सूखा चारा देने, जहाँ तक संभव हो सके आहार में हरे चारे की मात्रा अधिक रखनी चाहिए, और 3 से 4 बार पानी पिलाना चाहिए। और इस बात को ध्यान रखें कि अगर पशुशाला के आसपास छायादार वृक्ष हों तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं, जिससे एक तो छाया मिलती है, दूसरा वो लू से भी हैं हमारे पशुओं को बचाते हैं। और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए नियमित टीकाकरण बहुत आवश्यक है। खुरपका मुंहपका रोग के लिए साल में 2 बार, और गलघोंटू के लिए वार्षिक, और ब्रुसोलियस के लिए हर साल 2 बार टीकाकरण करवाना चाहिए। इन टीकों के अलावा नियमित जांच भी बहुत आवश्यक है, और सरकार द्वारा भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ हमारे पशुपालक उठा सकते हैं, और इसका लाभ उठाने के लिए पशुपालन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। तो किसान साथियों, इस चर्चा के बाद आइए, अब समय हो चला है एक लोकगीत का, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से हमारे किसान साथी सुन रहे हैं अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। किसान साथियों, आइए सुनते हैं छोटे और सीमांत किसानों के लिए बकरी पालन विषय पर डॉक्टर गौरव जैन से विकास चमोली की बातचीत।
1: नमस्कार किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर गौरव जैन। आप पशु पोषण विशेषज्ञ हैं और आज हमारी जो डॉक्टर साहब के साथ बातचीत का विषय है वो विषय रहने वाला है छोटे और सीमांत किसानों के लिए बकरी पालन। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पशुपालक हैं, खेती किसानी के साथ अगर हम पशुपालन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी आमदनी है वो बढ़ती है। और कैसे हम बकरी पालन कर सकते हैं इस विषय पर डॉक्टर साहब से विस्तार से जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
2: नमस्कार किसान भाइयों, धन्यवाद सर, आपने मुझे एक बार फिर अवसर प्रदान किया।
1: जी डॉक्टर साहब, बकरी पालन की बात करें तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देखें क्यों ज़रूरी है और कितना उपयोगी हो सकता है ये बकरी पालन हमारे पशुपालकों के लिए।
2: जी सर, अगर हम बात करें पशुपालन की, पशुपालन में जैसे हमारे गाय भैंस भेड़ बकरी होती हैं, उनमें अगर हम बकरी पालन की बात करें, बकरी पालन के संदर्भ में एक बात अवश्य बोली जाती है कि बकरी पालन, जो बकरी होती है वो छोटे किसानों के लिए गाय का काम करती है, क्योंकि बकरी को हम दूध पालन के लिए भी करते हैं, मांस उत्पादन के लिए भी करते हैं, और एक आध जो ब्रीड होती है हमारी वो ऊन उत्पादन के लिए भी करते हैं, जैसे गद्दी ब्रीड है। तो छोटे किसान हमारे बकरी पालन को आराम से और एक बहुत कम स्पेस में भी आराम से कर सकते हैं। बकरी पालन के लिए आवश्यक नहीं है कि हमारे किसान भाई ही करें, जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो भी बकरी पालन हम आराम से कर सकते हैं।
1: जी किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है? जैसे एक तो बकरियों के लिए हमें बाड़ा बनाना है, दूसरा जैसे बकरियों के लिए नस्ल की हम बात करें, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि शुरुआत के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है।
2: सर जैसे अगर हम बात करें, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, अगर हम बाड़े की बात करें, जैसे अगर एक बकरी की बात करें, एक बकरी के लिए हमें लगभग 4 से 5 मीटर स्क्वायर की ज़रूरत होती है, और अगर हमारे पास 18x80 का वो स्पेस है उसमें हम लगभग 100 बकरियों का आराम से पाल सकते हैं। और नस्लों की बात करें, जैसे जमुनापारी बकरी है या बर्बरी बकरी है, तो हम इस तरह की बकरी हम प्रेफर करते हैं किसान भाइयों को दूध उत्पादन के लिए, क्योंकि जमुनापारी बकरी एक दिन में 2 से 3 लीटर दूध तक दे देती है।
1: अच्छा।
2: और बर्बरी बकरी जो होती है एक बार में, एक दिन में लगभग 500 ml से लगभग 1.25 लीटर तक दूध दे देती है।
1: जी।
2: और खान पीन की अगर हम बात करें इनकी, तो जो हमारे किसान भाइयों के घर में हमारा जो वेस्टेज बचता है उस पर भी हम आराम से बकरी पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ बकरी पालन में दलहनी फसलों का जितना भी अवशेष बचता है, जिसको हम कड़वी बोलते हैं, अगर किसान भाइयों के पास वो अगर मिल जाए, क्योंकि कड़वी एक प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है, और भूसे में इतना प्रोटीन नहीं मिलता जितना कड़वी में मिलता है, तो हमें कड़वी ज्यादा प्रयोग करना चाहिए जितने भी हमारी दलहनी फसलों के अवशेष होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया जमुनापारी बकरी या जो बर्बरी बकरी की बात आपने बताई कि ये दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छी है, ऐसी जैसे आपने बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में कि या तो दुग्ध उत्पादन के लिए हम बकरी पालन करते हैं या मांस के लिए, तो अगर हम मांस के लिए बकरी पालन कर रहे हैं तो फिर किस तरह की नस्लों का हमें पालना चाहिए?
2: अगर मांस के लिए अगर हम बात करें, तो मांस के लिए हमें जो बकरी है, बकरी की शारीरिक बनावट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
1: अच्छा।
2: जैसे अगर हम सबसे ज्यादा बात करें, जैसे ब्लैक बंगाल एक ब्रीड है, ये सबसे ज्यादा मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है।
1: अच्छा।
2: इसके बाद हमारी जो गद्दी ब्रीड है ये भी मांस उत्पादन में है, और बीटल है, सानेन है, ये भी हमारी कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो दूध उत्पादन और मांस दोनों में चल जाती है। जैसे बीटल है, ये दूध उत्पादन में भी चल जाती है और मांस में भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, और ब्लैक बंगाल का सबसे अच्छा टेस्ट होता है, और ये छोटी बकरी होती है और आराम से हम इसको पाल सकते हैं घर में।
1: जी थोड़ा सा डॉक्टर साहब, अब आहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि चाहे अच्छा दुग्ध उत्पादन लेना हो या आप मांस के लिए अच्छे किस्म की बकरी पालना चाह रहे हैं, तो किस तरह का आहार हमें बकरी पालन में अपने जो पशु हैं या जो बकरियां हैं उनको खिलाना चाहिए?
2: सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि पशुपालन में 70% हमारा जो खर्चा होता है वो सिर्फ उनके भोजन के ऊपर होता है, बाकी का 30% उनका प्रबंधन के ऊपर हमारा खर्चा हो रहा है।
1: जी।
2: और अगर हम भोजन की बात करें, अगर पशुओं में अगर हमें मांस उत्पादन लेना या दूध उत्पादन लेना है, तो मांस उत्पादन वाली बकरियों में हमें अधिकतम चना है या सोयाबीन है, जिन फसलों में अधिक एनर्जी होती है और जिससे पशु का ज्यादा बॉडी वेट बढ़ता है, हमें उनको प्रेफर करना चाहिए। दूध उत्पादन में हम हम उनकी क्वांटिटी कुछ कम कर सकते हैं। जैसे मिल्क प्रोडक्शन में अगर कोई हमारी बकरी है तो उसको हमें प्रतिदिन 500 से 700 ग्राम दाना देना चाहिए, परंतु अगर हम बात करें कि मांस उत्पादन के लिए उसको हमें 800 से 1 किलो से 1.25 किलो तक दाना देना चाहिए ताकि उसका जल्दी से जल्दी मांस बढ़े। तब जब हम पशुओं को चारा दे रहे हैं, चारा देने के हमारे तरीका है कि आप पशुओं को पूरा संपूर्ण चारा संपूर्ण भोजन एक बार में ना दें। उससे क्या होगा कि पशु पूरा चारा ग्रहण भी नहीं करेगा और काफी चारा वेस्ट कर देगा। उसकी बजाय आप 24 घंटे में हम जितना दाना देना है या चारा देना है, हरा चारा देना है, सूखा चारा देना, आप उसको 3 भाग में डिवाइड कीजिए। आप उसको 33% एक बार में, 33 और 34 एक बार में दीजिए, और चारा देने के कम से कम 7 से 8 घंटे के बाद आप उसको दोबारा दीजिए।
1: अच्छा,
2: उससे क्या होगा कि जो हमारी बकरी होती है, जुगाली करने वाला पशु होता है, ये इसको पहले खाता रहता है, पेट भरता है, उस वक्त पचाता नहीं है। पचाने के लिए बाद में जब बैठ के जुगाली करता है, अगर हम इसको संपूर्ण भोजन एक बार में दे देंगे तो उसको ब्लोटर डिजीज हो सकती है, अफारा आ सकता है। उससे कभी कभी हमारे पशुओं में देखा जाता है कि उनकी डेथ तक हो जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे हम खुले मैदान में उनको चराने के लिए छोड़ते हैं तो ये कितना अच्छा रहता है हमारी बकरियों के लिए?
2: सर, जो हमारी एक बकरी और एक भेड़ है, अगर हम दोनों में अंतर कहीं बात करें, भेड़ हमेशा एक दूसरे के पीछे चलती रहती है, जबकि बकरियां क्या, जब हम चराने के लिए लेके जाते हैं, बकरियां तितर बितर हो जाती हैं, जो एक बहुत अच्छी आदत है। उससे क्या होता है कि जब बकरियां विभिन्न प्रकार के हरे चारे खाती हैं तो हर प्रकार की वनस्पति में हम विभिन्न प्रकार के कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं। तो उससे क्या होता है कि बकरी का दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक दूध माना जाता है। इवन दैट जब हम देखते हैं कि हमारे को कभी डेंगू वगैरह हो जाता है परिवार में या आस पड़ोस में, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको बकरी का दूध पिलाओ। क्यों? क्योंकि बकरी के दूध में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ अगर हमें बकरियों का चराने के लिए लेके जाना है तो उसे जब सुबह के टाइम ओस रहती है घास के ऊपर, जब तक वो ओस घास पर से ना हट जाए तब तक उनको हरे चारे में नहीं चराना
1: अच्छा,
2: चाहिए।
1: उससे नुकसान है कुछ?
2: जी, क्योंकि जो ओस की बूंदे होती है उससे क्या होता है कि बकरियों के गले में जो छाले टाइप से एक बीमारी होती है वो पड़ जाती है, उससे बकरियों को नुकसान होता है, पता भी नहीं चलता है कि बीमारी किस कारण से हो रही है। अगर हम वहीं उस जब ओस समाप्त हो जाती है, जब जैसे सनलाइट आ गई और सनलाइट आने के आधे घंटे बाद पौन घंटे बाद हम लेके जाते हैं, तब तक वो सट जाती है, उसके बाद में वो हरे चारा नुकसान नहीं करता, सिर्फ वो ओस के कारण, क्योंकि पूरी ओस में होती है डस्ट वगैरह भी होती है, बैक्टीरिया भी होती है, उसके कारण बीमारी होती है वो।
1: जी अच्छा, इसके अलावा जैसे और किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और किस तरह के रोग हैं जो बकरियों में आमतौर पर देखे जाते हैं?
2: सर देखिए, अगर हम बकरियों में बात करें, सबसे पहले हमारे पशुपालकों भाइयों को हमें जो हमारा टीकाकरण एक प्रोग्राम होता है वो टीकाकरण जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा बरसात आने वाला है 1-2 महीने पश्चात, तो बरसात से पहले जितने भी हमारे पशुपालक भाई हैं, चाहे वो गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, सभी में टीकाकरण अवश्य करा लेना चाहिए। स्पेशली जैसे बकरी और हमारे दुधारू पशु होते हैं उनमें खुरपका एक मुंहपका बीमारी होती है, इससे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में फफूंदी भी छाले वगैरह पड़ जाते हैं, इससे पशुओं को खाना खाने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, और उनकी कभी कभी डेथ भी हो जाती है। और अगर हम ये जितने भी टीके हैं ये सरकारी अस्पताल में फ्री में उपलब्ध होते हैं, सरकार केंद्र एवं राज्य सरकारें सभी टीकाकरण के ऊपर बहुत ध्यान देती हैं। इससे अलग भी अगर हम बात करें बकरियों में, जैसे हमारी गलघोंटू बीमारी है या PPR डिजीज है, इनमें भी फफूंदी वगैरह गले में छाले वगैरह हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बीमारियों से बचने के लिए हमें टीकाकरण अवश्य यूज करना चाहिए।
1: जी, ये तो बीमारियों की बात हुई डॉक्टर साहब, क्या कुछ और समस्याएं भी हैं जो बकरी पालन में आ सकती हैं हमारे पशुपालकों के साथ?
2: जी, जैसे अगर हमारे पशुपालक भाई जब कभी बकरी पालन शुरू करते हैं और हम एक स्थान से खरीदकर बकरियों को दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, तो उस परिस्थिति में बकरियों की क्या आदत होती है कि तो बकरियां खड़ी रहती हैं, तो जब हमें बकरियों को दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो उस स्थिति में हमें बकरियों को ले जाने से पहले उनको कम से कम 3 घंटे पहले खाना खिला 4 घंटे पहले खाना खिला देना चाहिए। क्या होगा कि अगले 3 से 4 घंटे में बकरियां वो खाना डाइजेस्ट कर लेंगी, उसके बाद हमें बकरियों को ट्रेवल कराना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि जब हम बकरियों को खाना खिलाने के बाद

0: तुरंत अगर लेके जाते हैं तो बकरियाँ खड़ी रहती है, खड़े उस टाइम ट्रेवलिंग के टाइम पे बकरियाँ जुगाली करती नहीं है, और जब जुगाली करेगी नहीं वो खाना पेट में रखा रहेगा, और जब दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे वहाँ का टेम्परेचर तापमान अलग होता है, ह्यूमिडिटी अलग होती है, कंडीशंस अलग होते हैं, तो उस समय फिर वो पशु डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, तो उस समय कई बार हमने देखा कि 20 से 30% हमारी बकरियों की मृत्यु हो जाती है।
1: अच्छा।
0: और उसमें सबसे बेस्ट तरीका, आप 3 से 4 घंटा पहले खाना खिलाइए, उसके बाद आप बकरियों को लेके जाइए, और ट्रेवलिंग के टाइम पे जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा रहे हैं अधिक से अधिक 6 से 8 घंटा आप ट्रेवल कीजिए, और वो सबसे बढ़िया है कि रात्रि के समय आप करें, रात्रि के समय में हमारा तापमान कम होता है तो ट्रेवलिंग में बहुत कम प्रॉब्लम होती है नाइट टाइम में, और दिन में टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, बकरियाँ खड़ी रहती हैं तो उससे बकरियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, तो इस तरह से जो हमारे पशुपालक हैं, जो हमारे बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, वो सावधानियों का ध्यान रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बीमारियों की बात हो गई, समस्याओं की बात हो गई, क्या इस तरह का भी कुछ रेशियो रखा जाता है कि इतनी बकरियों के साथ इतने हमें बकरे रखना ज़रूरी है?
0: जी, अगर हम बकरी पालन जब भी करते हैं तो नर और मादा दोनों पशुओं की संख्या अलग अलग होती है।
1: अच्छा।
0: जैसे अगर हम बात करें कि नर पशु कितने होने चाहिए और मादा पशु कितने होने चाहिए, लगभग 20 मादा पशुओं पर एक नर काफ़ पर्याप्त होता है,
1: अच्छा।
0: परंतु उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब हम किसी भी एक नर को किसी मादा के साथ प्रजनन के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसी दिन हमें उस नर को किसी दूसरी मादा के साथ प्रजनन के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: तो जैसे नर बकरे की हम बात करें, उसके चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा हमें?
0: जी, अगर हम नर बकरे दो प्रकार के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, एक मांस के लिए और एक प्रजनन के लिए। अगर हम बात करें मांस के लिए, तो मांस के लिए हमें वो बकरे का प्रयोग करना है कि जिसका वजन अधिक हो, देखने में हष्टपुष्ट हो और वो बधिया हुआ हुआ हो, तो उससे क्या होगा कि अगर बधिया बकरा है तो उसके मांस की गुणवत्ता अच्छा होगी। अगर हम बात करें प्रजनन के लिए हमें उस बकरे को प्रयोग में करना चाहिए कि जो सुडौल हो, मजबूत हो, हष्टपुष्ट हो, चंचल टाइप हो, और साथ ही साथ उसकी टांगें मजबूत होनी चाहिए, स्पेशली पीछे वाली टांगें ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, और उसका प्रजनन के प्रति इंटरेस्ट भी होना चाहिए। कि कभी कभी देखा जाता है कि कुछ कुछ बकरे ऐसे होते हैं कि जिनको हम मादा पशुओं के साथ रखते हैं परंतु वो उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो नर पशु ऐसा भी होना चाहिए जिसको मादा पशुओं में इंटरेस्ट भी हो और साथ ही साथ वो मजबूत हो, हष्टपुष्ट हो, और खाने खाने में डाइजेशन से रिलेटेड उसे कोई बीमारी ना हो।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अब ये गर्मियां आ रही हैं, तो ऐसे में बकरियों के साथ कुछ सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है?
0: जी, अब गर्मियों में अगर हम बात करें बकरी पालन में, तो बकरी पालन में सबसे हमें थोड़ा सा तापमान अपना नियंत्रित करना चाहिए कि हमें बकरियों को सुबह के समय या तो ग्रेजिंग के लिए लेके जा रहे हैं या शाम के लिए, दिन के समय में हमारे पशुपालक भाई उनको शेड में या कहीं वृक्ष के नीचे बिठा सकते हैं, और तो वहीं पर उनको पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी भी देना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको उनको कुछ हरा चारा या स्टॉल फीडिंग करनी है, खोर में उनको भोजन देना है, तो आप दिन में जब पशुपालक हमारी हमारे बकरियां दिन में आराम करती हैं उस समय आप उनको थोड़ा सा हरा चारा या सूखा चारा मिला करके आप दोनों चीज़ दे सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर गौरव जैन, आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत बकरी पालन के विषय में आपके साथ हुई। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से अपने दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत हमारे किसान भाई सुन रहे थे छोटे और सीमांत किसानों के लिए बकरी पालन विषय पर डॉक्टर गौरव जैन से विकास चमोली की बातचीत। किसान साथियों, इस भेंटवार्ता के बाद अब समय है एक लोकगीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

किसान साथियों, इस लोकगीत के साथ ही अब आज के कृषि जगत कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो चला है। किसान साथियों, आपके पत्रों के माध्यम से भेजे गए आपके सुझाव और कार्यक्रम के संबंध में आपकी टिप्पणियों के रूप में प्राप्त होने वाला आपका स्नेह हमें प्रेरित करता है, इसलिए हमें पत्र अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी देहरादून, 248001। किसान साथियों, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपने पत्र और सुझाव भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है jagatkrishi@gmail.com। तो किसान साथियों, अब आज के कार्यक्रम से डॉक्टर जगदीश पांडे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: किसान साथियों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत को अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। 7:30 हुए हैं, अब लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नौकदगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को सरकार अंतिम छोर पर ठाड़, हर मन की जाने भल स्वास्थ्य सुविधाएं पूजोणक लीजी लगातार काम करने। चमोली जिले में स्थित चौथ केदार श्री रुद्रनाथ मंदिर कपाट आज श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दी गई। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराजल चार धाम यात्रा पर ऊणवा श्रद्धालुओं थे मंदिर परिसर और यात्रा बाटों में सफाई रखनक आह्वान करो। और देहरादून औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में कानून व्यवस्था बनाई रखनक लीजिए धारा 163 लागू करी गये। आप समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को राज्य सरकार अंतिम छोर पर थाड़ी, हर मन की जाने भल स्वास्थ्य सुविधा पूजोणक लीजिए लगातार काम करने। आज देहरादून बठे चार अत्याधुनिक एम्बुलेंस

0: एम्बुलेंस के फ्लैग ऑफ कर बेर मुख्यमंत्री को की पहल राज्य दूसर और पहाड़ी जागन में स्वास्थ्य सेवाओं के मजबूत बनुनक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम छू। श्री धामिल को की उत्तराखंड पहाड़ी और दूरस्थ जागन में बखत पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बहुत जरूरी छू। राज्य सरकारक जनभागीदारी और संस्थागत सहयोगक माध्यमल स्वास्थ्य सेवाओं के और ज्यादा सशक्त बनुनक लजी प्रतिबद्ध छू। उन्होंने बताया कि पहली चरण में यो एम्बुलेंस चमोली चंपावत पिथौरगढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर ली। दगड़े भविष्य में यह उपयोग प्रमुख धार्मिक आयोजन और आपदा प्रबंधन जस कामों में ले करी जल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपूर्ण कई देशों के दौरों में जा रही नार्वे ओस्लो पुज गई। यो दौर में भारत और नार्वे बीच द्विपक्षीय बातचीत और तीसर भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन शामिल छू। यो दौरा नार्डिक देशों के दगाड़ भारतक संबंध के नई गति दियोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नार्वे अपूर्ण पहली यात्रा के लिए ओस्लो पुज गई। 43 राज्यों में भारतक सपन है ठुल यो बैठक क्वेले प्रधानमंत्री पहली दौरा छू। चमोली जिले में स्थित चतुर्थिक केदार श्री रुद्रनाथ मंदिर कपाट आज भोल मुहूर्त में खोल दी गई। वैदिक मंत्रोच्चार और पूर्व विधि विधानक दगड़ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए यो कपाट खोल हालीन और कपाट खुलनक मौक पर ठुल संख्या में श्रद्धालु साधु संत और वाक लोग उपस्थित रहीन। कपाट खुलनक दगड़ ही पूर्व क्षेत्र में हर हर महादेव और जय बाबा रुद्रनाथक जय घोषल भक्तिमय है। गयो प्रस्तुत एक रिपोर्ट।
1: पंच केदारों में चौथ केदारक रूप में विशेष स्थान राखणवाल श्री रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिवजी का एकानंद स्वरूप यानी मुख रूप की पूछपाठ करी जाए। हिमालय दुर्गम चोटियों बीच बसी यो पवित्र धाम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमयी दिव्यता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध छू। कपाट खुलनाक दगड़े अब ऊणवाल छह मेणो ताले भगवान रुद्रनाथ रोज पूछपाठ और धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न करी जाल। देश विदेश बटी ऊणवाल हजारों श्रद्धालु यो दिव्य धाम में पुजबेर भगवान शिवाक दुर्लभ एकानंद स्वरूपाक दर्शन करबेर पुण्य लाभ लियाल। रुद्रनाथ यात्रा अपन मुश्किल पर रोमांचकारी पैदल बाटक लीजिले जानी जे दुर्गम पर्वती बाटो बे है बेर जानी वाली यो यात्रा श्रद्धालुओं को आध्यात्म प्रकृति और आस्था अद्भुत संगमक अनुभव करे। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष बटी मी ज्योति जोशी।
0: धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराजल चार धाम यात्रा पर ऊणवाल सपे श्रद्धालुओं थे मंदिर परिसर और यात्रा बाटों के साफ बनाई रखने आह्वान करो। बद्रीनाथ धामक यात्रा के बखत उनल तीर्थयात्रियों थे अपील कर बीर को की सर कूड़ केवल कूड़दान में ही डालो। श्री महाराजल को की देवभूमि मर्यादा और वैक पवित्रता बनाई रखने के लिए सपना सामूहिक दायित्व छू।
2: आप सभी श्रद्धालु भक्तगण चार धाम यात्रा में देवभूमि में पधारे हुए हैं और यह हमारा कर्तव्य है और सबसे बड़ी पूजा यह है कि हम देवभूमि को स्वच्छ रखें। इसलिए जो भी कूड़ा है वो कूड़ादान में डालें, गार्बेज बॉक्स में डालें और सारी धरती को पवित्र रखें। मेरा आपसे बहुत अनुरोध है कि कूड़ा कूड़े की जगह पड़े तो हमारी देवभूमि साफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श चार धाम के रूप में स्थापित हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि मन की स्वच्छता हो और शरीर की स्वच्छता हो, इसका ध्यान जरूर रखें।
0: वहीं मध्य प्रदेश बठे उत्तरकाशी जिले स्थित श्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पूजिन श्रद्धालुओं यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना करी। यात्रुओं की उनर यात्रा सुरक्षित सुव्यवस्थित और यादगार बनी छू।
3: आज हम लोग आ रहे हैं गंगोत्री धाम, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर और यहाँ की व्यवस्था। उसके बाद में हम लोग नदी पे गंगा माता के स्नान के लिए, वहाँ स्नान करने का एक अलग ही अनुभव था हमारा। स्नान करने के बाद में इतना अच्छा लगा और हमारे शरीर में ऐसा लगा जैसे एक तंदुरुस्ती आ गई है। माता रानी के आशीर्वाद से उनकी शक्ति से यहाँ के पानी के एक अमृत में इतनी शक्ति है कि हम बता नहीं सकते। यहाँ की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और यहाँ पुष्कर जी धामी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था बनी हुई है, यही जगह जाम लगा लेकिन पुलिस प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था रखी जो कानवाई में लगा लगा के आगे हमारी यात्रा को सफल बनाया है।
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: देहरादूनक सिलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाई रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों संयुक्त रूपल फ्लैग मार्च करो। यो कार्यवाही श्रमिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ढूंढ खिदबेर माहौल के बिगाड़ने का प्रयास करेगी।

0: शासनल सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में तत्काल प्रभावल भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू कर हाली। फ्लैग मार्चक दौरान पुलिस लोगों के लागू प्रतिबंध की जानकारी दी बेर यो सफाई व्यवस्था बनाई रखनक जागरूक करो। अफवाह पर ध्यान नी देनक अपील ले करी। पुलिस चेतावनी दे कि शांति व्यवस्था बिगाड़नक या माहौल खराब करनक कोशिश करने वालक खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करी जाली। आदेशक अनुसार सेलाकुई और सिडकुल क्षेत्र में हथियार और अन्य घातक वस्तुएं लीबेर चलन सार्वजनिक सभा जुलूस नारेबाजीकरण बिना अनुमति प्रदर्शन करण पर रोक लगाई है। पांच है या वी है जात जानिनक इकट्ठे होने पर प्रबंध लगाई गयो। प्रदेश में गर्मीक प्रकोप जारी छू। मौसम विभागक अनुसार अघिन द्वि तीन में दिन में अधिकतम तापमान 1-3 डिग्री जाने बढ़नक अंदाज छू। वहीं पिछल 24 घंटक दौरान राज्यक पहाड़ी और मैदानी जगहों में तापमान सामान्य है जा दर्ज करी गयो। विभागक अनुसार अगिल 36 घंटे जाने प्रदेश में मौसम शुष्क बनी रोल। मौसम विभागल गर्मी के देख भी लोगों थे सेव में रूण और खूब पानी वाली चीजें नक सेवन करण जरूरी नहीं होने पर घर बैठे बिहार नहीं जान और दिनक बखत बिहार जान पर ख्वार के ढक बेर जानक सलाह दी। वहीं मैदानी जागों में भीषण गर्मी थे राहत पाणक लीजिए ठुल संख्या में पर्यटक उत्तराखंडक पर्वतीय जागों में ऊन रही और यह का दगड़ ही प्रमुख प्राकृतिक झरना तालाब और गाड़गधारों में ले लग रही। वहीं ऊर जान विसार व्यापारी उत्साहित छन और सबन में खुशिक माहौल छू। राजधानी देहरादून में डेंगू और पानी हुणवाल बीमारियों को रोकथाम के लिए प्रशासन सतर्क छू। जिलाधिकारी सविन बंसल अधिकारियों दगाड़ बैठक कर बेर अस्पताल में डेंगू जांच उपचार दवाइयों ब्लड बैंक और पर्याप्त स्टाफक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दें। उनलको की कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रोल और डेंगू कोयले मामला सामण में ऊन पर झट कार्यवाही करी जाओ। केंद्र सरकारल सोशल मीडिया में चलन वाल उपोस्ट के खारिज कर हलो जमे कई गयो छी कि भारत के पास केवल 2-3 दिन ही तेल भंडारण बची छू। पत्र सूचना कार्यालय PIB फैक्ट चेक यूनिटल यो दावा को कि यो फर्जी दावा छू। यूनिटल को कि भारत के पास 60 दिनक कच्चे तेलक भंडारण मौजूद छू। एक अलावा तेल शोधन कारखानों पास ले खूब भंडारण छू। PIB नागरिकों को नी घबरूणक सलाह दे और कह कि ईंधन और गैसक उपलब्धता बार में सरकारी अधिकारियों द्वारा सत्यापित सूचनाओं पर ही भरोस करण छे। केंद्र सरकारल को की CBSE 12वीं परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी छू। 12वीं परिणाम पर नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभागक सचिव संजय कुमारल बताए कि विद्यार्थियों मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताए। सचिवल बताए कि CBSE यो साल यस प्रणाली लागू करी जैल मूल्यांकन में ज्यादा पारदर्शिता निष्पक्षता सुनिश्चित छू। सचिवल को की CBSE मूल्यांकन शुल्क कम कर हेलो। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को कि सरकार अंतिम छोड़ पर ठाड़ी हर मन की जाने भल स्वास्थ्य सुविधाएं पूजूनक लीजिए लगातार काम करने। चमोली जिले में स्थित चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथक मंदिर कपाट आज श्रद्धालुओं दर्शनक लीजिए खोल दी गई। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराजल चार धाम यात्रा पर ऊनवाल श्रद्धालुओं थे मंदिर परिसर और यात्रा बाटों में सफाई बनाई रखना आह्वान करो। और देहरादूनक औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में कानून व्यवस्था बनाई रखनक लीजिए धारा 163 लागू करिए। यह कदगढ़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:40 हो चुके हैं। अब श्रोताओं समय हो चला है फिल्म संगीत का। अब आइए आपको सुनवाते हैं कुछ सुगम और मधुर गीत।

जी हाँ, अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने अब लौट चले फिल्म से ये गीत सुना। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और धुन तैयार की थी नदीम शर्वन ने। अब आइए आपको सुनवाते हैं।

एक्शन रिप्ले फिल्म से ये अगला बेहतरीन गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में, शब्द रचना इरशाद कामिल की है और इसे संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों के इस सफर को विराम देते हैं। फिल्मी गीतों का सफर जारी रहेगा 8:30 से। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:50 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है RNU देहरादून की प्रस्तुति में विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून में मैं जयवीर सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्रोताओं, प्रत्येक सोमवार को प्रसारित होने वाला हमारा विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण, जिसमें हम बात करते हैं राज्य और देश की उन तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं और करंट अफेयर्स की जो हमारे छात्र साथियों यानी विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत नैनीताल जनपद से करते हैं। श्रोता, उत्तराखंड सरकार की एक जिला एक खेल यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट नीति के तहत नैनीताल जिले के लिए एक विशिष्ट खेल का चयन किया गया है, जिसका नाम है मॉडर्न पेंथलॉन। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल नीति को अंतिम रूप देने की आधिकारिक घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण नीति के तहत उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों के लिए एक एक विशिष्ट खेल का चयन किया गया है, ताकि स्थानीय खेल प्रतिभाओं को निखारा जा सके। नीति के तहत प्रत्येक जिले में चयनित खेल के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा और खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। अब साथियों, कौन से जिले के लिए कौन सा खेल का चयन किया गया है, चलिए ये भी जान लेते हैं। अल्मोड़ा जिले के लिए बैडमिंटन, बागेश्वर के लिए ताइक्वांडो, चंपावत जिले के लिए फुटबॉल, देहरादून के लिए शूटिंग, हरिद्वार जिले के कुश्ती, नैनीताल जिले में जैसे हम बता चुके हैं मॉडर्न पेंथलॉन, पौड़ी जिले के लिए एथलेटिक्स, पिथौरागढ़ जिले के लिए मुक्केबाजी, टिहरी गढ़वाल जिले के लिए कैनोइंग या कयाकिंग, रुद्रप्रयाग के लिए वुशु, उधम सिंह नगर जिले के लिए साइकिलिंग, उत्तरकाशी के लिए कबड्डी और चमोली जिले के लिए रेस वॉक का चयन किया गया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, चलिए अगली करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। श्रोताओं, हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया देश का पहला ग्रीन रोपवे प्रोजेक्ट, जिसमें वन्य जीव संरक्षण के लिए विशेष कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, उत्तराखंड में किन दो स्थानों के बीच प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव के बीच। जी हाँ, ऋषिकेश नीलकंठ महादेव रोपवे प्रोजेक्ट को राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण का मॉडल बनाया जा रहा है, जो देश का पहला ग्रीन रोपवे होगा। इस परियोजना में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तर्ज पर विशेष वन्य जीव कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, ताकि हाथी, तेंदुआ व हिरण जैसे वन्य जीव बिना किसी बाधा के सुरक्षित रूप से गुजर सकें। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी योजना को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस रोपवे का निर्माण ऋषिकेश के तपोवन से त्रिवेणी घाट होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर तक जाएगा। ये रोपवे मार्ग मुख्य रूप से राजाजी टाइगर रिजर्व के संवेदनशील वन क्षेत्र और गंगा नदी के आसपास फैले घने जंगलों से होकर गुजरेगा। श्रोताओं, अगली जो जानकारी है वो है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रत्येक विकास खंड में एक एक गांव को आदर्श कृषि एवं उद्यान गांव के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए इस पहल के लिए आगामी 3 वर्षों की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। इन गांवों का चयन वहां की भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु, भूमि की गुणवत्ता और स्थानीय जरूरतों के आधार पर किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कृषि तकनीकों का समन्वय किया जाएगा। उन्नत कृषि तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शोध और तकनीकी नवाचारों का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए उन्हें लैब टू लैंड कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। श्रोताओं, देश में पहली बार समान नागरिक संहिता यानी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत हलाला प्रथा के खिलाफ पहला FIR उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में दर्ज की गई है। देश में पहली बार समान नागरिक संहिता यानी UCC के तहत हलाला मामले में पहली FIR उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाने में दर्ज हुई है। यह मुकदमा एक महिला की शिकायत पर उसके पति मोहम्मद दानिश और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 संशोधन 2026 की धारा 32(1) और 32(3) के तहत कार्यवाही की है, जो हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित और दंडनीय बनाती है। साथियों, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के 11 पहाड़ी जिलों में लागू की गई स्वैच्छिक और आंशिक चकबंदी नीति के तहत किसी गांव के चयन के लिए न्यूनतम 10 हेक्टेयर भूमि तथा 25 काश्तकारों की सहमति अनिवार्य की गई है। दरअसल उत्तराखंड कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों में बिखरी जोत को एकीकृत करने और कृषि भूमि को बंजर होने से बचाने के लिए 11 पहाड़ी जिलों में स्वैच्छिक व आंशिक चकबंदी नीति लागू करने को मंजूरी दी है। नीति के तहत प्रदेश के 11 पर्वतीय जनपदों में प्रतिवर्ष प्रति जनपद 5 गांव में चकबंदी कार्य पूर्ण किया जाएगा। इस प्रकार आगामी 5 वर्षों में कुल 275 गांवों को स्वैच्छिक आंशिक चकबंदी से आच्छादित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। चकबंदी योजना के लिए केवल विवाद रहित गांव को ही चयनित किया जाएगा और इसके लिए न्यूनतम 10 हेक्टेयर भूमि अथवा 25 अलग अलग काश्तकारों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। चकबंदी के इच्छुक भूमि स्वामियों को आपसी सहमति से चक योजना बनाकर बंदोबस्त अधिकारी व SDM के समक्ष आवेदन करना होगा। ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य कैबिनेट ने होम स्टे में कक्षों की अधिकतम संख्या 6 से बढ़ाकर 8 कर दी है। राज्य में अब 8 से 10 लोगों का समूह मिलकर सामुदायिक होम स्टे संचालित कर सकेगा, जिसे सरकार द्वारा सब्सिडी सहित अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। साथियों, वर्ष 2026 में उत्तराखंड में 100% कोविड टीकाकरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार से पूजा परमार राणा को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड की ANM पूजा परमार राणा को वर्ष 2026 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूजा परमार राणा उत्तरकाशी जिले के दुर्गम नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हैं और इन्होंने 15 वर्षों तक मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया है। कोरोना महामारी के दौरान स्वयं गर्भवती होने और पूरे परिवार के कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद इन्होंने अपने अधिकतर क्षेत्र में 100% कोविड टीकाकरण सुनिश्चित किया। श्रोता, इसके साथ ही उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रियल इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 में वैश्विक स्तर पर 85वां और भारत में शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग स्विट्जरलैंड में जारी की गई और यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला उत्तराखंड का एकमात्र विश्वविद्यालय है। श्रोताओं, हाल ही में IFF 2026 में मोबाइल शॉर्ट फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली उत्तराखंड की मूक फिल्म द लूप ऑफ लाइफ की पटकथा और निर्देशन डॉक्टर अनीता नेगी ने किया है। दरअसल उत्तराखंड की मूक फिल्म द लूप ऑफ लाइफ ने मोबाइल शॉर्ट फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार हासिल किया। यह पूरी तरह से एक मूक फिल्म यानी साइलेंट फिल्म है, जिसमें बिना किसी संवाद के केवल जूतों के माध्यम से एक परिवार की कहानी और जीवन के चक्र को दर्शाया गया है। इस फिल्म का रचनात्मक निर्देशन डॉक्टर भुवन तिवारी ने किया। इसके साथ ही हाल ही में भारतीय सीनियर महिला रग्बी टीम में चयनित होने वाली उत्तराखंड की महक चौहान उत्तरकाशी जनपद की निवासी हैं। महक उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के मोरी विकास खंड के ग्राम भद्रांसु की निवासी हैं। महक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित होने वाली आगामी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। श्रोता, इसके साथ ही उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए वसुधारा झील राज्य की पहली हिमनद झील होगी, जहां प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना को वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। श्रोताओं, साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू होने की घोषणा के बाद उत्तराखंड प्रशासन ने पिथौरागढ़ और लिपुलेख मार्ग पर तैयारियां तेज कर दी हैं। सीमांत क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम शुरू हो गया है। इससे स्थानीय लोगों के रोजगार और व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
2: श्रोताओं, इसके साथ ही ज्ञान दर्पण का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी जयवीर सिंह को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून। नमस्कार।

0: ज्ञान दर्पण, ये विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति के अंतर्गत। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। हिंदी वार्ता के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रकृति के सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति प्रेम और करुणा विषय पर डॉक्टर शांति अग्रवाल से जानकारी।
1: मधुबन को भीनी खुशबू से महकाए अब रजनीगंधा, मधुबन को भीनी खुशबू से महकाए अब रजनीगंधा, अंबर में तारों के संग संग इतराए इठलाए चंदा, अंबर में तारों के संग संग इतराए इठलाए चंदा, मुस्काते बल खाते झरने लगे, मुस्काते बल खाते झरने लगे गीत सुहाने गाने। प्रकृति के सुरम्य अंचल में जन्मे सुकुमार सृजनात्मक प्रतिभा से समृद्ध कवि एवं छायावादी काव्य के प्रणेता सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जनपद के कौसानी गांव में हुआ। प्रकृति की गोद में जन्मे सुकुमार कवि की काव्य भावना, कल्पना, प्रकृति, हिमालय और गंगा का मधुमय प्रवाह है। पंथ के काव्य का संपूर्ण बीज हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य की धारा में खोजे जा सकते हैं। मानव तथा प्रकृति की शोभा के प्रति एक विस्मय, कौतूहल तथा मुग्ध जिज्ञासा का भाव उन्हें प्रेममयी कवियों के काफी नजदीक ले जाता है। उन्हें कविता करने की प्रेरणा प्रकृति से ही मिली है। अरे ये पल्लव प्रवाल सजा सुमनों के सौरभ हार, सजा सुमनों के सौरभ हार गूंथते वे उपहार, गूंथते वे उपहार अभी तो हैं ये नव प्रवाल, अभी तो हैं ये नव प्रवाल, नहीं छूटे तरु की डाल, नहीं छूटे तरु की डाल विश पर विस्मित चितवन डाल, विश्व पर विस्मित चितवन डाल हिलाते अधर प्रवाल, हिलाते अधर प्रवाल। प्राकृतिक सौंदर्य के सूक्ष्म रंग रेखाओं को देखने वाली पैनी आंखें उनकी प्रकृति प्रेम अभिव्यक्ति का आधार हैं, यथा हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशा की, भीगी अंधियाली में निशा की तारक स्वप्नों में से सोए, मरकत डब्बे सा खुला ग्राम, मरकत डब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन, जिस पर नीलम नव आच्छादन निरुपम हिमंत स्नग्ध और निज शोभा से हरता जनमन, निज शोभा से हरता जनमन। पंत स्वयं लिखते हैं कि कविता करने की प्रेरणा मेरी जन्मभूमि उत्तरांचल की प्रकृति से ही प्राप्त हुई। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में प्रकृति के अत्यंत सजीव कोमल मनोहर चित्र मिलते हैं। उनकी कविताएं प्रकृति का मानवीकरण करती हैं, जहां पहाड़, नदियां, बादल जीवित पात्रों की तरह बातें करते हैं। प्रकृति के अत्यंत जीवंत सूक्ष्म अनुपम चित्रण हम उनकी रचनाओं में देखते हैं। प्रकृति कविवर पंत की अभिन्न सहचरी रही है, प्रकृति कविवर पंत की अभिन्न सहचरी रही है। कविवर पंत की एक कविता केवल कविवर पंत की कविता केवल निर्जीव नहीं, वह सजीव एवं संवेदनशील है। वे प्रकृति के कोमल रूप के साथ साथ उसके विनाशकारी रूप के प्रति भी करुणा महसूस करते हैं। उनकी प्रारंभिक कविताओं में छायावादी विरह और प्रेम की करुणा है। कालांतर कविताओं में करुणा का अत्यंत सूक्ष्म मानवीय चित्रण जो समय के साथ साथ सामाजिक चेतना तक विकसित हुआ, विशेषकर ग्राम्या और युगांत में यह करुणा शोषित गरीब और ग्रामीण जीवन के प्रति गहरी सहानुभूति में बदल गई। कविवर के शब्दों में ही मेरा विचार है कि वीणा से ग्राम्या तक की मेरी सभी रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य का प्रेम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। न जाने नक्षत्रों से कौन, न जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण मुझको देता मौन, निमंत्रण मुझको देता मौन। प्रकृति के प्रति अभिन्न प्रेरणा उनकी अधिकांश कविताओं में देखी जा सकती है। यही प्रेरणा युग परिवर्तन में सहायक रही है। झरो झरो झरो जंगम जग प्रांगण में, झरो झरो झरो जंगम जग प्रांगण में, जीवन संघर्षण में, नवयुग परिवर्तन में, नवयुग परिवर्तन में, मन के पीले पत्तों झरो झरो झरो। पंत जी की मुक्ति भावना का पूरा पर्याय प्रकृति प्रेम है। प्रथम रश्मि कविता में बाल विहंगनी के गान ने कवि को जीवन ज्योति का स्पर्श दिया है। निराकार तम मानो सहसा, निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धरकर नाम रूप नाना, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धरकर नाम रूप नाना। कवि की काव्य यात्रा प्रथम पड़ाव प्रकृति प्रेम एवं प्रकृति का मानवीकरण का सुंदर चित्रण रहा है। काव्य की यात्रा के विकास क्रम वीणा, ग्रंथी, गुंजन, ग्राम्या,

0: उठता है चंचल चंचल। सोए हुए वीणा के सुर, सोए हुए वीणा के सुर क्यों मधुर स्पर्श से मरमर मरमर। बज उठते हैं प्रतिपल प्रतिपल, बज उठते हैं प्रतिपल प्रतिपल। आशा के लघु अंकुर, आशा के लघु अंकुर किस सुख से फड़काकर पर, किस सुख से फड़काकर पर फैलाते नव दल पर दल, फैलाते नव दल पर दल। मानव का मन निष्ठुर, मानव का मन निष्ठुर सहसा आंसू में झर झर क्यों जाता पिघल पिघल गल। मैं चिर जगती की इच्छा से, जगती की इच्छा से जगती के अर वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ज्योतित कर जन मन के जीवन का अंधकार, ज्योतित कर जन मन के जीवन का अंधकार। तुम खोल सको मानव उरके निशब्द द्वार, तुम खोल सको मानव उरके निशब्द द्वार। परिवर्तन ही जग का जीवन है, यहाँ विकास हरास संग विघटन। हम हूँ अपने भाग्य विधाता, यूं मन का धीरज मत खोवे। उनकी रचनाओं में अध्यात्मवाद भी देखने को मिला। स्वर्णधुली, अतिमा, रजत शिखर इसके प्रभाव में दिखती हैं। उनकी आध्यात्मिक रचनाओं में प्रकृति के सूक्ष्म चित्रण के साथ साथ आत्मा और दिव्य जीवन का चिंतन प्रमुख है। ज्योति द्रवित हो हे घन, ज्योति द्रवित हो हे घन छाया संशय को तुम तृष्णा करती गर्जन, तृष्णा करती गर्जन ममता विद्युत नर्तन, ममता विद्युत नर्तन करती उर्मय प्रतिक्षण। करुणा धरा में झरझर स्नेहे, करुणा धरा में झरझर स्नेहे अश्रु बरसाकर व्यथा भार उरकाहर, व्यथा भार उरकाहर शांत करो आकुल मन, शांत करो आकुल मन। कविवर पंत प्रकृति प्रेमी तो थे ही, प्रकृति ने तो उन्हें मोहित किया ही, पर समाज संघर्ष से भी वे अछूते नहीं रहे। समसामायिक घटनाओं ने उन्हें प्रेरित किया और अध्यात्म भी उनकी लेखनी से दूर न रह सका। ऐसे प्रतिभा के धनी थे कविवर सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत।
1: प्रकृति के सुकुमार सुमित्रानंदन पंत के काव्य में प्रकृति प्रेम और करुणा विषय पर अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर शांति अग्रवाल। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से हम बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए कुछ गीत।

विविध कलाकारों के गाए गीतों का अभी आप आनंद ले रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब श्रोताओं, समय हो चला है फिल्म संगीत का। अब आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत में ये पहला गीत लता मंगेशकर के स्वर में, असली नकली फिल्म से। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: सच में श्रोताओं, प्यार कब किससे और कहाँ हो जाए पता ही नहीं चलता, बस दिल से दिल जुड़ जाता है, जैसे कि ये गीत सुनकर आप सभी को एहसास हुआ होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जो कि है सीता और गीता फिल्म से। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत आप तक पहुंच रहा है। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन।
1: ए, ए,

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
3: फिल्म संगीत में अब आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत तलाश। फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसे संगीतबद्ध किया है SG बर्मन ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का ये सफर अब यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 8:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
2: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक

0: स्वास्थ्य समाधान डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद

आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
4: भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
3: Prime Minister Modi said the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
4: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
3: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
4: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
3: Multiple MOUs were signed in this bilateral meeting in the sectors of high-tech health solutions, digital health and digital public infrastructure. An MOU between India's ISRO and Norway's Space Agency will ensure deepening of ties in the space sector. A triangular cooperation agreement was also signed today. In this, India and Norway will jointly provide human development solutions to the countries of Global South using India's digital public infrastructure. In a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Meanwhile, the Norway-India Business and Research Summit began a short while ago in Oslo. The summit has brought together representatives from government, industry, academia and research institutions of both countries. Mr. Modi reached Norway this afternoon after concluding his visit to Sweden. He said in a social media post that his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said the discussions were highly productive, from elevating bilateral ties to a strategic partnership, launching of Joint Innovation Partnership 2.0. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that a defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government. On the last leg of his five-nation visit, Prime Minister Narendra Modi will arrive in the Italian capital, Rome, on a two-day state visit tomorrow. He will hold bilateral talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni. More from our correspondent.
5: Mr. Modi will hold delegation-level talks with the Prime Minister of Italy with a focus on maritime security and strong connectivity. Italy gives India access not just to Europe, but also to the entire Mediterranean region. It is significant in view of the supply chain partnership and the defense partnership. This five-nation visit has been far more than diplomacy. It is about securing India's future energy routes, AI partnership, semiconductor access, defense manufacturing, and global interests. This is Suparna Bhatia for Akashwani from Rome, Italy.
3: Back home, a high-level U.S. industry delegation held discussions with Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh in New Delhi today. The deliberations were held on emerging opportunities for private investment and industry collaboration in India's nuclear sector. The delegation included

FM 100.5 MHz पे आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

बैठ जाओ सपनों के नाव में, मौके की ना तलाश करो, सपने बुनना सीख लो, खुद ही थाम लो हाथों में पतवार, मांझी का ना इंतजार करो, सपने बुनना सीख लो। जी हाँ श्रोताओं, इंसान को अपने संघर्ष की नाव खुद ही चलानी होती है और अपनी मंजिल, अपने गंतव्य तक खुद ही पहुंचना होता है। इसी एक जोशपूर्ण और उमंग भरी बात के साथ आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है फिल्म संगीत में।

आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों को। अब आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं याराना फिल्म से ये अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने और इसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

इस दिल का तलबगार बहुत देर से आया, तू जिंदगी में यार बहुत देर से आया, किरदार सबके तेरी कहानी में आ गए, बस मेरा है किरदार बहुत देर से आया, तुम चाहते हो मुझको ये मालूम था मुझे, होठों पे इजहार बहुत देर से आया।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल स्वर में अभी आपने दूसरा आदमी फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुना। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसे सुरों में पिरोया था राजेश रोशन ने। अब श्रोताओं आपको सुनवाते हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ों में छाया फिल्म से ये अगला गीत। शब्द रचना राजेंद्र कृष्णा की है और इसे संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने।

0: श्रोताओं फिल्मी गीतों के सफर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001।

0: दो चार दो।
1: हाँ।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: फिल्मी गीतों के इस सफर में आपका पुनः स्वागत है श्रोताओं। प्यार वो एहसास है जो लफ्ज़ों का मोहताज नहीं, बस आंखों से बयां हो जाए इतना खास है। अब इसी प्यार भरी बातों पर कुछ चंद लाइनें याद आ गई हैं। तुमसे मिलकर लगा जैसे अधूरा ख्वाब पूरा हो गया, तुमसे मिलकर लगा जैसे अधूरा ख्वाब पूरा हो गया, दिल को सुकून मिला और जीने का अंदाज नया हो गया। अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत एक दूजे के लिए फिल्म से। आवाज़ें हैं SV बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
3: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
4: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
3: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
4: हिंदी कविता है ना?
3: हाँ।
4: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
3: तुम और हिंदी कविता?
4: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।

0: शोर
1: भूल गए
2: जान मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
2: लड़के नीलम गीत गाता चल
1: बेशरम

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का ये सफर अब यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, अब लीजिए प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

अगर खुद के साथ जीना आ जाए, टूटे हुओं के जख्मों को सीना आ जाए, हर पल बरसती है नियामतें कायनात की, बस हर दिन को जीना आ जाए। जी हाँ श्रोताओं, जब हम हर दिन के लिए शुक्रगुजार होंगे, दूसरों के लिए प्रेम करुणा की भावना रखेंगे, तब हर दिन हमारा सार्थक बनेगा और हर रात को हम सुकून से सोएंगे। श्रोताओं, ये 10 बजे का समय आपके लिए भी खास है और हमारे लिए भी, क्योंकि इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं वो ख़त्म होती हैं। इस समय मैं पीयूष स्वधा हाजिर हूँ कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर। चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

जी हाँ, लता मंगेशकर और कुमार सानू के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज़ हो चुका है। श्रोताओं, आप सभी के मैसेजेस जो हैं कार्यक्रम में आने शुरू हो गए हैं, तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए नामों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ये पहला मैसेज हम तक आ पहुंचा है, गंज डुडवारा से हैं शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। ये फरमाइश हम तक पहुंची है वारली नबई से। आप हैं नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और साथ में हैं अजीम खान। अगले हमारे पसंद करता है अधिकारी निवास मिलन विहार जीएमएस रोड देहरादून से हमें मैसेज कर रहे हैं। इनका नाम है राजेश्वरी सागर। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है मारहरा दरवाजा एटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से हैं मुबीन अब्बासी,

अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह। अगले पसंदकर्ता हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं, जलालाबाद वेस्ट से आप हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा ने। बुलंदशहर से हैं अब्बासी। अगले पसंदकर्ता हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं, गांव हरिडी चांडिल झारखंड से हैं तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहिनी महतो, दीनबंधु महतो इस समय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला निवासी हमें मैसेज कर रहे हैं, आप हैं सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला, चोपड़ा, दिनेश चोपड़ा, तन्नू, नानू, राधिका रानी, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी गुप्ता, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा, आर एस आहूजा, रजत आहूजा, सोनिया आहूजा, तनिषा आहूजा, सीमा द्वार से सभी चावला फैमिली मेंबर जो है इस समय ये कार्यक्रम सुन रहा है। अगले पसंदकर्ता हैं गांव जाखो राजस्थान से हैं, आप हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। अगले पसंदकर्ता हैं मथुरा से हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हीना अंसारी, गुलसिता अंसारी, नंदिनी और अंजलि। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से हमें मैसेज कर रहे हैं, आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। अब चलिए श्रोताओं आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

श्रोताओं, दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता वही है जहाँ बिना कहे ही सब समझ लिया जाए। जी हाँ, उसका नाम है प्यार, जो दिल से दिल तक जुड़ता है। कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश का, और आज के इस अंक में मैं आपसे जुड़ी हूँ, आपकी रेडियो दोस्त पीयूष सुधा। अब चलिए, आप सभी के मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं। ये मैसेज हम तक पहुँचा है राजेश्वरी सागर का, GMS रोड से हमें ये मैसेज कर रहे हैं। अगले जो हमारे पसंद करता हैं, झज्जर हरियाणा से हैं, आप हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। अगले पसंद करता हैं आप हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष। अगले गीत के लिए फरमाइश हम तक आ पहुंची है शांति निवास लेह गांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं। आप हैं कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े और दीपक कुरहाड़े। ये हमारे श्रोता हैं जो हमें मैसेज कर रहे हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से। आप हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम और साथ में है मोहम्मद आलम हाशमी। अगले पसंद करता है गांव जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू, कुसुमबाई बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ठाकसे। अगला मैसेज पहुंचाने वाले हमारे श्रोता हैं बोरावके नगर शेरा।

हम पुरुष से हैं मनोज जेठवा, हर्षा जेठवा और इनके साथ हैं बेबी अवीरा। अगले पसंद करता है गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से हैं। आप हैं भाई अनवर अंसारी, भाई नईम अंसारी, आफ्ताब अंसारी, अफरोज अंसारी और साथ में हैं बेगम रजिया। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली के हमारे श्रोता हैं। आप हैं किशन वांजानी, नीलम, स्वाति, संगीता, सरिता, सुमन, महाजन और इनके साथ हैं किशु। अगले पसंद करता है नर्मदा पार्क मंगलवेढ़ा से हमें मैसेज भेज रहे हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और इनके साथ हैं नदीम पटेल। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। वीके सिंह सीनियर सिटीजन जो हमारे नियमित श्रोता हैं डिफेंस कॉलोनी देहरादून से इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगले पसंद करता है गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाइज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और इनके साथ है राधा नामदेव। अगले पसंद करता है ये हमें मैसेज कर रहे हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से। अब चलिए श्रोताओं, आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

श्रोताओं, डेंगू मलेरिया का जो खतरा है ना, हमें हर साल परेशान करता है। तो ऐसे में आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे मच्छर को जो है पनपने ही मत दें। कूलर, गमले, टायर, छत आदि में जो है आप पानी इकट्ठा ना होने दें, और कूलर में हर हफ्ते आप उसका पानी बदलें और टंकी ड्रम को ढक कर रखें। छत नाली साफ रखें और मच्छर के काटने से बचें, उसके लिए आप पूरी बाजू के कपड़े पहनें, मच्छरदानी लगाएं, खिड़की दरवाजों पर जाली लगवाएं, और बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसे मजबूत रखें। पानी खूब पिए, नारियल पानी, नींबू पानी, ORS का घोल, विटामिन सी, आंवला, संतरा, इन सब से जो है आपकी इम्यूनिटी होगी वो बढ़ेगी। अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे, जैसे कि तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द, तो आप तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाएं। इन छोटी छोटी जो है सावधानियों से आप बच सकते हैं। बहरहाल अब चलिए कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और आप सभी के मैसेजेस को शामिल करते हैं। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है फौजी अंसारी, जिला मुजफ्फरनगर से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और अगले जो हमारे श्रोता हैं, परी महल कासगंज से आप हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से हैं आफरीन खान और जमीर खान। अगले पसंद करता है नई बस्ती गंज डुडवारा से हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। अगले पसंद करता है जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से हमें मैसेज कर रहे हैं, आप हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और साथ में हैं सुदेश चौहान। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है छत्तीसगढ़ पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और इनके साथ हैं यशस्वी वर्मा। अगले पसंद करता है जो हमें मैसेज कर रहे हैं लेफ्टिनेंट अनिरुद्धा, बलबीर रोड देहरादून से इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सयाना शर्मा और इनके साथ है निवान शर्मा। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है जिला मुरादाबाद गांव महेशपुर खेम से हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। अगले पसंद करता है इस समय जो कार्यक्रम सुन रहे हैं चंडीगढ़ से हैं आप सतीश अनेजा और इनके साथ हैं बिमला अनेजा। ये मैसेज हम तक पहुंचा है फाजिल्का पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, RB खेड़ा, जीवन सिंह बुक, समस्त खेड़ा परिवार इस समय ये कार्यक्रम सुन रहा है। जसपुर उत्तराखंड से ये मैसेज हम तक पहुंचा है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और इनके साथ है माहिरा नूर। अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है बागपत उत्तर प्रदेश के जो हमारे श्रोता हैं, इनका नाम है ममता डिंगिया और कुणाल डिंगिया। अगले हमारे श्रोता हैं शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज कर रहे हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय ट्विंकल, PB कुलथे।
अगला मैसेज हम तक पहुंच चुका है वड़िंगखेड़ा पंजाब से हैं ये हमारे श्रोता। आप हैं मीटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। अब चलिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, कई मैसेजेस जो हैं हमें बार बार हमारे पास पहुंचते हैं, तो ऐसे में आपसे ये अनुरोध है कि एक ही बार आप मैसेज भेजें, ताकि जो दूसरे जो हमारे श्रोता हैं उनके भी नाम जो है कार्यक्रम में शामिल हो सके। अब बहरहाल हम बढ़ते हैं अपने फरमाइशकर्ताओं के नाम की ओर। ये मैसेज हम तक पहुंचा है। किशन सिंह बिष्ट, कविता बिष्ट, प्रियांशी बिष्ट, कनिष्का बिष्ट, विदित बिष्ट, राजू, कब्बू, पलक, पालू, सिद्धि, व्योम, सोहम और भावना का नैनीताल से ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। अगले पसंद करता है मुजफ्फरनगर से फौजी अंसारी, हमें इस समय सुन रहे हैं। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा के ये हमारे श्रोता हैं। आप हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशबद सिंह राहुल। अगले फरमाइश करता है गांव हीरावाली, फाजिलका, पंजाब से। आप हैं सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा, इस समय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। अगले पसंद करता है नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र के ये हमारे श्रोता हैं। आप हैं पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर से हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर। अगले फरमाइश करता है ये हमें मैसेज कर रहे हैं जलालाबाद शामली यूपी से। आप हैं राशिद मंसूरी, आयान मंसूरी और इनके साथ है जिशान मंसूरी। अगले पसंद करता है गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से। इस समय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं राजेंद्र कुमार, मलकित कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है जसपुर उत्तराखंड से, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और इनके साथ है माहिरा नूर। अगले पसंद करता है जनकपुरी, सहारनपुर से। इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलीस डिकेस्ट्रो। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है बिजना मुरादाबाद से हैं राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनिस खान और सोफिया खान। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं असार हुसैन और समीर मलिक। अगले फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, हमें मैसेज भेज रहे हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है खालापार मुजफ्फरनगर से हैं। आप हैं साहिना परवीन, फातिमा, खुशबू, आयसा, मोहम्मद अदीब और मसरूर अली। अनारकली बाजार जगराऊ से इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव का मैसेज जो है कार्यक्रम में शामिल हो चुका है। अगले पसंद करता है करूला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। सिंधोली, मीरगंज, बरेली से इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं जिशान वासी। अगले पसंद करता है धनोरी तेलीवाला से हैं। आप हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और इनके साथ हैं आयान बाबू। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। अगला मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता हैं कस्बा उघाती बदायूं से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। ये मैसेज हम तक पहुंचा है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और इनके साथ हैं आर के राजा। अगले पसंद करता है पटियाली रोड
گنج ڈڈوارہ سے ہیں عامر حسین، بیگم طیبہ شیخ، فوجیہ شیخ، آہل حسین، ارحان حسین، پریوار کے سبھی سدسیہ گن۔ اب چلیے شروتاؤں، آپ سبھی کی فرمائش پر سنتے ہیں کارکرم میں یہ بہترین گیت۔

आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। अब श्रोताओं बढ़ते हैं अगले फरमाइशकर्ताओं के नाम की ओर। ये मैसेज हम तक पहुंचा है देहरादून से प्रशांत और जीतू का। अगले फरमाइशकर्ता हैं फौजी अंसारी, जिला मुजफ्फरनगर से हमें मैसेज भेज रहे हैं। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है गणेशपुर गंज डुडवारा एटा उत्तर प्रदेश से हैं एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। मोहल्ला बरादरी महमूद खां रामपुर से हमें मैसेज भेज रहे हैं। भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। कस्बा चिलकाना जिला सहारनपुर से इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं जरीफ अंसारी, नैम अंसारी, डॉक्टर आमिर मुन्ना नज्म। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। अगले पसंद करता है अनारकली बाजार जगराऊ से हमें मैसेज भेज रहे हैं। आप हैं कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, विनोदपुरी से हैं जसपाल यादव। अगले पसंद करता है शेरकोट बिजनौर से हमें मैसेज कर रहे हैं। आप हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और विष्णु अग्रवाल। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है आप हैं दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं ये हीरा मणीश वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। मेन रोड तेलहारा से इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार। अगले पसंद करता है सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, विवान मिगलानी, मलोट पंजाब से हमें फरमाइश भेज रहे हैं। पांडर कवड़ा से हैं अनिल बुराड़े, उषा बुराड़े, अनुश्री बुराड़े, धनश्री बुराड़े और बलहार शाह से इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं सूरज, प्राची और एकलव्य। अगले पसंद करता है एकता कॉलोनी रोहतक से हमें मैसेज भेज रहे हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम और साथ में है मोहम्मद आलम हाशमी। तो चलिए श्रोताओं आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला बेहतरीन गीत।

श्रोताओं, घड़ी की सुइयां जो हैं आगे बढ़ती चली जा रही है, और देखिए ना, वक्त का पता ही नहीं चला और हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक आ पहुंचे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए आप सभी के नामों को हम शामिल करते हैं। जिला मुरादाबाद, गांव दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से ये मैसेज हम तक पहुंचा है। आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है चौटाला हरियाणा से, हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। ये मैसेज हम तक पहुंचा है मालियान सराधना, मेरठ से हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिवियन जैन और साथ में हैं आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन। अगले पसंदकर्ता हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं, एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है सीहोरा जिला बिजनौर से हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफत, अदीब और कादिर चौधरी। अगले पसंदकर्ता हैं सब्जी मंडी बुल्डाना से हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन। अंतिम गीत के लिए फरमाइश हम तक आ पहुंची है। आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। अब चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये अंतिम गीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और सुनते रहें आकाशवाणी देहरादून। अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश का कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।